0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सुरों की शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित।
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 MHz पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 4th तिथि, तदनुसार 25 मई 2026। सुबह के 5:54 और 6 सेकेंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आइए आप जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की विवरण। अब से कुछ ही देर में 6 बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। 6:05 पर समय रहेगा कार्यक्रम सुप्रभात का। कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी नुपुर। सात बजे का समय रहेगा हिंदी समाचार का। 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे निखिल कुमार। 8 बजे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR प्रोग्राम में नुपुर आपके साथ होंगी। 9 बजे समय रहेगा कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने निखिल कुमार के साथ। 10 बजे हिंदी में समाचार आप सुनेंगे।

वेस्टर्न म्यूजिक का टाइम रहेगा सुबह 10:05 पर और प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे देवेशी। 11:00 हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। 11:05 पर समय रहेगा प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स का रश्मि गुप्ता के साथ। 12:00 हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे और 12:05 पर समय रहेगा वेस्टर्न म्यूजिक का और प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे देवऋषि।

एक बजे समय रहेगा हिंदी में समाचार का। 1:05 पर आप सुनेंगे रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम, फोन इन प्रोग्राम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी रेनबो के सफर में। आप सुन रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है, जी हाँ, उस सफर की जिसका नाम है सुप्रभात, और मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ।

जी हाँ बिल्कुल, ये गाना आप ही के लिए प्ले किया था मैंने कि आप झूमते हुए, गाते हुए, गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए और अपने वाला जो सिग्नेचर स्टेप है ना आपका, हाँ उसको करते हुए बस जो भी कर रहे हैं वो करते जाएं। रेडियो का साथ, म्यूज़िक का साथ तो ऐसा है कि आप हर काम के साथ उसको कर सकते हैं, उसके साथ जुड़े रह सकते हैं और अपना सिग्नेचर स्टेप जो कई टाइम से आपने नहीं किया है उसको भी कई बार दोहरा सकते हैं। तो जीवन में जो अच्छा लगता है उसको कर लेना चाहिए, वक्त मौका नहीं मिलता बार बार। जीवन के इस सफर में हम आपके साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे और भी बहुत कुछ आपसे बातें करनी है वो भी करते रहेंगे। बस आप यूं ही मुस्कुराते खुश रहा कीजिए, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हैप्पीनेस इज़ अ मूड एंड पॉजिटिविटी इज़ अ माइंड सेट। और ये माइंड सेट अगर आपका रहेगा ना कि आपको हमेशा सकारात्मकता का दामन जो है वो पकड़े रहना है और उसी को पकड़ के आगे चलते रहना है, तो बहुत कुछ

अच्छा है, और भी बेहतर हो जाता है। बात करेंगे इस बारे में, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आकाशवाणी रेनबो के सफर में आप सुन रहे हैं सुप्रभात।

बस कुछ कुछ बातें हैं जो आपसे करनी हैं, आपसे कहनी हैं, और कहना बस इतना ही है कि अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, अगर आप चीज़ों को लेकर सकारात्मक रहते हैं, तो उसका आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी मैं यूँ कहूँगी कि सकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। और इसको लेकर ना कई रिसर्च भी हो चुकी हैं, कई जर्नल्स भी हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, और उसमें ये सामने आया है कि असली खुशी का जो कारण है वो बाहर जो हम खुशियाँ ढूंढते हैं वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है। कि आपने कुछ नया ख़रीदा, आपने घर लिया, कार ली, या आपको जो भी पसंद है आपने वो परचेज़ किया, लेकिन वो क्षणिक है। उसके बाद उससे 10% आपको खुशी मिल पाती है, लेकिन उस लंबे समय के लिए नहीं है। लेकिन आप किस तरह से खुशियों को देखते हैं, जीवन को देखते हैं, और अपने जीवन में खुशियों के क्या मायने तय करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, और इसी से आपकी फिजिकल और जो मेंटल हेल्थ है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। और अब अगर हम एक बात कहें तो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, जो इतनी सारी रिसर्च हुई हैं, जो शोध हुए हैं, उसमें निकल कर आई कि आप खुद से किस तरीके से बातचीत करते हैं उसका आपकी सेहत पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत, इससे इसमें बड़ी भूमिका निभाती है, और इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आप खुद से जो शब्द कहते हैं वो कैसे आपके जीवन की दिशा को बदलते हैं, उसके नज़रिए को बदलते हैं। तो ख़ुद को क्यों ना उम्मीद भरे शब्द कहें और देखें फिर आपकी ज़िंदगी का नज़रिया कैसे बदलता है।

तो सेल्फ टॉक यानी कि खुद से बातचीत एक बहुत ही ख़ास भूमिका निभाती है इस बात के लिए कि आप अपने जीवन की दिशा को कैसे लेकर आगे बढ़ते हैं, सकारात्मक रूप में या नकारात्मक रूप में। तो जान लेते हैं कि जो सेल्फ टॉक है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी, या अपने बारे में भी हो सकती है और आपके आसपास के जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी हो सकती है। और ख़ुद से बात करने का जो तरीका है उसको बदलकर वाकई में आप ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदल

सकते हैं। एक रिसर्च में, एक अध्ययन में ये आया कि लोग अपनी ज़िंदगी की अच्छी और जो उनके साथ अच्छा नहीं भी हुआ है, बुरी घटनाओं को किस तरह से बयां करते हैं। तो उन्होंने पाया कि जो निराशावादी लोग हैं वो ज़िंदगी की अच्छी घटनाओं के प्रति भी नकारात्मक हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत मायने रखता है कि आप खुद से कैसे बात करते हैं और आपके आसपास जो चीज़ें हैं अपने लिए और आसपास का जो वातावरण है वो आपको किस तरह से प्रभावित कर रहा है, और उसके लिए भी आप किस तरह की टॉक रखते हैं। इससे जो आपकी दशा है उसी के लिए, जो जीवन की दशा है उसके लिए फिर जिम्मेदारी भी आपकी है। तो अगर आप उसको अच्छी दिशा देना चाहते हैं तो खुद से पॉजिटिव बात करें। और भी बात करेंगे हम इस बारे में, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।

तो आप खुद से कैसे बात करते हैं ये बहुत मायने रखता है। अपनी बातचीत की प्रकृति पर गौर करने की आपको ज़रूरत है। यदि आप नकारात्मक हैं तो आप अपने स्वयं मूल्य को कम कर लेते हैं। और जो पुस्तक है दी आंसर, उसमें व्यवसायी लेखक उन्होंने इस बारे में लिखा है कि जब नकारात्मक संदेशों के बारे में बात करते हैं, उस बुक में इस पर बात की गई है, तो जो बच्चों को बड़े होते समय मिलते हैं वो उन संदेशों की बात की गई है। जैसे वे लिखते हैं कि जब तक आप 17 साल के होते हैं तब तक आप नहीं, तुम नहीं कर सकते वाक्य को 150,000 बार तक सुन चुके होते हैं, और वहीं हाँ तुम कर सकते हो ये जो वाक्य है वो सिर्फ औसतन आप 5,000 बार ही सुनाई देता है, यानी एक हाँ के बदले 30 नहीं। इसी वजह से लोगों में मैं नहीं कर सकता का विश्वास जो है, जी हाँ, मैं नहीं कर सकता का जो विश्वास है वो दृढ़ हो जाता है। तो इसलिए समझने वाली बात है कि आप सबसे पहली बात कि खुद से कैसे बात कर रहे हैं, और आसपास आपके जो लोग हैं उनसे कैसे बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम आप नहीं कर सकते, अगर आपकी जो मार्क्स हैं नहीं अच्छे आए, और आपके रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे बहुत कुछ डिसाइड होता है कि आप ये कर पाएंगे कि नहीं, तो उसमें जो आपके फैमिली के लोग हैं या स्कूल में आप जाते हैं तो वहाँ पे जो टीचर्स का रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कि एक तो पेरेंट्स भी खुद से, ये बात बच्चों पे आती है ना कि अगर आप खुद से तो सेल्फ टॉक जो आपकी नेगेटिव है वो तो ना ही करें, और जो आपके आसपास लोग हैं जैसे कि आपकी फैमिली है, फैमिली के मेंबर्स हैं, तो उनके बारे में भी ना करें। और स्पेशली जो आपके बच्चे हैं उनको हमेशा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दीजिए, और ये बहुत मायने रखता है। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम को जाननी बहुत ज़रूरी हैं शुरुआती में ही, और ये कोई सिखा नहीं सकता, ये हमें सीखनी पड़ेगी, मतलब कोई बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, हम जानते हैं कई बार हम अपने नेचर को ही नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर कितनी नेगेटिविटी है, और तभी लोग भी कई बार आपसे नहीं बात करना चाहते हैं। तो वो चीज़ समझने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप इसको सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये खुद ही आप कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं सिखा सकता। तो चलिए और भी बात करेंगे इस पर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। गाने के उस पार बातें और भी हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सुरों की शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी रेनबो के सफर में आप सुन रहे हैं सुप्रभात, और सुप्रभात में आज बात के खुद से आप किस तरीके की बातचीत करते हैं, ये बिल्कुल आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ओर ले जाता है। सेल्फ टॉक बहुत मायने रखती है, तो खुद से चर्चा आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है, ये दृष्टिकोण को प्रभावित करती है आपके। और जो एथलीट्स हैं वो अपने तय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खुद से सकारात्मक बातचीत का सहारा लेते हैं, और कई ऐसे अध्ययन हुए हैं जिसमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक के ढेरों तरीके बताए गए हैं, आप वहाँ उनको पढ़ सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। गौर करें कि किसी विशेष परिस्थितियों में आप नकारात्मक होते हैं, उन पर ध्यान दें, और पहली शुरुआत शब्दों में बदलाव से करें। शब्दों के चयन में सावधानी रखें, और अपनी इच्छा, अपने प्रति जो आपका अच्छा बर्ताव है ना, उसके वाकई आपको सकारात्मक परिणाम देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आज इसे एक शुरुआत कीजिए कि अपने लिए आप जो भी कहें, सबसे पहले शुरुआत खुद से ही होगी, क्योंकि जब अपने लिए आप अच्छा कहेंगे बोलेंगे तभी आप और लोगों के लिए भी अच्छा कहेंगे बोलेंगे। या फिर आप ऐसा करते हैं कि सबके लिए तो अच्छा अच्छा सोचते हैं, सारी अच्छी बातें करते हैं, सारी दुआएं देते हैं, लेकिन अपने लिए आपको कुछ हो जाता है, और जब अपने लिए बात आती है तो आप अपने लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी पूरी जो वाइब्रेशन है उसको बहुत ही लो कर देता है। तो इसलिए खुद से अच्छे से बात करें, खुद को उम्मीद भरे शब्दों की खुराक ज़रूर दें, और आप इस तरह से ज़िंदगी का नज़रिया बदल सकते हैं। तो खुराक अच्छी देंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो आज से शुरुआत करते हैं, और फिर देखिए कितना बदलाव आता है, और बदलाव ज़रूर आएगा। अपने लिए अच्छे शब्दों का चयन करें, और यहाँ पर सुप्रभात में बस इतना ही, लेकिन आकाशवाणी रेनबो का ये जो सफ़र है वो बिल्कुल जारी है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आपके साथ जुड़ेंगे निखिल कुमार, और उसके बाद फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे सेगमेंट में। उसके बाद समय रहेगा दिल के तराने गाने नए पुराने, उसमें भी आपका साथ देंगे निखिल कुमार, और उसके बाद 10:05 से लेकर 11 तक आप सुनेंगे वेस्टर्न मैचलेस म्यूजिक आर, और इसमें आपके साथ होंगे देवर्षि रावत, और उसके बाद आप सुनेंगे बॉलीवुड की खबरों के साथ बॉलीवुड रील्स में आपके साथ जुड़ेंगी रश्मि गुप्ता, और वेस्टर्न म्यूजिक प्लेट कूल में आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगे देवर्षि रावत, और उसके बाद रेनबो हेल्पलाइन सुनेंगे आप 1:05 से लेकर 2 तक, रश्मि गुप्ता होंगी इसमें आपके साथ, और विषय रहेगा इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर्स, और आशियाना सुनेंगे 2 से लेकर 3 तक, शालिनी खंडेलवाल इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगी, और उसके बाद समय रहेगा रेडियो डॉक्टर का जिसमें आज का विषय रहेगा एमरजेंसी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट, संतोष राव होंगे इस कार्यक्रम में आपके साथ, और 4:05 से लेकर 5 तक आप सुनेंगे अल्फा जैन, शालिनी खंडेलवाल होंगी इस कार्यक्रम में आपके साथ, और सिटी की खबरों के साथ एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे संतोष राव, और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स, इसमें आपके साथ होंगे प्रवीण शर्मा, उसके बाद कंट्री कार्निवल में आपके साथ जुड़ेंगी मुक्ता, और उसके बाद 8 से लेकर 9 तक म्यूजिक मस्ती में आपका साथ देंगे प्रवीण शर्मा, उसके बाद समय होगा आपकी याद आती रही, और 9 से लेकर 10 तक ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रियंका त्रिपाठी के साथ, और एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगी रेनबो शो के इसमें मुक्ता, और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम जी हाँ रंगी महफिल प्रियंका त्रिपाठी के साथ। तो आप जुड़ रही हमारे साथ सुप्रभात में, बस इतना ही, मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ अब आपसे लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में प्रधान गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भाई घर का पता अगर एक बार मिस भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको मनोरंजन कहाँ मिलता है उसका पता ज़रूर है। वो ये है कि FM रेनबो 102.6 और प्रोग्राम शुरू हो चुका है गुड मॉर्निंग डेलियाज यार, आपके दोस्त अर्जुन निखिल के साथ में, जिसमें हम आपसे बात करते हैं बहुत सारी और आपको बताते हैं बहुत कुछ। आज है 25 मई का दिन। इतिहास की अगर बात करें तो आज का ही वर्ष 2013 में वो दिन था जब 80 वर्ष के एक जापानी पर्वतारोही ने अपने सबसे अधिक उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। और कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिनके बारे में आपको बताते हैं। वर्ष 1877 में आज के दिन ही यात्रियों से भरा स्टीमर सर जॉन लॉरेंस ओडिशा तट के पास डूब गया था। उस स्टीमर में उस वक्त लगभग 732 लोग सवार थे। वर्ष 1961 में आज

के दिन ही अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने देश के अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत के लिए लाखों डॉलर की राशि की घोषणा की थी और उन्होंने वर्ष 1970 तक अमेरिका को चांद पर पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। और आपको बता दें कि वर्ष 1963 में आज के दिन ही अफ्रीकी देशों को एकजुट करने के उद्देश्य से 32 देशों ने अफ्रीकी संघ का गठन किया था। वर्ष 2003 में आज के दिन ही चिली ने विश्व टेनिस कप का खिताब पहली बार जीता था और वर्ष 2008 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा भेजा गया रोबोट आज के दिन ही मंगल ग्रह पर पहुंचा था। और आपको बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 2011 में द ओपेरा विनफ्रे शो की अंतिम कड़ी का प्रसारण हुआ था, जो कि सबसे लंबे समय तक प्रसारित हुआ था। और इस टेलीविज़न कार्यक्रम ने ओपेरा को अमेरिका की सबसे प्रभावी शख्सियत के तौर पर उभार कर रखा था। आपको बता दें कि वर्ष 1995 में आज के दिन ही पहली बार किसी जीवित जीव का डीएनए डिकोड किया गया था और वर्ष 2008 में आज के दिन ही विश्व थायराइड दिवस मनाया गया था। और ये दिन इसलिए मनाया गया ताकि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके। जी हाँ, तो फिलहाल इतिहास के पन्नों में जो भी घटनाएं दर्ज हुई हैं आज के दिन उनके बारे में आपको जानकारी दी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग इंटेलिजेंस, यार आपके दोस्त आर्जन निकल के साथ। एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल से ट्रैक को।

और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज मनाया जा रहा है विश्व फुटबॉल दिवस। जी हाँ, दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों के पास अब हर साल दुनिया के सबसे इस लोकप्रिय खेल का जश्न मनाने के लिए यह दिन निर्धारित किया गया था 25 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की थी अपना प्रस्ताव पारित करके, और ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक बना था। 25 मई को जो वर्ष 1924 के पेरिस के ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित किया गया था, तो इस खेल की वैसे भी दुनिया भर में काफ़ी कह सकते हैं कि पहचान है। दुनिया भर में इस खेल को खूब पसंद किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो फुटबॉल की जो लोकप्रियता है वो देखने ही बनती है। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी का रेनबो चैनल, एक और प्यारा सा गीत आपके लिए।

और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज मनाया जा रहा है गंगा दशहरा, जो कि एक बड़ा ही पावन पर्व है। और ज्योतिष शास्त्र में इस घटना को, मतलब इस पर्व को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये बुध ग्रह का परिवर्तन होता है जो सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग अलग प्रभाव डालता है। कई सारे लोग इसको काफ़ी विशेष मानते हैं और ये दिन अपने आप में बड़ा ही खास है। इस दिन लोगों की मन में जो श्रद्धा होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और ख़ास तौर पर स्नान, पूजा अर्चना और गंगा आरती की बड़ी परंपरा रही। उसको पूरे देश में काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा सकता है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें श्रद्धालुओं की, काफ़ी लंबी चौड़ी कतारें हमें देखने को मिलती हैं जब भी इस तरह का कोई पर्व होता है। फिलहाल एक और प्यारा सा गीत आपके लिए, आप इन्जॉय कीजिए इसे रेनबो पर।

नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। तो श्रोताओं, आज बात होगी उर्दू मजलिस के बारे में। 22 फरवरी 1960 को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से उर्दू मजलिस कार्यक्रम की ऐतिहासिक शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उर्दू साहित्य, संस्कृति और सामाजिक विषयों को एक सशक्त राष्ट्रीय मंच प्रदान करना था। उर्दू मजलिस के अंतर्गत अंदाज़े नज़र, बज़्मे ख्वातीन और जमहूरियत का सफर जैसे खंडों के माध्यम से साहित्यिक समीक्षाएं और संवाद प्रस्तुत किए जाते थे। प्रमुख उर्दू साहित्यकार, शायर और विचारक इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा को और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एट 90 में। तो फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

और शो तो आपको बता दें कि आज जयंती है रास बिहारी बोस की, जो कि भारत के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया और 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों से बचने के लिए वे जापान चले गए, जहां उन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने आगे चलकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और बाद में आज़ाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और आपको बता दें कि उन्होंने इसकी कमान फिर सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। राज बिहारी बोस का जीवन देशभक्ति, साहस और स्वतंत्रता के लिए समर्पण का प्रतीक माना जाता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। फिलहाल एक और गीत आपके लिए

हर्षद, आपको बता दें कि आज पुण्यतिथि है हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता, निर्माता और राजनेता सुनील दत्त की, जिन्होंने कई सारी सफल फिल्मों में अभिनय किया था, जिनमें मदर इंडिया, वक्त और पड़ोसन विशेष रूप से पसंद की जाती है और अपने गंभीर अभिनय शैली और समाज सेवा के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। उनकी मुख्य फिल्मों की हम बात करें तो मदर इंडिया, वक्त, मिलन, मेहरबान, हमराज, साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान, पड़ोसन, नागिन और जानी दुश्मन जैसी फिल्मों के लिए उन्हें पहचाना जाता है। उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 बार पुरस्कार मिला था। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। और आपको बता देंगे फाल्के रत्न पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया गया था। और आज ही हम याद कर रहे हैं लक्ष्मीकांत को, जो कि एक जानी मानी संगीतकार जोड़ी में से एक रहे हैं और हिंदी सिनेमा के एक महान संगीतकार के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। उन्होंने अपने बचपन में आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद संगीत सीखना शुरू किया और फिर अपने साथी प्यारे लाल के साथ मिलकर के लगभग 750 फिल्मों में संगीत दिया था, जिनमें से अमर अकबर, एंथनी, कर्ज, सरगम और दोस्ती जैसे फिल्मों के गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। और आपको बता दें कि फिलहाल शिवेंद्र स्टूडियो में पहुंच चुके हैं लेकर के तमाम खेल खबरों को। थोड़ी देर बाद वो आपके साथ होंगे और मैं आपसे लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इजाज़त। बने रहे रेनबो पर।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
1: भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
2: हिस्ट्री मेड इन टेम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
3: स्पोर्ट्स पल्स
4: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों, शिवेंद्र का प्यार भरा नमस्ते स्वीकार करें। और आज का दिन सोमवार का दिन, नए सप्ताह का पहला दिन है, तो उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाला सप्ताह और आगे आने वाला समय, आगे आने वाले महीने, वर्ष, साल, तमाम सब आपके लिए बहुत खुशगवार हों। खेल दुनिया की बाबत हम आपसे वाबस्ता हैं, बातचीत कर रहे हैं और स्पोर्ट्स पल्स आपसे भी जानते हैं। खेल दुनिया की हर धड़कन को करीब से महसूस करने की, शिद्दत से महसूस करने की हमारी कोशिश का नाम है। समय बहुत कम रहता है साथियों हमारे पास, सप्ताह में सिर्फ एक बार, वो भी 13.5 मिनट 14 मिनट, और कोशिश होती है कि आपको उन तमाम स्पोर्ट्स गतिविधियों से रूबरू कराया जाए, उनके बारे में बात की जाए जिनके बारे में आपने जानने की और सुनने की आपकी इच्छा रहती है, अभी इच्छा है। और बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड पर, टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, कुछ टूर्नामेंट्स खत्म हो चुके हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग का कल समापन हो चुका है साथियों, और ये वो सीजन है जब शुरू होता है तो तमाम जो टीमें हैं उनके फैंस सारी दुनिया में जो फैले हुए हैं वो उम्मीद करते हैं कि इस बार तो उनकी टीम जीत करके वापस लौटेगी इंग्लिश प्रीमियर लीग का सीजन। और भारतीय फुटबॉल में भी अगर बात करें तो इंडियन सुपर लीग ISL, जिसे हम नाम जानते हैं जिसके नाम से, और जो टॉप टीयर है इंडियन फुटबॉल का, उसका भी समापन हो चुका है। और दूसरा टीयर है इंडियन फुटबॉल लीग IFL, जिसे पहले आई लीग के नाम से जाना जाता था, उसका भी समापन हो चुका है। तो कह सकते हैं कि कुछ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज हैं जो अपने परचम पर पहुंची, अपने इनफैक्ट अंजाम तक पहुंची हैं, और कुछ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज हैं जिनका आगाज होने जा रहा है या हो चुका है। और जिनका आगाज हो चुका है उनमें फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट सबसे आगे है। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जैसे हम सभी जानते हैं, साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। फ्रांस में, पेरिस में रोला गैरों की लाल बजरी पर, क्ले कोर्ट पर इसका आयोजन होता है। और जानकारों का मानना है कि जैसे विंबलडन को टेनिस का मक्का कहा जाता है, सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में उसे शुमार किया जाता है, उसी तरीके से फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि सबसे डिफिकल्ट, सबसे दुरूह, सबसे कठिन टूर्नामेंट समझा जाता है। और इस बार कुछ नोटेबल नाम वहां पर मौजूद नहीं है, जहां पर सबसे जो प्रमुख नाम है स्पेन के कार्लोस अल्काराज का है, जो कि लगातार फ्रेंच ओपन में अपनी बादशाहत कायम करते रहे हैं। और स्पेन के राफेल नडाल ही थे जो, जिनको कहा जाता था क्ले कोर्ट का बेताज बादशाह। हालांकि बेताज बादशाह क्यों कहा जाता था, कई बार मेरे जहन में ये बात आती थी, क्योंकि उनके नाम पर तो तमाम वो ताज थे, खासतौर पर फ्रेंच ओपन में लगातार उन्होंने जो रिकॉर्ड संख्या में टाइटल जीते वो तो एक किंवदंती बन चुके थे रोला गैरों की लाल बजरी पर। और कार्लोस अल्काराज जो है उनकी ही रास्ते पर चल रहे थे अल्काराज, लेकिन फिलहाल इंजर्ड हैं। और खबर ये भी है साथियों, अच्छी खबर तो नहीं है टेनिस के चाहने वालों के लिए, कि कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन से भी अपना नाम वापस ले लिया है। तो फिलहाल फ्रेंच ओपन का आगाज हो चुका है। आज से कुछ देर पहले सुराना क्रिस्टी, जो कि इटली की खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपना मुकाबला जीता है, 18वीं वरीयता प्राप्त है। मैरा एंड्रीवा एक और खिलाड़ी है जो कि WTA सर्किट पर महिला जगत में

0: बहुत ही शानदार तरीके से उभर करके सामने आई हैं। इस बार के फ्रेंच ओपन में उनको 8वीं वरीयता दी गई है, अब वो भी अगले दौर में पहुंच चुकी हैं। और इसके अलावा एक जो अपसेट हुआ है, सोलाना सियारा जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, अनसीडेड हैं, उन्होंने ब्रिटेन की एमा राडकानू को पराजित कर दिया है। जोकोविच ने अभी अभी कुछ देर पहले अपना मैच जीता है, तीसरी वरीयता प्राप्त हैं जोकोविच और तमाम ग्रैंड स्लैम उनकी झोली में दर्ज है, 25वें ग्रैंड स्लैम को तलाश रहे हैं। टेलर फ्रिट्ज ब्रिटेन के खिलाड़ी 7वीं वरीयता प्राप्त, हार करके बाहर हो चुके हैं। भारतीय चुनौती एन श्रीराम बालाजी के रूप में नजर रहेगी, मौजूद रहेगी यहां पर फ्रेंच ओपन में डबल्स मुकाबलों में। और उसके अलावा यूकी भामरी न्यूजीलैंड के उनके जो जोड़ीदार है माइकल वीनस, उनके साथ खेलते हुए डबल्स में नजर आएंगे। मिक्स डबल्स का ड्रॉ अभी नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी वहां पर मौजूद रहेंगे। आज जो प्रमुख खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे फ्रेंच ओपन में क्ले कोर्ट पर, उनमें मैथियो बेरेटिनी हैं जो कि इटली से आते हैं, एलेक्स डिमिनार हैं, ये सब क्ले कोर्ट के एक्सपर्ट माने जाते हैं। स्टैन वावरिंका, स्टानिसलास वावरिंका जो कि स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी थे और फॉर्मर फ्रेंच ओपन चैंपियन है, वो भी इस बार खेल रहे हैं। कैस्पर रूड जो कि हाल ही में यैनिक सिनर से हारे थे टूर्नामेंट का फाइनल, अगर ठीक से याद पड़ता है रोम मास्टर्स वो टूर्नामेंट था और पिछले सप्ताह ही समाप्त हुआ था, जहां पर यैनिक सिनर ने जीत दर्ज की थी। यैनिक सिनर इस बार के टूर्नामेंट के सबसे तगड़े दावेदार माने जा रहे हैं फ्रेंच ओपन के विजेता। इनफैक्ट साथियों, फ्रेंच ओपन अकेला ग्रैंड स्लैम है जिसको यैनिक सिनर ने नहीं जीता है, तो इस बार कार्लोस अल्काराज नहीं है, तो उम्मीद जो उनके फैंस हैं वो कर रहे होंगे कि जो एक उनकी किटी में एकमात्र जो ग्रैंड स्लैम अनुपस्थित है उसे वो जीतने में कामयाब होंगे। फुटबॉल की बात कर रहे थे, जल्दी से उसे समाप्त कर लेते हैं। आईएसएल, ईस्ट बंगाल ने खिताब जीता, मोहन बगान के बराबरी अंक थे उनके 26 अंक, लेकिन बेहतर गोल औसत की बदौलत ईस्ट बंगाल ने आईएसएल का खिताब जीतने में कामयाबी हासिल की। इंडियन फुटबॉल लीग यानी आईएफएल, जो कि टॉप टीयर नहीं है, टीयर टू है फुटबॉल का, उसके बेसिस पे आईएसएल के लिए टीमें क्वालिफाई करती हैं, जो चैंपियन बनती है वो टीम। और डायमंड हार्बर कोलकाता ने इस बार आईएफएल का खिताब जीता और बहुत ही कामयाब, बहुत ही शानदार, यादगार उनकी जर्नी रही है। 3 स्टेजेस को पार करके वो आईएफएल में पहुंचे और अब उन्होंने आईएफएल का खिताब जीत करके आईएसएल यानी इंडियन सुपर लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल का दिन बड़ा भावनात्मक था, बड़ा इमोशनल था, क्योंकि आखिरी दिन था, सभी 20 टीमें खेल रही थी। आर्सेनल पहले ही खिताब जीत चुके थे और कल उन्होंने क्रिस्टल पैलेस को उनके घरेलू मैदान पर पराजित किया, 2-1 से जीत दर्ज की। आर्सेनल ने 22 साल के अंतराल के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। ब्राइटन हारे यूनाइटेड से, यूनाइटेड के लिए अच्छा सीजन रहा, 3-0 से वो कल का मुकाबला जीते। बर्नली और वोल्वरहैम्पटन वॉन्डर्स के बीच मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर रहा। उसके अलावा लिवरपूल ने ब्रेंटफोर्ड के साथ मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खेला। लिवरपूल 5वें पायदान पर रहे, तो अच्छी बात यह है कि चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर पाए, हालांकि मौजूदा चैंपियन थे, लेकिन ये सीजन उनके लिए भुलाने वाला रहा। मैनचेस्टर सिटी इनफैक्ट एक एक्सपेरिमेंटल टीम कल खेल रही थी एटिहाड पर, और एस्टन विला से वो 1-1 के मुकाबले 2 गोल से हार गए। कल का दिन पेप गार्डियोला के लिए भी विदाई का दिन रहा। जॉर्डन हेंडरसन जो कि लिवरपूल के लिए खेला करते थे, कल वो ब्रेंटफोर्ड के लिए खेल रहे थे, और कल जब जॉर्डन हेंडरसन का सब्स्टिट्यूशन हुआ तो न केवल ब्रेंटफोर्ड के फैंस ने बल्कि लिवरपूल के फैंस ने भी एनफील्ड के मैदान पर खड़े होकर के तालियों से जॉर्डन हेंडरसन का अभिनंदन किया। मोहम्मद साला एक किंवदंती बन चुके लिवरपूल के लिए, उनको विदाई दी गई, कल उनका आखिरी मैच था। और जब मोहम्मद साला विदा ले रहे थे साथियों, जब उनको सब्स्टिट्यूट किया जा रहा था, उनकी आंखों में आंसू थे, और बहुत ही ऐतिहासिक खिलाड़ी रहे मोहम्मद साला। कुछ वैसे ही एंडी रॉबर्टसन जो कि हल सिटी से आए थे, और यूर्गन क्लॉप एक ऐसे कोच थे जिन्होंने लिवरपूल की वो टीम बनाई, तो एंडी रॉबर्टसन की विदाई हुई, मोसाला की विदाई हुई, पेप गार्डियोला की विदाई हुई, बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो कि इस सीजन में ईपीएल से विदा ले रहे हैं। नॉटिंगम फॉरेस्ट और बर्नमथ के बीच मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर रहा। कल एक जो मैच था जिस पर सबकी नजरें थी, वो था टॉटनहम और एवर्टन का। टॉटनहम ने एवर्टन को 1-0 से पराजित किया और उन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग में सर्वाइव किया है, अन्यथा उन पर रेलिगेट होने का खतरा मंडरा रहा था। वेस्टहैम ने लीड्स को 3-0 से हराया, लेकिन उसके बावजूद वो टीम रेलिगेट हो गई है। तो फुटबॉल की कहानी और उसके साथ साथ हमने आपसे टेनिस की कहानी शेयर की, लेकिन अभी बहुत सी कहानियां साथियों बाकी हैं। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी से आपके पास वापस आएंगे, कहीं जाइएगा मत।
1: इस समय आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
0: एक बार फिर से आपका स्वागत स्पोर्ट्स पल्स में, एक छोटे से ब्रेक के

0: चलते हैं एथलेटिक्स ट्रैक की ओर और रविवार का दिन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में, इनफैक्ट शनिवार का दिन भारतीय एथलेटिक्स के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। पंजाब के 25 साल के स्प्रिंटर गुरविंदर सिंह ने एथलेटिक्स फेडरेशन कप टूर्नामेंट में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। ये पहली बार है जबकि किसी भारतीय ने 100 मीटर की रेस 10.10 सेकंड से कम समय में पूरी की है, तो बहुत ही शानदार उनकी कामयाबी रही। और रेस जीते के बाद गुरविंदर वीर सिंह ने जोश में अपना बिब नंबर उतार दिया, उन्होंने ट्रैक पर अपने शूज फेंक दिए। और इवेंट के बाद गुरविंदर का कहना था, लोग कहते थे कि भारतीयों के पास 100 मीटर के लिए जीन्स नहीं है, मैं सबको गलत साबित करना चाहता हूं, भारतीय जीन्स बहुत मजबूत हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। गुरविंदर का ये सीजन का एशिया का दूसरा सबसे तेज समय है। जापान के फुकुतो कोमुरो 10.08 सेकंड का जिनका समय है, उनसे सिर्फ 0.01 सेकंड पीछे रहे। उन्होंने 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों के क्वालिफिकेशन मार्क जो कि 10.16 सेकंड का था उसको आसानी से पार कर लिया। और सीनियर फेडरेशन कप में गुरविंदर वीर सिंह ने अपने चिर प्रतिद्वंदी अनिमेश कुजूर को पीछे छोड़ दिया। तो कमाल की एक राइवलरी डेवलप हो रही है अनिमेश कुजूर और गुरविंदर वीर सिंह के बीच में। और गुरविंदर जिन्होंने की 10.09 सेकंड का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया, अपनी कामयाबी को शब्द कैसे दे रहे थे आइए सुन लेते हैं।
1: बहुत अच्छी फीलिंग है, जैसे ट्रेनिंग चल रही थी वैसे रिजल्ट भी मिल रहे हैं, आगे भी अच्छी ट्रेनिंग करूंगा और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लास्ट मिनट पे मेंटली गेम ज्यादा रहती है फिजिकली से, जो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाएगा वो जीतेगा, तो शायद मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाया। ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही थी, हार्ड ट्रेनिंग किया, बहुत चीजें जो मेरे में कमी थी उसको सुधारा, एंड्योरेंस की कमी थी, स्पीड एंड्योरेंस की कमी थी, उसको हर चीज पे फोकस किया, अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छी स्ट्रेंथ बनाया।
0: गुरविंदर वीर सिंह उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाला जो समय है उसमें एथलेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होने हैं, एशियाई खेल हैं, राष्ट्रमंडल खेल हैं। जैसा हमने जिक्र किया कि राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है गुरविंदर वीर सिंह ने, तो आशा करेंगे कि एशियाई खेलों में भी उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहे। आईपीएल 2026 अपने बिजनेस एंड में पहुंच चुका है। दिल्ली कैपिटल्स ने कल अपने आखिरी मैच में जीत दर्ज की। केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने बनाए 203 रन 5 विकेट के नुकसान पर। केएल राहुल ने 60 रन बनाए। केकेआर की टीम 18.4 ओवर में 163 रन पर ऑल आउट हो गई और इस तरीके से 40 रन से केकेआर की टीम को हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली के लिए सीजन तो बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन हाल के आखिरी जो कुछ मैचेस रहे वो उन्होंने जीतने में कामयाबी हासिल की। और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल क्या कह रहे थे टीम की जीत के बाद आइए सुनते हैं।
2: लास्ट 3 मैच जो जिस तरह से खेले आपको पता है कि यू नो कि आप अच्छा नहीं कर रहे, उसके बाद जिस तरह से टीम फाइट करती है तो आई थिंक वेरी प्राउड ऑफ कि किसी ने ऐसा नहीं सोचा है कि यार नहीं अब जाएंगे हम बाहर हो गए या यू नो कि अच्छा नहीं चल रहा है, बट लास्ट मैच तक जो एफर्ट देखने को मिला आई थिंक वेरी प्राउड ऑफ देम।
0: जी हाँ, अक्षर पटेल अपनी टीम के साथियों की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। और दिल्ली की जीत जो थी उसमें लुंगी एनगीडी और कुलदीप यादव का प्रमुख योगदान रहा। इनफैक्ट कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया, उन्होंने 3 विकेट हासिल किए, किफायती गेंदबाजी की। ये है प्लेयर ऑफ द मैच दिल्ली कैपिटल्स के कुलदीप यादव।
3: I wasn't happy before this match because the way we wanted as a team to have a great season, but we couldn't finish the top 4 slot and I didn't have the great season. I was expecting more from myself, but couldn't deliver this season. After last game, I went back home. I worked with my coach up to go there and to work on those sort of thing and to come back here and ball like that, you know, it was lovely to see.
0: जी हाँ, कुलदीप यादव अपनी टीम के प्रदर्शन के बारे में, अपने प्रदर्शन के बारे में बातचीत कर रहे थे। और ऑफ कोर्स दिल्ली कैपिटल का सीजन उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन जैसे कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, तो दिल्ली कैपिटल के लिए काफ़ी कुछ सीखने के लिए था इस सीजन में। उम्मीद करेंगे कि अगले सीजन में और टीम बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आखिरी मैच में उन्होंने 30 रन से जीत दर्ज की। उन्होंने पराजित किया मुंबई इंडियंस को। राजस्थान रॉयल्स ने बनाए 205 रन 8 विकेट के नुकसान पर और मुंबई इंडियंस ने 175 रन बनाए 175 9 विकेट के नुकसान पर। और प्लेऑफ में प्रवेश करके टीम के कप्तान रियान पराग प्रसन्न थे, क्या कह रहे थे आइए सुनते हैं।
4: Always feels good when things go to plan, but again, I know we won the game, we've qualified, but a lot of areas that we can do better. Like I wanted the set batter to play a little longer, and we needed runs. It's a wicket where you can't have 2 players batting in the middle and just going at 100 a ball, like run a ball and stuff like that. And Jadeja's as reliable as always, so I knew back end he would get us at least 20 of 10, which he did.
0: जडेजा की तारीफ की और साथ ही साथ एक और खिलाड़ी थे जोफ्रा आर्चर जिन्होंने बल्ले से भी योगदान दिया अपनी टीम की जीत में और साथ ही उन्होंने 3 विकेट भी हासिल किए 15 गेंदों में 32 रन बनाए। ये हैं प्लेयर ऑफ द मैच।

0: कल के मुकाबले के राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर।
1: Every time that you take the ball up, you just try to ball good areas. Some days you're not going to get rewarded, and I'm really happy that we got rewarded on the day that we needed to win. If you get hit for a boundary and it's a good ball, then fine. But you try to put the ball in a good area as much as you can.
0: तो IPL में प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीमों का फैसला हो चुका है। राजस्थान रॉयल्स पहुंचे हैं, उनके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर डिफेंडिंग चैंपियन पहले पायदान पर रहे, पॉइंट टैली में गुजरात टाइटन दूसरे पायदान पर, सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे पायदान पर। चलते चलते आपको बता दें बर्थडे के बारे में, महिला क्रिकेट टीम वैसे भारत की इंग्लैंड पहुंच चुकी है और वहां पर वो T20 वर्ल्ड कप खेलेगी। इंग्लैंड और वेल्स में मुकाबला आयोजित किया जाएगा, उसके बाद एक टेस्ट मैच भी होगा। जुलाई के आखिर में भारतीय महिला टीम वापस लौटेगी। और उसके अलावा अगर बर्थडेज़ की बात करें तो केकिसो रबाडा आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, जो कि जाने माने तेज गेंदबाज हैं। 26 मई को सुनील नारायण क्रिकेटर अपना बर्थडे मनाएंगे और स्टीवन जेरार्ड 30 मई को उनका बर्थडे होगा। 31 मई को इगा स्वेतिक, जो कि पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं, अपना बर्थडे मनाएंगी। फिलहाल शिवेंद्र को अनुमति दीजिए, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। आप अपना बहुत ध्यान रखिए, नमस्कार।
2: Hima Das has done it. India win by 137 runs. They go 2-1 up in the series.
3: Sports Pulse.
4: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।

रुका हुआ कोई फैसला आपके हक में आ जाए, कोई बात जो रात जिस परेशानी में बीत रही है और आँख खुले और जल्दी से उम्मीद है कि सुबह हो जाए तो सब अच्छा लगता है ना। कोई पल ऐसा ना बीत रहा हो जो बहुत ही रुक गया है और आप उसमें बेचैन हैं और वो बेचैनी वाला पल ख़त्म हो जाए तो भी अच्छा लगता है। और ये जो रुकी रुकी सी ज़िंदगी है, ठहराव कुछ वक्त के लिए अच्छा है लेकिन आगे निरंतर बढ़ते रहना ही जिंदगी है। और आप भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के सफर में। मैं हूँ आपके साथ अनुपुर कुलश्रेष्ठ और ये साथ बिल्कुल आपके साथ बना रहेगा 9 बजे तक। तो कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट। और ज़रूरी है रहना आपका स्मार्ट, क्योंकि आप ही तो हैं हमारे स्टार्स और हमारे स्टार्स फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट रहें, बस यही दुआ रहती है। इसी दुआ के साथ मैं अनुपुर कुलश्रेष्ठ स्वागत कर रही हूँ आप सभी का इस सफ़र में।

तो बिल्कुल आप तैयार हैं एक सफ़र पर निकलने के लिए, और जब सफ़र पर निकलते हैं तो फिर पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं, देख लेते हैं कि बाहर जो मौसम का हाल कैसा है। अपने अंदर का हाल तो आपने जान ही लिया है कि आपके अंदर का जो मौसम है वो कैसा है। अच्छा फील कर रहे हैं और बिल्कुल रिफ़्रेश है, रिवाइव्ड है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद आप वीकेंड के बाद आप बिल्कुल तैयार हैं अपने सफ़र पर निकलने के लिए। और ठीक है, मैंने माना कि आपके हो सकता है कि सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी, और ये भी हो सकता है कि आपका संडे भी वर्किंग हो, किसी वजह से आपको ऑफिस जाना पड़ा हो, कुछ टास्क हो, कुछ असाइनमेंट हो जो आपको कंप्लीट करना हो, और कई बार जाना भी पड़ता है, तो हर किसी के जो ऑफ है वो अलग अलग दिन होता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन मंडे वाली जो वाइब्स हैं वो आपके अंदर रहनी चाहिए, और मंडे वाली वाइब्स का हम स्वागत कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और आप पूरी तरीके से तैयार हैं ऑफिस जाने के लिए, तो बिल्कुल तैयार रहिए। बाहर का मौसम का हाल मैं आपको बता देती हूँ। आज रहने वाला है अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस। और अगर बात करें मौसम की, तो बिल्कुल अपना ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले जो 3 दिन हैं उसे येलो अलर्ट जारी किया गया है इन 3 दिनों के लिए, क्योंकि लू भी चलेगी अच्छी खासी, और उसके बाद ऐसे में अपना आपको ध्यान रखना है। और 3 दिन के बाद कुछ उम्मीद जताई जा रही है कि गुरुवार से थोड़ी सी राहत मिलेगी, जिस तरह की गर्मी है उससे आपको थोड़ा सा आलम ऐसा हो, राहत भरा। लेकिन हाँ, गुरुवार तक आप इंतज़ार कर सकते हैं, हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। और उसके बाद आने वाले दिनों में अगर हम बात करें तो बादल थोड़े से छाए रहेंगे और धूप से आपको गर्मी से राहत मिलेगी। तो अपना पूरा पूरा पूरा ख्याल रखें, अच्छे से पानी पिए, हाइड्रेटेड रहें, फ्रूट्स खाएं, अपनी कैप लगाएं, अम्ब्रेला कैरी करें, अपने आप को कवर करके चलें, अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ख्याल रखें, और लाइट खाएं और अच्छे से चार्ज लें और पूरी तरह से हाइड्रेटेड रहें। जुड़े रहें हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इसी सफ़र में। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आकाशवाणी रेनबो के सफर में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूं आपके साथ नुपुकुल श्रेष्ठ और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप। और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में हम वो जानकारी आप तक पहुंचाते हैं जो आपके लिए किसी ना किसी रूप से बहुत ज़रूरी है आप तक पहुंचना। और हो सकता है कि जो जानकारी है वो आपसे जुड़ी हो, आप उसका इंतज़ार कर रहे हों। तो यहाँ पर एक ख़ास इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। अगर आप भी लिखने में रुचि रखते हैं, लेखन में आपको रुचि है और आपको भी बहुत ही हर आर्टिस्ट की आपको अदायगी भाती है और आप फिर ख़ुद को उसमें ढाल लेते हैं और फिर घर वालों के लिए बहुत ही अच्छे से उनको एंटरटेन भी करते हैं, अपने दोस्तों को भी एंटरटेन करते हैं, आपको उसमें मज़ा आता है, तो यहाँ पर मौका आपके लिए है। क्योंकि स्कूल ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो भीमराव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, उसके इस डिपार्टमेंट में रचनात्मक लेखन, थिएटर आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स जैसे पाठ्यक्रमों में दाखिले के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। और आप यहां पर स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रवेश पोर्टल पर 19 जून तक आपको पंजीकरण कराना है। तो बस ये इंतज़ार आपका ख़त्म होता है और है ना अच्छी बात। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे सफ़र में करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मैं हूं आपके साथ नुपुर, और साथ ही साथ वो जानकारी जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है और उसी जानकारी के बीच में से ये बात आपके लिए, बहुत सारी बातें हैं जो आप तक पहुंचानी हैं आपके सफ़र से लेकर, अगर आप भी किसी सफ़र पर जाना चाह रहे हैं या निकल चुके हैं और आज एक खास दिन है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बिल्कुल बता दें, दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय DSEU ने 10वीं के बाद जो अलग अलग तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम है उसमें प्रवेश के लिए जो कि आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो वहाँ पर पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ाकर 10 जून कर दिया गया है। और इससे जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.dseu.ac.in और /admission/2026-27 पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप तमाम जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 33 वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है और 26 मई तक यानी कल तक वॉक इन इंटरव्यू होगा। और अगर आप देखना चाहते हैं, सारी जानकारी चाहते हैं प्रक्रिया और पात्रता से जुड़ी हुई, तो आप स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं health.delhi.gov.in और यहाँ पर इससे जुड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुरों की शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित।
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे। कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नुपुर और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है और इस पावन पर्व में आप सभी की सुविधा के लिए एक खास अनारक्षित रेलगाड़ी चलाई जा रही है। और अगर आप भी सफ़र कर रहे हैं बिल्कुल हरिद्वार तक, तो हरिद्वार जंक्शन से गाड़ी 25 और 26 मई को दोपहर 3:45 चलकर रात 9:30 दिल्ली शाहदरा जंक्शन पहुंचेगी। और अगर आप हरिद्वार से दिल्ली आ रहे हैं तो आप इस समय को नोट कर लीजिए, 3:45 ये जो वक्त है इस पर रेलगाड़ी जो है वो पटरी पर दौड़ जाएगी। और उसके बाद अगर आप दिल्ली से वहां पहुंच रहे हैं तो रात 11:30 का टाइम है और सुबह आप 4:15 पर हरिद्वार जंक्शन पहुंच जाएंगे। तो दिल्ली शाहदरा जंक्शन ये स्टेशन है और हरिद्वार जंक्शन पहुंचेगी। और इसी के साथ साथ आप बिल्कुल ये जो ट्रेन है वो पहुंच जाएगी, ये जो टाइमिंग्स है मैंने आपको बता दिए हैं। और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी ख़ास खबरें हैं जो बिल्कुल आपके साथ साझा करनी है इसी सफ़र में। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

और स्कूलों की छुट्टी हो चुकी है और बच्चे हैं वो बहुत सारा शोर मचाते हैं, और आपको लगता है कि कहीं तो इनको एनरोल कराया जाए ताकि कुछ सीखे समझे। और बहुत सारे जो समर कैंप्स होते हैं उसमें आपने अलग अलग एक्टिविटीज़ में एनरोल भी किया है, और अगर आपको इंतज़ार था कि चिड़ियाघर बच्चों को लेकर जाएँ और यहाँ के समर कैंप का, तो बिल्कुल आप पहुँच सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं 27 मई तक। और जी हाँ, समर कैंप के लिए और बहुत सारी जानकारी बच्चों को मिलेगी, पर्यावरण संरक्षण के बारे में, वन्य जीवों के महत्व की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो ये जो समर कैंप है इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 27 मई तक, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 2435-8500। और अगर आप दिल्ली के बाहर से यहाँ पर आना चाह रहे हैं और इस समर कैंप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप 011 ज़रूर लगाइएगा, और इस नंबर से आप जानकारी ले सकते हैं समर कैंप की जुड़ी हुई। आप जुड़े हैं हमारे साथ इसी सफ़र में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

देखिए, हीर को बिल्कुल भी सैड होने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट आपको भी सैड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी खबर है। और इस तरह की जो खबरें हैं ना, वो आपके हौसले को बढ़ाती हैं और आपको लगता है कि हाँ, हम कुछ बेहतर कर सकते हैं अपनी प्रकृति के लिए, और किया भी है। और ये जो पहल की गई है, वो की गई है मेघालय के वैज्ञानिकों ने, प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए एक बेहतरीन और अनोखा तरीका खोज निकाला है। और शिलोंग के सेंट एडमंड्स कॉलेज के वैज्ञानिकों ने केले के छिलकों का इस्तेमाल करके एक ऐसा बायोप्लास्टिक बनाया है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये मिट्टी में कुछ ही हफ्तों में अपने आप ही गल जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। इससे कचरे का, जैसे कि घर में मंडियों में जो निकलने वाले केले के छिलके हैं, हम उसको ऐसे फेंक देते हैं, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। और जहाँ पर प्लास्टिक इतने साल ले लेती है और नहीं गलती है, तो वहाँ पे ये जो बायोप्लास्टिक है मिट्टी में दबाने में सिर्फ 15 दिन में गल जाएगा। और समुद्री जीव भी है, इससे सुरक्षित रहेंगे, प्रकृति को नुकसान कम पहुँचेगा। अगर इस तरह से हम इस पहल को और भी एक व्यापक रूप में अगर इस पर काम किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। और ये मिट्टी के बैक्टीरिया का भोजन बन जाता है, जिससे मिट्टी जहरीली नहीं होती और उपजाऊ बनी रहती है। तो ये जो केले के छिलके हैं, बहुत काम के हैं। और फलों और सब्जियों की रैपिंग होगी, कैरी बैग और छोटे लिफाफे से बन सकते हैं, सूखे खाने के पैकेट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, और जो भी थैलियां हैं, जो हम कचरा भी जिसमें फेंकते हैं, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। और इसी खबर के साथ अब मैं नूपुर कुलश्रेष्ठ आपसे लेती हूँ इजाज़त, लेकिन जाने से पहले बिल्कुल बता दूँ, कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने, इसमें आपके साथ होंगे निखिल कुमार। और उसके बाद समय रहेगा मैशलेस म्यूजिक आर का, इसमें आपके साथ होंगे देवर्षि रावत। और उसके बाद बॉलीवुड की खबरों के साथ 11:05 से लेकर 12 तक आपके साथ जुड़ेंगी बॉलीवुड ट्रेल्स में रश्मि गुप्ता। मैं नूपुर कुलश्रेष्ठ अब आपसे लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। और आइए अब हम सुनेंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर। एंजॉय कीजिए।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

और श्रोता, आपको मैं बता दूं, मेरे जाने के बाद देवर्षि रावत आपके साथ में होंगे लेकर के प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक का मैचलेस म्यूजिक आर, और उसके बाद रश्मि गुप्ता आपके साथ होंगी बॉलीवुड ट्रील्स को लेकर के, और फिर देवर्षि रावत आपके साथ होंगे एक बार फिर 12:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक के प्रोग्राम प्ले इट कूल के साथ में। तो ये सभी आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, हम फिर मिलेंगे, बने रहें आप रेनबो पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की वृद्धि की गई। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। नवीनतम जानकारी के लिए विद्यार्थियों को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क रखने को कहा गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला लिया गया है। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीति साझेदार बनाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 18 ओवर और 4 गेंद में 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामना की है कि प्रकृति की असीम कृपा, सूर्यदेव की ऊर्जा और वर्षा बूंदों के आशीर्वाद से हर एक का जीवन आनंद और सौभाग्य से भरपूर हो। संस्कृत की एक उक्ति साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि धरती सदा सर्वदा हरी भरी और समृद्ध बनी रहे। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी गर्मी और उमस रहेगी। वहीं मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं केरल, माहे, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: Oh, that was from the movie Jewel Thief. Ye Dil Na Hota Bechara by Kishore Kumar. Yes, I hope you guys and girls are enjoying the show over here. Time right now is 10:49. And yes, we're going to take a quick break right now. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: Namaskar. Ye Akashvani hai. 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है।

सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में दिए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कहा कि इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों से जुड़े लोगों के अधिकारों को संरक्षित करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
2: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। यह स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद के तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 874 अंक के उछाल के साथ 76,289, जबकि निफ्टी 264 अंक बढ़कर 23,983 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, और आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी होस्ट रॉकिंग रश्मि। प्रोग्राम है आपका जाना पहचाना बॉलीवुड रेल्स, जिसमें लेकर आते हैं बॉलीवुड की चटपटी खबरें। किस किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। साथ में होता है एक नन्ना मुन्ना सा सवाल, और जिसका जवाब देकर आप बन जाते हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। और क्या होता है? और होता है एक या दो या तीन या ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ का बर्थडे, जिनका बर्थडे हम मनाते हैं आपके साथ ऑन एयर, करते हैं उनके बारे में कुछ बात, और साथ में लेकर आते हैं बहुत सारे नकमे, अच्छे, बहुत अच्छे या फिर बहुत बहुत अच्छे। तो बस रहिए हमारे साथ इस पूरे एक घंटे, क्योंकि बॉलीवुड के गलियारे से आज बहुत सारी खबरें हैं आपके लिए हमारे पास।

0: जी हाँ, यदि बात हाथ मिलाने की हुई है ना, तो बताएं आपको कि हमारे जो खिलाड़ी कुमार हैं, अक्षय कुमार, उन्होंने भी हाथ मिला लिया है इंटरनेशनल नामों के साथ. जी हाँ, हॉलीवुड स्टंट कोऑर्डिनेटर ल्यूक थंबर के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है. और आप पूछेंगे, भाई ये क्या कारण हुआ? ये कारण ये हुआ कि अब अक्षय कुमार ने हाथ मिला लिया है इनके साथ एक साइंस फिक्शन फिल्म के लिए. जी हाँ, इससे पहले अक्षय कुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि अब से बहुत सारी फिल्में इनकी आपने देखी हैं जिसमें कॉमेडी भी है, सीरियस मूवीज़ भी हैं और रोमांटिक फिल्में भी हैं. लेकिन इस बार अक्षय कुमार साइंस फिक्शन में एंट्री लेने जा रहे हैं और इस तरह से बॉलीवुड का पूरा गेम बदलने के लिए तैयार हो गए हैं एक बार फिर से अक्षय कुमार. अभी तक एक्शन और कॉमेडी आप देखी है, लेकिन इस बार है एक नया जोनर. और वो क्या है? वो ये है कि अक्षय कुमार भारत की पहली एलियन थ्रिलर फिल्म लेकर आने वाले हैं, जिसमें वो खुद एलियन से सामना करते हुए नजर आएंगे. अब आप कहेंगे, ऐसा कैसे भाई? ऐसा इसलिए कि फिल्म के जो टाइटल है ना, उसके बारे में भी हमें पता चल गया है और ये भी पता चल गया है कि ऐसा वाकई में हुआ है. नाम क्या है फिल्म का? बताएंगे ज़रूर आपको बताएंगे. फिल्म का जो नाम फ़िलहाल फाइनल हुआ है, उसका नाम है समुक. और इसमें अक्षय कुमार लीड रोल निभा रहे हैं और इसी के लिए उन्होंने हॉलीवुड स्टंट कोऑर्डिनेटर ल्यूक थंबर के साथ हाथ मिलाया है. बड़े पैमाने पर बनेगी ये फिल्म और बड़े पैमाने पर दिखाई देगी हमें. फिलहाल हमें जो दिख रहा है ना, वो है ट्रैक नंबर 2, वो अक्षय कुमार की फिल्म दे दनादन से. तो चलिए एंजॉय कीजिए और एंजॉय कीजिए हमारे साथ.
1: क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज़?

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: और अब खबर ऐसी फिल्म से जिसका इंतजार है सभी को बहुत बेसब्री से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रणबीर कपूर की रामायण की। 4,000 करोड़ की इस फिल्म को पहले डिसाइड किया गया था कि ये रिलीज होगी दिवाली पर, है ना। लेकिन जिस तरह से माहौल चल रहा है इस समय इंडस्ट्री का, तो सबको ये लगता है कि कोई भी वीकेंड आता है या कोई भी हॉलीडे टाइम आता है ना, तो उससे पहले पहले फिल्म रिलीज़ कर दी जाए ताकि वो जो छुट्टियों के दिन होते हैं उसका फ़ायदा उठाया जा सके भरपूर। और यदि त्यौहार होगा होली दिवाली का, तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारी छुट्टियाँ होंगी और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी टाइम मिलेगा फिल्म देखने का। इसीलिए अब कोशिश ये की जा रही है कि इस फिल्म को जल्दी रिलीज़ कर दिया जाए, और हो सकता है कि अब ये फिल्म दिवाली से पहले यानी 30 अक्टूबर 2026 को रिलीज़ कर दी जाए। आपको बता दूं कि इस फिल्म में रणबीर कपूर बने हैं श्री राम और माता सीता का किरदार निभा रही हैं कौन, साही पल्लवी। जी हाँ बिल्कुल, लोगों ने काफ़ी पसंद किया है उन्हें। और इसके साथ साथ हमारे 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल साहब हैं इसमें हनुमान जी के रोल में। तो अब आपको बताना है जब ये फिल्म रिलीज़ होगी ना कि आपको फिल्म कैसी लगेगी और कौन सा किरदार किस रूप में आपको सबसे अच्छा लगा, है ना। मुझे भी इंतज़ार है इस फिल्म के रिलीज़ होने का, आपको भी होगा, लेकिन फिलहाल आपको इंतज़ार होगा एक और प्यारे से ट्रैक का। तो चलिए, बहुत ही सुपरहिट ट्रैक इस समय चल रहा है, हालांकि ये भी एक रिमिक्स है। बहुत टाइम पहले एक फिल्म आई थी बाहर आने तक, उसमें ये गाना था और अब उसे रिमिक्स करके लेकर आए हैं आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी और साथ में है सारा अली खान और एक और एक्ट्रेस है ना, जल्दी से आप बता सकते हैं उसका नाम। जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, रकुल प्रीत सिंह।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुरों की शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराध्य।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और आपके साथ हूं मैं आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि।

0: जी हाँ बिल्कुल, इश्क हुआ है आपको बॉलीवुड की खबरों से, बॉलीवुड के सितारों से। और ऐसे ही एक सितारे हैं कुछ खास, और ऐसे ही सितारों से भरी एक फिल्म आने वाली है, रामायण। जी हाँ, अब मैं बात कर रही हूँ रामायण की, लेकिन साथ में है बॉलीवुड का सवाल। जी बिल्कुल, तैयार हो जाइए आज के बॉलीवुड क्विज के लिए, क्योंकि अब जो सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ वो इसी फिल्म से है और इसी फिल्म में उपस्थित एक ज़बरदस्त सितारे से है। आपको ये बताना है कि रामायण में, जो रणबीर कपूर की रामायण आ रही है, उसमें हनुमान जी का किरदार कौन से कलाकार निभा रहे हैं, कौन से हमारे सुपरहिट स्टार हैं जो इसमें हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं। आपको बताना है अपना नाम, उनका नाम, और साथ में अपना फ़ोन नंबर लिखकर भेजना है ताकि हम आपको बना सकें सही जवाब के साथ बॉलीवुड सरताज। और ध्यान रखिएगा, अपना फ़ोन नंबर लिखना मत भूलिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है माय लिसनर्स जो नंबर लिखकर भेजते हैं वो उनका व्हाट्सएप नंबर नहीं होता और उसकी वजह से उनसे बात नहीं हो पाती। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड रील्स अपने होस्ट एंड दोस्त रॉकिंग रश्मि के साथ, और आज का सवाल है बहुत ही आसान, हनुमान जी का किरदार कौन से एक्टर निभा रहे हैं अपकमिंग फिल्म रामायण में।
1: हश हश हश, पापा स्लीपिंग।

0: all year round, every season. That's right.
1: वेल, बॉलीवुड रील्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। अब जो खबर मैं आपको देने वाली हूँ ना, वो काफ़ी चर्चा का विषय बन चुकी है और उसकी वजह है मौनी रॉय। जी, वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म जो रिलीज़ होने वाली है 5 जून को, है जवानी तो इश्क होना है। जी हाँ, बिल्कुल, इस फिल्म में के साथ मौनी रॉय आ गई है चर्चा में और वजह ये है कि इस फिल्म में वो बनी है वरुण धवन की मम्मी। उफ, ये क्या हो गया। मौनी रॉय इज़ जस्ट 40 एंड जो वरुण धवन है वो है 39 की, और उसके बावजूद मौनी रॉय को उनकी मम्मी बना दिया है। सोशल मीडिया पर ये जो चर्चा है ना, अच्छी खासी मतलब कंट्रोवर्सी बन गई है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मौनी रॉय को उनकी मम्मी का रोल निभाना पड़ रहा है। और देखिए ना, कितनी अच्छी अच्छी फिल्मों में वो आई हैं, नागिन बनके उन्होंने जो टेलीविजन इंडस्ट्री है उसमें अपना एक अच्छा परचम लहराया है। उसके बाद बहुत सी फिल्मों में आई, अक्षय कुमार की हीरोइन बनकर आई, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि वरुण धवन की मम्मी बनना पड़ रहा है। वेल, मे बी कि फिल्म में कॉमेडी का कोई एंगल हो और या फिर कुछ और हटके फिल्म की स्टोरी हो जिसकी वजह से वो उनकी नकली माँ का किरदार निभा रही हैं, ऐसा पता चला है फिल्म के प्रोमो से, है ना। तो ये सही बात पता चलेगी 5 जून 2026 को जब ये फिल्म रिलीज़ होगी, लेकिन तब तक हम कर सकते हैं सिर्फ इंतज़ार। और ये जो सोशल मीडिया पर चिंगारी भड़काई है ना हमारी मौनी रॉय ने, वो उसका जो इंतज़ार है या उसका जो अंत है वो होगा 5 जून को। तो चलिए, आप और हम मिलकर करते हैं इसका इंतजार, लेकिन तब तक सुनते हैं एक और प्यारा सा ट्रैक।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: जी हाँ, बॉलीवुड में एक बार फिर से आपका स्वागत है बॉलीवुड रील्स में और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी रश्मि। जी दोस्तों, आज जो मैंने आपसे सवाल पूछा है बहुत ही आसान है और वो ये है कि हनुमान जी का किरदार फिल्म रामायण में कौन निभा रहे हैं। आपको बताना है उनका नाम, अपना नाम, अपने शहर का नाम और साथ में अपना फ़ोन नंबर लिखकर भेजना है 9868107070 पर।

वेल, आज है 25 मई और आज के दिन बर्थडे मना रहे हैं इंडियन सिनेमा के एक ऐसे डायरेक्टर, एक्टर भी रहे हैं वो और साथ साथ टेलीविजन होस्ट भी रहे हैं, लेकिन फिल्मों को प्रोड्यूस करने के नाम पर और डायरेक्ट करने के साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा फेमस डायरेक्टर माने जाते हैं, प्रोड्यूसर माने जाते हैं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में. जी हाँ, फैमिली ड्रामास हो, रोमांसेस हो या फिर लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग हो, हमारे करण जौहर साहब को ना फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी पसंद किया जाता है. यदि हम उनकी फिल्मों की बात करें तो कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और ए दिल है मुश्किल, इसके साथ ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर और भी बहुत सारी फिल्म में, जैसे कौन सी आई थी आप बताइए, और कौन कौन सी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, गोस्ट स्टोरीज, लव स्टोरीज, बॉम्बे टॉकीज हो या फिर कल हो ना हो, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं. ब्रह्मास्त्र के साथ भी वो हमें हमने देखा उनको, उनकी प्रोड्यूस की हुई फिल्म थी, और भी बहुत सारी फिल्मों के साथ करण जौहर पसंद किए जाते हैं. तो आज करण जौहर मना रहे हैं अपना बर्थडे और हम यहाँ पर यानी कि एफएम रेनबो के स्टूडियो से उनको कर रहे हैं बहुत सारी विशेस दे रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ साथ चाह रहे हैं कि प्लीज़ करण जी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में और भी लेकर आइए, ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं, हमारे ऑडियंस हैं, उनको और भी अच्छी फिल्में देखने को मिले. फिलहाल आप ही की फिल्म से ये ट्रैक सुना रही हूँ माई लिसनर्स को, लेकिन हमारे प्यारे दोस्तों ये बिल्कुल मत भूल जाइएगा कि केवल करण जौहर जी का बर्थडे नहीं है आज, एक और बहुत ही फेमस एक्टर हैं, उनका भी बर्थडे मनाएंगे, लेकिन वो कौन है जानेंगे इस ट्रैक के बाद.

0: जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि करण जौहर के अलावा एक और एक्टर हैं जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। यदि हम उनकी बात करें तो बाल कलाकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्धि पा चुके थे ये, और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में बड़े होकर भी उन्होंने काफ़ी एक्टिंग की है। राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और साथ साथ सिंगर कंपोज़र भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुणाल खेमू की। गोलमाल फ्रेंचाइजी हो या फिर कलयुग, ढोल, लूट केस, मलंग, गो गोवा गॉन, जी ध्यान आ गया ना आपको कुणाल खेमू कौन है। साथ में सोहा अली खान के हस्बैंड हैं और बहुत ही नामी गरामी कह सकते हैं कि एक्टर हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ना उन्होंने अच्छी खासी पहचान बनाई है अपने बचपन से ही। तो आज कुणाल खेमू को हमारी ओर से बहुत बहुत सारी बेस्ट विशेज उनके बर्थडे पर। आप यूं ही काम करते रहें, अच्छी अच्छी फिल्में हमें दिखाते रहें और अच्छी अच्छी एक्टिंग करके नाम कमाते रहें।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलता।

0: माताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: जी हाँ, वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है। यदि आपने अभी तक हमारा क्वेश्चन नहीं सुना है तो आपको बता दें कि आज का सवाल बहुत ही आसान है। वो कौन से एक्टर हैं जो रामायण फिल्म में हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं? आपको बताना है उनका नाम, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ, और उसे भेज देना है 9868107070 पर।

0: वेल, अब वक्त है हमारे ये लिसनर्स को ये बताने का कि आज के बॉलीवुड सरताज कौन बने हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मैं रश्मि जैनन त्यागी, मोदी नगर से।
0: क्या बात है, जैनन त्यागी जी बोल रहे हैं मोदी नगर से, और सबसे पहले सही जवाब देकर बन गए हैं हमारे बॉलीवुड सरताज। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर कि हनुमान जी का किरदार किसने निभाया है फिल्म रामायण में।
1: ये सनी देओल।
0: सनी देओल साहब हैं, और बहुत ही मतलब आपको पसंद है वैसे सनी।

0: जी,
1: उनकी पिक्चर तो मैं देखता ही हूँ।
0: उनकी फिल्में देखते हैं और अब आपको इंतजार है इस फिल्म का।
1: जी,
0: बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे साथ जुड़े, बिल्कुल सही जवाब देकर सबसे पहले आप बन गए हैं बॉलीवुड सरताज, तो बहुत बहुत मुबारक आपको हमारी ओर से। थैंक यू सो मच। तो इसी तरह से आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारे सही सही जवाब देकर जब हम आपसे कोई भी सवाल पूछते हैं। बहुत सारे लिसनर्स हैं जो जुड़े हैं, जिसमें है रेहाना साफिया, प्रवीण लिख रही हैं, जहांगीरपुरी दिल्ली से। इसके अलावा एक सही जवाब आया था कान्हा का मेरठ से, मोहम्मद कासिम कीरतपुर से, सनी देओल लिख कर भेजा है, संजय दर्शन ने मुंबई से, जहीर अहमद मुजफ्फरनगर से लिख रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद फुरकान है, सर मलिक का सॉरी मनिका है नामची सिक्किम से। इसके अलावा कौन है, यह धर्म भाटिया रोहतक से, राजपाल मुखर्जी और कांठ से मोहम्मद फुरकान है, और इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे सलीम मेरठ से लिख रहे हैं, और ये कौन है प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से। इनका बिल्कुल सही जवाब था दानिश खतौली से थे, लेकिन चूंकि वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है तो बस आज के लिए इतना ही। लेकिन आपसे वादा कर रही हूँ कि 1:05 पर आपसे फिर मुखातिब होंगी और तब आपके लिए लेकर आऊँगी प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन, और आई होप कि उस प्रोग्राम में भी आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा इंश्योरेंस से रिलेटेड मैटर्स। यदि आपका भी कोई इससे जुड़ा सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन में। तब तक नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
2: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। लगभग 966 बक्सों में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर एक बार फिर से लेकर आई हूँ मैं आपका अपना प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन, जिसमें लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ खास विषय जिससे रिलेटेड सवालों के जवाब आपको मिलते हैं हमारे एक एक्सपर्ट के द्वारा। तो आज का क्या विषय है बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे, आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि। दोस्तों, आज के समय में ना इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हेल्थ इंश्योरेंस हो या होम इंश्योरेंस, कार, बाइक या कोई भी व्हीकल जो आपके पास है उसका इंश्योरेंस लेना मस्ट हो गया है। और तो और आजकल लोग जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ना, उनका भी इंश्योरेंस कराने लगे हैं, है ना। लेकिन सच बात ये है कि बहुत से लोग पॉलिसी तो ले लेते हैं लेकिन उसकी शर्तें नहीं समझते, जिसकी वजह से फ्यूचर में उन्हें काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं। और कई बार वो केवल एजेंट की बातों को सुनकर ही, उनकी बातों पर भरोसा करके ही पॉलिसी ले लेते हैं और फिर परेशानी होती है। कुल मिलाकर या तो क्लेम नहीं मिलता या क्लेम लेने में समस्या होती

0: होती है। तो इन्हीं सारे लीगल सॉल्यूशंस के लिए, इन सारी समस्याओं के जवाब के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के एक्सपर्ट एडवोकेट श्री संजय कुमार गिरोत्रा, जो इंश्योरेंस लॉ एक्सपर्ट हैं और आज आपकी इंश्योरेंस रिलेटेड समस्याओं का लीगल सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैडम आपका यहाँ बुलाने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए।
0: क्या बात है सर, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये बताने के लिए कि भाई जो भी सवाल आपके हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है रेनबो हेल्पलाइन। और हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 011-234-2108 और 011-234-2104।

0: जी हाँ दोस्तों, कल हो ना हो लेकिन यदि कल को आप सही ढंग से जीना चाहते हैं, कल तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे इंश्योरेंस से गुजरना पड़ता है। कई बार आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, या अपने व्हीकल इंश्योरेंस लेना पड़ता है, मोटर इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होती हैं। और यदि आप किसी वजह से क्लेम नहीं ले पाते, या उससे रिलेटेड आपको कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ता है लॉ एक्सपर्ट के पास, जो इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको बातें समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज रेनबो हेल्पलाइन में हम कर रहे हैं इसी विषय पर बात। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट श्री संजय कुमार गिरोत्रा, जो इंश्योरेंस लॉ एक्सपर्ट हैं, और आपकी समस्याओं का निपटान करने के लिए ही आज हमने उनको यहाँ पर इनवाइट किया है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहती हूँ वो ये है कि जो इंश्योरेंस होती है वो लेना क्यों ज़रूरी है, और किन बातों का ख्याल पॉलिसी लेने वाले को ध्यान में रखना चाहिए कि वो इंश्योरेंस लेते वक्त ध्यान में रखें।
1: मैडम, आपने बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट बात पूछी है। देखिए, इंश्योरेंस लेने का मेन पर्पज़ है आपकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन करना, ठीक है। ज़िंदगी में हमारी कई तरह के रिस्क होते हैं, जोखिम होते हैं। फॉर एग्जांपल, डेथ हो जाना किसी की, अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाना, प्रॉपर्टी में आग

0: आईसीयू का, और हम लोग लाइफ लाइट डिजीजेज भी हैं आजकल.
1: जी जी जी.
0: इस कारण इंश्योरेंस का, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस पे आए तो हेल्थ इंश्योरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम में. इसके अलावा हम लोग इतनी मेहनत करके प्रॉपर्टीज बनाते हैं और हमको इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि उन प्रॉपर्टीज का
1: इंश्योरेंस भी कराना है. बिल्कुल बिल्कुल.
0: और जब कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, इवन हमारे घर में जो कीमती सामान पड़ा होता है, हम सामान इतना लाखों रुपए का लाते हैं लेकिन उसको इंश्योर नहीं कराते, हमको नहीं पता होता हमारा थेफ्ट का भी इंश्योरेंस होता है.
1: जी जी.
0: तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अवेयरनेस इसके बारे में बहुत जरूरी है. और इसके अलावा एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास सभी लोग आज की जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो व्हीकल्स के बेस पे चलती है. हमारे पास जो कार स्कूटर वगैरह हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनका भी इंश्योरेंस कंपलसरी होता है. कुछ पार्ट उसका कंपलसरी होता है, फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, वो तो एज पर लॉ ही कंपलसरी है.
1: जी जी जी.
0: ठीक है. इंश्योरेंस मेनली वॉलंटरी होता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, हमारा प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है, दिस इज वॉलंटरी. लेकिन कुछ इंश्योरेंस लॉ हमको कंपेल करता है कि आपको करवाना ही है. जैसे मैंने आपको बताया एक मोटर व्हीकल का. इसके अलावा जो लोग एम्प्लॉयज हैं कहीं पर, उनका जो कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस कराया जाता है, एम्प्लॉयज इंश्योरेंस, वो भी कंपल्सन होता है लॉ में.
1: जी.
0: सो ये हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस और उसका इंश्योरेंस. देखिए, बेसिकली सच कहूँ तो एक इंटेंजिबल एसेट है और इट इज द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ एन इंडिविजुअल.
1: बिल्कुल, आप कह सकते हैं. जी.
0: और एक इंसान के फाइनेंशियल क्राइसिस आने पे उसके उसके फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे ठीक होंगे, ये डिपेंड करेगा उसकी अवेयरनेस पे, उसने कितना अवेयर होकर इंश्योरेंस कराया है.
1: जी.
0: अब आपने पूछा कि इंश्योरेंस कराते टाइम क्या क्या ध्यान रखना जरूरी है. देखिए, मैं एज ए लॉयर, हम लोग कोर्ट में रोज केसेस देखते हैं जहाँ पर मैक्सिमम क्लेम इस कारण आते हैं कि हमको पता ही नहीं है कि हमने क्या करवाया है. एक ये अजीब सा लगेगा आप लोग, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि आज के बिजी शेड्यूल में हम लोग जब पॉलिसी कराते हैं तो प्रपोजल फॉर्म अगर मान लीजिए किसी ने हमको दे दिया, हम उसको साइन कर देते हैं, हम ये भी नहीं देखते उसके अंदर लिखा क्या
1: लिखा है.
0: डिस्पाइट कि हम वी आर वेरी ऑल एज वेरी एजुकेटेड, स्टिल एक गुड फेथ पे भी चलता है सब कुछ. इसके अलावा आजकल लोग ऑनलाइन पॉलिसीज लेते हैं.
1: बिल्कुल.
0: इवन आप ऑनलाइन में भी देखेंगे तो ऑनलाइन पे हम लोग नीचे टिक टिक टिक करते जाते हैं और उसमें आता है नीचे कि आप कंडीशंस पढ़िए, जो कंडीशंस दो पेज की होती हैं हम उनको अवॉइड
1: कर देते हैं.
0: लेकिन मैडम, जब ये केसेस कोर्ट में पहुंचते हैं या भगवान ना करे किसी के साथ मिस हैपनिंग होती है, तब इस चीज का इफेक्ट पता चलता है, रियल इफेक्ट.
1: जी.
0: सो इंश्योरेंस लेते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली चीज़, आप कभी भी कोई भी प्रपोजल फॉर्म भरें, चाहे वो मैनुअल भरें या ऑनलाइन भरें, उसको अच्छे से देख के भरें. और इसके लिए मैं ये कहूँगा, आजकल आज के ज़माने में देखा ये गया है, हम लोगों का सबका बिजी शेड्यूल है, हम लोग आमतौर पर अपनी पॉलिसी भी लास्ट मोमेंट पर लेते हैं और लास्ट मोमेंट पर पहुँचने का नुकसान क्या होता है कि हम लोग उस टाइम जल्दी जल्दी में काम करते हैं और वो काम ठीक से हो नहीं पाता.
1: जी.
0: तो अच्छा होगा कि हम हर चीज़ का, इन चीज़ को प्रॉपर इम्पोर्टेंस दें. और पहली चीज़, जैसे मैंने आपको बताया, प्रपोजल फॉर्म ध्यान से
1: पढ़ें.
0: ये देखें कि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हैं क्या वो आपके नीड के अकॉर्डिंगली है, या ऐसा तो नहीं कि आपने एजेंट ने इन्फोर्स कर दिया अपने पर्पज से तो आप ले रहे हैं. नो, आइडेंटिफाई योर नीड्स. अगर इसके बारे में आप अवेयरनेस जानना चाहते हैं तो आज के टाइम में देखिए, इंटरनेट के ज़माने में बहुत सारे टूल्स हैं, ये आपके ऊपर है आप कितने उन टूल को यूज़ करते हैं.
1: जी.
0: इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, उनको यूज़ कीजिए. आपके नीड सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी नीड्स पता होनी चाहिए. तीसरी चीज़, आपको अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए. आप कभी भी ऐसा इंश्योरेंस मत लीजिए कि आप उसको कल को भर ना पाएं.
1: जी.
0: जो एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है. और कभी भी, और इसके अलावा आपके ये पता होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर क्या इंक्लूड है, क्या क्या, जो फॉर एग्जांपल आपकी कौन मेडिक्लेम पॉलिसी ही है तो आपको ये पता रहना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां इंक्लूड हो रही है, आपको पता रहना चाहिए. उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको, मेडिक्लेम पॉलिसी जब ली जाती है उसके अंदर कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो इमीडिएट इंक्लूड नहीं होती. फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, हर्निया का ऑपरेशन है, वो नहीं इंक्लूड होती. सो वी शुड नो दैट. और कई बार क्या होता है, लोग पॉलिसी लेके 3 महीने बाद उसका ऑपरेशन करा लेते हैं और वो केस कोर्ट में पहुंचता है कि इन्होंने
1: बिल्कुल. तो बहुत से लोगों को ये रहता है कि कैटरेक्ट तो कॉमन है और वो होगा, डेफिनेटली होगा.
0: अब ये होगा कि वो क्लेम मिले

0: कैसे,
1: जी
0: वो
1: जी
0: आपकी पॉलिसी में ही नहीं था।
1: जी
0: सेकंड, आपको ये पता रहना चाहिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर एक्सक्लूड क्या हो रहा है।
1: ओके
0: एक्सक्लूड जो चीज़ें इंक्लूड नहीं है, फॉर एग्जांपल आपकी ऑलरेडी जो डिजीज होती हैं
1: जी
0: उसको डिक्लेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: ओके
0: देखिए, उनको डिक्लेयर ना करना, इट अमाउंट्स टू फ्रॉड।
1: जी
0: इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ।
1: जी
0: कंपनी आप पे विश्वास करती है कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं।
1: अच्छा, यदि कोई ऐसा नहीं करता, जैसे आपने बताया प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज जो है वो पहले से बतानी चाहिए, यदि कोई पॉलिसी लेते वक्त तो उसे डिस्क्लोज नहीं करता तो उसको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता
0: मैं
1: है?
0: इसके अंदर आता हूँ। ये एक एस्टेब्लिश्ड लॉ है बाय आवर कोर्ट्स ऑल्सो।
1: जी
0: मैं आपको इसमें इवन एक केस रेफर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में एक मुथुलाल नायक के केस में ये डिक्लेयर किया था कि अगर कोई इंसान फ्रॉडुलेंटली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, ये केस
1: जी
0: LIC के अगेंस्ट था,
1: ओके
0: फ्रॉडुलेंटली LIC पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और उसके अंदर फ्रॉडुलेंटली फॉर एग्जाम्पल कैंसर किसी को हुआ और उसने
1: डिक्लेयर नहीं
0: इसलिए
1: किया।
0: पॉलिसी करा ली कि फटाफट मुझे पैसे मिल जाए
1: जी
0: उसके
1: जी
0: लिए,
1: जी
0: तो आप बेसिकली प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, आप अपने आप को अननेसेसरी एनरिच करना चाह रहे हैं। तो एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ लॉ, इस जैसे मैंने इस केस में ही बताया,
1: जी
0: ये एस्टेब्लिश किया गया कि अगर आप फ्रॉड करते हैं तो आपको कोई भी क्लेम पेबल नहीं होगा। सो
1: ओके
0: आपको बहुत केयरफुल रहना कि देखिए, आप अगर अपनी कोई बीमारी बता देते हैं तो उसका रिजल्ट शायद ये हो सकता है कि आपका शायद थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाए,
1: जी
0: लेकिन यू बी रिलैक्स्ड। आपकी पीस ऑफ माइंड के लिए, आपकी फैमिली, जिस चीज़ के लिए आप करा रहे हैं। एक इंसान लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मान लीजिए करा ले गया,
1: जी
0: उसके बाद उसके फैमिली को तो वो चीज़ मिली नहीं, तो क्या पर्पज़ उसका सर्व, उसका पैसा भी खराब गया और उनका
1: बिल्कुल
0: इतना समय भी खराब गया और अल्टीमेटली फैमिली को इतनी हार्डशिप फेस करनी पड़ी।
1: जी। तो आज हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस मैटर्स की। यदि आपका भी कोई सवाल है, अब जैसे सर ने बताया कि पॉलिसी लेते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना है, अक्सर आप पेपर्स नहीं पढ़ते, क्या शर्तें हैं, क्या टर्म्स हैं वो नहीं पढ़ते, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ किन बीमारियों से आप पहले से ग्रसित हैं इंश्योरेंस लेने से पहले, वो भी आपको पॉलिसी लेते वक्त जो एजेंट है उनको डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, वरना केस उल्टा पड़ सकता है। और ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स के साथ, हमारे ऑडियंस के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, और इसीलिए हम चाहते हैं कि बीच बीच में सवालों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हमारा जो फ़ोन नंबर है वो बहुत ही आसान है, हमेशा की तरह आप जानते हैं, 0112342108 और 0112342108 84। यदि आप WhatsApp के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 9868107070।

0: एक बार फिर से स्वागत सभी लिसनर्स का. आज हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड मैटर्स की. यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. हमारे पहले कॉलर लाइन पर हैं, जानते हैं इनका सवाल क्या है. हेलो,
1: नमस्कार सर.
0: सर आपका नाम बताइए और कहाँ
1: से बोल रहे हैं. मैं अरुण अग्रवाल बोल रहा हूँ, रोहिणी से.
0: जी, आपका सवाल पूछिए.
1: मेरा सर से सवाल है. सबसे पहले तो नमस्कार सर.
2: नमस्कार जी.
1: सर मेरा सवाल ये है, मैं जैसे 58 इयर्स का हूँ, आपने मुझे अभी बताया कि इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते टाइम में हमें सारी बीमारियां बतानी है और उसका एक जो है ऑनेस्ट डिस्क्लोजर करना है. तो बड़ी बीमारियां जैसे आपने कैंसर वगैरह बताया, स्पाइन, बट बीमारी की मैं डेफिनेशन नहीं समझ पाया कि क्या मेरे को अगर मेरे को ब्लड प्रेशर है, मेरे को शुगर है, ये तो हर किसी को ही है, या मेरे को टेंशन है, कुछ भी है, तो मुझे कहाँ बताना है, क्या बताना है, क्या कौन सी बीमारी ऐसी है जिसको आप कहते हो कि ये तो बतानी ही बतानी है और ये अगर नहीं भी बताएंगे तो चलेगा.
2: अरुण जी आपने बहुत,
1: मैं हूँ तो शुगर और या जैसे मेरी हड्डियाँ दुखती हैं टाइप का, ये
0: ठीक है अरुण जी. वो जी जी सर बता रहे हैं, होल्ड रखिए आप.
2: हाँ अरुण जी, देखिए आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछा है. अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, क्योंकि इससे और भी अवेयरनेस होगी लोगों को. देखिए जैसे आपने, हमने अभी डिस्कस किया कि ब्लड प्रेशर के बारे में या डायबिटीज़ के बारे में, ठीक है. देखिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर अगर मुझे ये मालूम है कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे ब्लड प्रेशर है, तो मुझे उसको डिस्क्लोज करना चाहिए. और देखिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लान्स हैं, इंश्योरेंस प्लान्स, और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा उसमें फ़र्क नहीं पड़ता. हमारा थोड़ा सा प्रीमियम इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन डिस्क्लोज़र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और डिस्क्लोज़र होने की वजह से हमारे को कोई भी कोई क्लेम में परेशानी नहीं आती है. आपने जैसे बात की, जैसे कुछ हड्डियों में दर्द वगैरह रहता है,
0: वो शुगर बीपी, ये जो कॉमन बीमारियां हैं, इनके बारे में भी बताना चाहिए.
2: हाँ शुगर, मैं वही शुगर बीपी की बात कर रहा हूँ. शुगर बीपी के लिए देखिए बहुत सारे प्लान्स हैं जो स्पेसिफिकली उस चीज को कवर करते हैं. स्लाइड्स उनके अंदर प्रीमियम ज्यादा होता है, आप उनको कीजिए. क्योंकि देखिए मैं एज एन एडवोकेट, हम लोग फेस करते हैं कोर्ट में केसेस जहाँ पे क्लेम रिजेक्ट होते हैं इसकी वजह से, क्योंकि शुगर ऑलरेडी नोन थी पर्सन को और वो नहीं बताई गई और उसके बाद जो क्लेम हुआ. देखिए शुगर एक ऐसी बीमारी है, वो शुगर हमारे बॉडी के हर चीज़ को इफेक्ट करती है
0: जी.
2: वो इस कारण वो डिस्क्लोजर बहुत इम्पोर्टेंट,
0: बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो छोटी छोटी परेशानियां हैं जिसे हम कॉमन समझ लेते हैं, लेकिन पॉलिसी में इस तरह की बीमारियों का जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एजेंट को. सर एक सवाल हम तक पहुंचा है, लिखने वाले पवन हैं, दिल्ली से लिख रहे हैं. कहते हैं मैंने एक प्लान लिया है जिसमें मेरे एजेंट ने मुझे कुछ भी बातों में बहलाकर प्लान दे दिया है, तो क्या मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, और मुझे इसका, यदि मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा तो मुझे उसका कुछ रिटर्न वापस मिलेगा, और मेरा प्लेन 20 साल का, ओके, मेरा प्लान जो है वो 20 साल का है और प्रीमियम जो है 65,000 पर एनम है.
2: देखिए पवन जी, आपने जो कहा कि आपका आपने एक पॉलिसी कराई है जिसका 20 साल का पीरियड और 65 साल
0: जी.
2: देखिए हर पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट होते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले मैंने कहा अपने प्रोग्राम की शुरुआत में कि हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे से ये पढ़ें कि हम पॉलिसी क्या करा रहे हैं, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं
0: जी.
2: और आज के टाइम में अवेयरनेस का टाइम है, हम किसी पर अंधा विश्वास मत करें, क्योंकि कोई भी अपने फायदे के लिए हमको कुछ भी बेच सकता है
0: जी.
2: और इसका खामियाजा तब भुगतना पड़ता है जब क्लेम रिजेक्ट होता है और कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ता है और या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, तो तब परेशानी आती है
0: जी.
2: तो इस कारण जो भी पॉलिसी लें अच्छे से समझ के लें. दूसरा मैं एक चीज़ और कहूँगा यहाँ पे, अगर आप किसी पॉलिसी को लेके सेटिस्फाइड नहीं है, आज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी या आपको ये कहा गया, आपको लगा कि आपने जो कहा था वो जो आपने पॉलिसी मांगी थी वो आपको नहीं दी गई है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको IRDA अलाउ करती है वेटिंग. आपका जो फ्री लुक पीरियड है उसमें आप पॉलिसी कैंसिल भी कर सकते हैं. 30 days तक का पीरियड है आपका
0: जी जी जी.
2: तो ऐसी भी रेमेडी अवेलेबल है.
0: अच्छा सर हमारे पास ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं दुर्गेश नागनपुरे. ये जानना चाहते हैं कि बीमा में प्रीमियम और नॉमिनी, ये क्या होते हैं? तो मुझे लगता है हमारे बहुत से लिसनर्स ऐसे भी होंगे जो इन दोनों टर्म से बहुत ज्यादा मुखातिब नहीं होंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि ये क्या है, तो वो उन्हें थोड़ा सा आप डिटेल
2: मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सवाल सुन के, क्योंकि अब
0: क्योंकि प्रीमियम प्रीमियम बहुत लोग सुनते हैं बट वो समझ नहीं आता।
2: देखिए मैं इनको बड़ा
0: अप्रिशिएट करना चाहते हैं,
2: अप्रिशिएट करूंगा कि बहुत अच्छा इन्होंने सवाल पूछा
0: जी,
2: और कोशिश करूंगा कितना सरल भाषा में इनको जवाब दे पाऊं। देखिए बीमा एक ऐसी चीज है जो आपको किस्त के बदले, आप समझ लीजिए कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है दो, एक बीमा धारक और कंपनी के बीच में
0: जी।
2: बीमा धारक एक फीस देता है, किस्त देता है, एक फीस की तरह होती है जिसको हम किस्त बोलते हैं, जिसके बदले में कंपनी उसको एक प्रोटेक्शन सुरक्षा प्रदान करती है, ये प्रॉमिस करती है कि आपके इस दुर्घटना या मृत्यु या एक्सीडेंट हो जाने पे हम आपको इतना पैसा देंगे। तो किस्त वो हुई, प्रीमियम वो हुआ जो आप कंपनी को पे करते हैं। और दूसरा आपने पूछा था कि प्रीमियम के अलावा
0: नॉमिनी क्या होते हैं?
2: नॉमिनी, देखिए नॉमिनी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इसकी इंपॉर्टेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर सबसे ज्यादा है
0: जी।
2: नॉमिनी एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसको पॉलिसी धारक, पॉलिसी होल्डर उसका नाम अपने फॉर्म में सबमिट करता है एज ए पर्सन जिसको उनके ना रहने के पॉलिसी के चलते अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो क्लेम उनको पेएबल होता है, वो नॉमिनी वो व्यक्ति है।
0: ओके
2: और इसमें यहाँ पे उन्होंने अच्छी बात पूछी है नॉमिनी के बारे में, तो मैं ये कहूँगा कि नॉमिनी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोर्ट में जो हमारे मैटर्स पहुँचते हैं उसमें 30-40% मैटर नॉमिनी को लेके होते हैं। ऐसा होता है कि हम लोग, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक पर्सन जो 25 ईयर के हैं उन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और अपनी मदर को नॉमिनी बना दिया
0: जी।
2: अब उनके 2 साल बाद शादी हो गई, 37 की ईयर में मान लीजिए एज में अनफॉर्चुनेटली उनकी किसी की वजह से डेथ हो गई, अब नॉमिनी है मदर, अब हमारे अगर
0: शादी हो चुकी
2: कानूनी वारिस के हिसाब से बोलेंगे तो मदर और बच्चे भी हैं
0: जी जी।
2: तो अब यहाँ पे मदर अगर क्लेम करने आएगी तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि वो उस नॉमिनी को क्लेम देंगे
0: जी,
2: लेकिन
0: अगर भी है, अगर बच्चे
2: क्योंकि वाइफ जो है वो अगर कोर्ट चली जाती हैं और वे कहती हैं कि इस पॉलिसी के ऊपर मेरा पहला राइट है
0: जी,
2: तो उस केस में हो सकता है कोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को ये कहते कि स्टे लगा दे उसके ऊपर कि ये पेमेंट आप नहीं करेंगे और ये केस अभी हम देखेंगे
0: जी,
2: और उस केस में फिर उस केस को कोर्ट डिसाइड करेगा। सो नॉमिनी इज नॉट नेसेसरली ए रिसीवर
0: जी,
2: तो और वो भी डिपेंड करेगा उस केस।
0: तो क्या नॉमिनी चेंज भी किया जा सकता
2: हाँ,
0: है?
2: मैं इसमें वही आ रहा हूँ, इसी वजह से ये एडवाइजेबल है कि आपके लाइफ सिचुएशन के हिसाब से, लाइफ के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आप नॉमिनी चेंज कीजिए।
0: अच्छा, नॉमिनी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं?
2: हाँ, मोर देन वन नॉमिनी भी आप रख सकते हैं।
0: ओके।
2: उसमें आपको परसेंटेज बतानी पड़ती है कि 30%, 40% आप रख सकते हैं हर मतलब एज पर इंश्योरेंस रूल्स इट इज वेरी मच अलाउड।
0: ओके,
2: तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, मतलब जैसे लाइफ सपोज इनकी मदर की डेथ हो गई तो इमीडिएटली उनको नॉमिनी चेंज कराना चाहिए, और मान लीजिए उनकी मदर की डेथ हो गई होती और नॉमिनी ब्लैंक होता
0: जी,
2: उसमें और कॉम्प्लिकेशन खड़े हो जाते हैं, उसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ता है, और ऐसे केसेस हमारे पास रोज कोर्ट में आते हैं
0: जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर ने बात बताई कि किसी भी पॉलिसी को लेते वक्त ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपको उसमें नॉमिनी जरूर देना है, और यदि किसी वजह से आप नॉमिनी लाइव आगे फ्यूचर में चेंज कराना चाहते हैं उनका नाम, तो आप वो भी कर सकते हैं, टाइमली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से सवाल हम तक पहुँच रहे हैं और कॉल्स भी हम तक आ रहे हैं, लेकिन यदि आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपको बता दें आज रेनबो हेल्पलाइन में हमारा विषय है इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर्स, और हमारे साथ एक्सपर्ट एडवोकेट श्री संजय कुमार गिरोत्रा जो इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको बातें बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। यदि आप हमारे साथ, हमारे एक्सपर्ट के साथ कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे स्टूडियो में डायरेक्ट हमें फ़ोन कर सकते हैं 011-2342-1080 और 2342-1084। ध्यान रखिएगा दिल्ली के बाहर से जो लोग हमें कॉल कर रहे हैं उन्हें 011 लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत. प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और हमारा आज का विषय है इंश्योरेंस लॉ रिलेटेड मैटर्स. और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट संजय कुमार गिरोत्रा. सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम तक पहुंचा है. लिखने वाले हैं उपेंद्र कुमार नोएडा से. कहते हैं, वकील साहब ने जैसा कि अभी बताया कि इंश्योरेंस लेने से पहले लोग एप्लीकेशन की शर्तें नहीं पढ़ते, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि शर्तें हमने पढ़ ली हैं लेकिन हम उनसे सहमत नहीं हैं. तो ऐसे केस में क्या होगा? क्या कंपनी हमारे हिसाब से अपनी शर्तें बदलेगी? क्योंकि एप्लीकेशन में शर्तें जनरली स्टैंडर्ड होती हैं जो सभी के लिए कॉमन होती हैं.
1: ठीक है, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा. ये लीगल बेसिकली आप देखिए, आमतौर पे जो कंडीशंस होती हैं, जो अगर हम नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ टर्म्स की बात करेंगे
0: जी,
1: वो कॉमन होती हैं, वो ऐसी कोई आपको हार्मफुल भी नहीं होती हैं. ठीक है, मेरा मतलब बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस से इस तरह से था कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे पॉलिसी के इंक्लोजर और डिस्क्लोजर की बात है, हमने जैसे मुझे ये पता रहना चाहिए कि अगर मैंने मेडिक्लेम पॉलिसी कराई है उसके अंदर मेरे कौन सी डिजीजेस कब से कवर शुरू होती हैं. मेडिक्लेम पॉलिसीज में फॉर एग्जांपल जनरली 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है
0: जी,
1: एक्सीडेंट को छोड़ के. अब कोई डिजीज उससे पहले हो जाएगी, अब उस कंडीशंस को तो आपको एग्री करना ही है ना
0: जी.
1: वो तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड कंडीशंस है, वो नहीं चेंज करेंगे. और कुछ ऐसी कंडीशंस जो आपके डिजीजेज से रिलेटेड हैं, बीमारियों से रिलेटेड हैं, वो आपको पता रहना चाहिए कौन सी आपकी बीमारियां कवर कब होंगी. और मान लीजिए कोई आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं उसका कवरेज कब से होगा, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज होती हैं. हर पॉलिसी में डिफरेंट प्रीमियम्स होते हैं. तो इसमें मैं ही सजेस्ट करूंगा कि आप एक ऑथराइज इंश्योरेंस एडवाइजर से सलाह लें, या आज के टाइम में इंटरनेट पे हमारे पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है. ये खुद को अपने आप को अवेयर करें एज ए कंज्यूमर. इवन इंश्योरेंस रेगुलेटरी IRDA जो है वो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है.
0: सर, यहाँ ना एक और इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा सवाल आया है और मुझे लगता है हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो है इस बात से बिल्कुल मतलब जानना चाहते होंगे. सुनील पांचगो फ्रॉम कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट आसाम से बोल रहे हैं, नागालैंड बॉर्डर से. इनका बहुत ही अच्छा सवाल है. ये अपने विलेज के बारे में बताना चाहते हैं जहाँ पर पीपल जो हैं, लोग जो हैं गरीब हैं, उनके प्रॉपर हाउसेज नहीं हैं. तो वो किस तरह से इंश्योरेंस अप्लाई कर सकते हैं? क्या जो गाँव के लोग हैं, विलेजर्स हैं, वो भी इंश्योरेंस अप्लाई कर सकते हैं, ख़ासतौर पर जो रूरल एरिया में रहते हैं, नेचर के बहुत पास हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं हैं, कार्स नहीं हैं, छोटे छोटे झोपड़ियाँ टाइप के लोग हैं, जिनको जिन लोगों को बेसिकली इंश्योरेंस के बारे में पता भी नहीं है. जैसा कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, मेरे पापा जो हैं 70 साल के हैं लेकिन आज तक उन्होंने इंश्योरेंस अप्लाई नहीं किया. तो उनके लिए मतलब कैसे वो करें और कितना ज़रूरी है, एक बार थोड़ा सा आप इसके बारे में भी ज़रूर बताइए.
1: बड़ा अच्छा लगा मुझे इतनी हमारे नॉर्थ ईस्ट से एक सवाल आया और ये बड़ा अच्छा
0: बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जी.
1: अभी इन्होंने, मैं इनका आगे का सवाल का हिस्सा पहले ले रहा हूँ. इन्होंने अभी बताया अपने फादर के बारे में जो 70 साल के हैं
0: जी.
1: इसमें मैं आपको एक चीज़ ये कहूँगा कि भारत सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ
0: स्कीम
1: है वो लॉन्च की है आज 2024 में, शायद ये लॉन्च हुई थी. और ये स्कीम जो है, एक तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग भी हैं वो कहीं पर भी हैं उनको कवर करती है, पूरी फैमिली का 5 लाख तक का मेडिकल का कवरेज करती है
0: जी.
1: इसके अलावा उसी स्कीम का बाद में एक्सटेंशन किया गया था वय वंदन करके, जिसमें सरकार ने पूरे भारत में जितने भी लोग 70 एंड अबव हैं, 70 साल से ऊपर, उनका 5 लाख का मेडिकल का इंश्योरेंस और उसमें जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब लोग कैशलेस प्रोवाइड कराते हैं. तो अपने फादर को ये सबसे पहले इंश्योर करा सकते हैं उसके अंदर. और अगर यहाँ पर लोगों की अपनी इकोनॉमिकली जो इनकम है कम है तो वो उसमें भी अपने आप को इंश्योर करा सकते हैं आयुष्मान भारत में. इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस की जहाँ तक बात करेंगे, LIC लाइफ इंश्योर, अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैं किसी कंपनी को कोई प्रमोट करने का, क्योंकि
0: LIC गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है,
1: एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका नाम ले सकता हूँ क्योंकि उसका लाइफ इंश्योरेंस का जो रीच है बिल्कुल इंटीरियर रूरल में भी है.
0: जी,
1: आपको वहाँ पे इंश्योरेंस के उनके ऑफिसेज मिल जाएंगे।
0: तो आई थिंक सुनील जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और सर यहाँ पर एक ब्रेक कर लेना बनता है, और चूंकि हमारा कुछ एक ज़रूरी चीज़ें रह गई हैं और हम वो लेते हैं, तब तक हमारे लिसनर्स अपने सवाल का कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से लिख कर भेजिए क्योंकि समय बहुत थोड़ा सा बचा है। और आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस लॉ रिलेटेड मैटर्स।
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक बार फिर से रेनबो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट संजय कुमार गिरोत्रा, जो इंश्योरेंस लॉ एक्सपर्ट हैं। यदि आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप स्टूडियो में डायरेक्ट हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 2342108080 और 2342108084। यदि दिल्ली के बाहर से आप हमें कॉल कर रहे हैं तो आप 011 लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सर, एक सवाल है, कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो ऐसे में आम आदमी के पास क्या अधिकार होते हैं, ये ज़रूर आप बताइए हमारे लिसनर्स को।
2: देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। इस ये प्रोग्राम अगर ये सवाल नहीं दिया जाएगा तो ये प्रोग्राम मेरे हिसाब से कंप्लीट नहीं होगा।
1: जी
2: देखिए, इंश्योरेंस क्लेम जब रिजेक्ट हो जाते हैं तो पहली चीज़ आपका ये अधिकार है ये पता करना कि आपका क्लेम रिजेक्ट क्यों हुआ है। और इंश्योरेंस कंपनी इस चीज़ के लिए बाउंड है कि वो आपको रिजेक्शन का रीज़न बताएं।
1: जी
2: ठीक है। इसके अलावा जब आपके पास रिजेक्शन का रीज़न आ जाता है, उसके बाद आप पहला स्टेप है, आप इंश्योरेंस के कंपनी के ग्रीवियंस सेल में अप्रोच कीजिए और वहाँ पे अपना, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं वहाँ पे अपना ग्रीवियंस डालिए, अपनी शिकायत डालिए। अगर आपको वहाँ से भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता, उसके बाद आप IRDA को अप्रोच कर सकते हैं। IRDA का पोर्टल है बीमा भरोसा करके, और उसको आप वहाँ पर जाइए। आपको वहाँ से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, इसके बाद आप, एक बॉडी है इंश्योरेंस ओबट्समैन, इंश्योरेंस ओबट्समैन जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंक्स को कंट्रोल करता है, उनकी कंप्लेंट्स टेकर करता है, इसी तरह से वहाँ पे बैंकिंग ओबट्समैन है, यहाँ पे इंश्योरेंस ओबट्समैन है। तो

0: इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, और उसमें आपको कोई वकील हायर नहीं करना होता, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन किया जाता है। वहाँ पे ये कोशिश की जाती है पहले दोनों पार्टीज़ को बिठा के मीडिएशन के थ्रू,
1: जी
0: मध्यस्थता के थ्रू आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व किया जाता है। अगर
1: जी
0: नहीं होता तो फिर वो उस अकॉर्डिंगली ऑर्डर निकालते हैं,
1: जी
0: जो भी जो दोनों के ऊपर बॉन्डिंग होता है। और अगर आपकी सेटिस्फेक्शन वहाँ से भी नहीं है, उसके बाद आप कोर्ट को अप्रोच सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट को, देन सिविल कोर्ट्स को। वो आपके पास सारी ऑप्शंस खुली हैं।
1: अच्छा, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, यदि वो क्लेम रिजेक्ट कर देती है तो क्या वो उसे रिटर्न में देने के लिए बाध्य होती है? उसे देना पड़ेगा कि किस वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया है?
0: बिल्कुल मैडम, ये रश्मि जी, ये बिल्कुल ज़रूरी है और ये उनके ऊपर लीगल बाइंडिंग है।
1: जी
0: अगर कोई कंपनी इंश्योरेंस बिना आपका कारण बताए आपका क्लेम रिजेक्ट करती है, तो आप उसकी कंप्लेंट IRDA में कर सकते हैं,
1: जी
0: और उनको कारण देना ही है, दे आर बाउंड टू गिव।
1: ओके एक सवाल आया है, किशनगंज दिल्ली से पैंथर तोमर लिख रहे हैं, अगर हेल्थ इंश्योरेंस किसी कारणवश रद्द कर दिया जाता है तो पॉलिसी की टर्म और कंडीशन हिसाब से जो पॉलिसी की टर्म और कंडीशन के हिसाब से वाजिब नहीं है, तो इसकी शिकायत कहाँ पर की जा सकती है?
0: देखिए, इसकी शिकायत आप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर रद्द कर दी जाती है तो आपके पास सारे एवेन्यूज़ हैं, जैसे कि पहला एवेन्यू इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA है। वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आप और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। वहाँ भी आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप कंज्यूमर कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। आपकी किसी भी कोई भी प्रॉब्लम इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी है, वो एक इंश्योरेंस वॉच डॉग है, इंश्योरेंस IRDA,
1: जी
0: वो उसको देखता है। बाकी आपके पास जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो खुली ही हैं सारी।
1: राजेंद्र चौहान रोहिणी से लिख रहे हैं कि यदि कोई नॉमिनेशन नहीं होता तो क्लाइंट को क्या करना चाहिए? विदाउट नॉमिनेशंस क्या क्लेम पेड नहीं होते? और साथ साथ इन केस ओपन टाइटल, आई थिंक इसका जवाब आप ऑलरेडी दे चुके
0: हाँ,
1: हैं, तो एक बार आप एक लाइन में फिर
0: कोई
1: से
0: नहीं, मैं
1: हमारे
0: इलेबरेट
1: लिसनर्स
0: कर
1: को
0: देता
1: बता
0: हूँ मैडम।
1: जी
0: देखिए, ऐसा है कि जहाँ पर ओपन टाइटल होता है तो उस केस में, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि लीगल फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती हैं, उस केस में फिर जो फॉर्मेलिटी ये है कि कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट या सर्वाइव मेंबर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ता है, और तभी उसके बाद क्लेम मिल पाता है। लेकिन इसके लिए मैं दोबारा कहूँगा कि इंश्योरेंस लेते समय नॉमिनी ज़रूर कीजिए, और नॉमिनी ज़रूर अपना नॉमिनेट कीजिए, और उसके बाद उस नॉमिनी को अपडेट करते रहिए अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से
1: जी
0: कंपनी में, ताकि आपको कोई भी कानूनी परेशानी ना आए। जैसे कि मैंने कहा, हमारे पास कोर्ट में आधे केसेस नॉमिनेशन और लीगल एयर से रिलेटेड आते
1: सर,
0: हैं।
1: एक और सवाल है, जैसे आपने अभी अभी बोला कि लीगल हायर और नॉमिनी, इन दोनों में क्या फर्क है?
0: बताता हूँ, देखिए, नॉमिनी वो व्यक्ति है जो इंश्योरेंस इंश्योर्ड पर्सन जिसका नाम एज रिसीवर ऑफ पॉलिसी डालता
1: जी
0: है कि मेरे मरने के बाद इनको पैसा दिया जाए, कंपनी के रिकॉर्ड्स में वो नाम है।
1: जी
0: लीगल हायर वो इंसान है जो एक व्यक्ति का कानूनी वारिस है, कानून के
1: ओके
0: हिसाब से, और जो भी जिस जिसको बिलोंग करता है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, उस लॉज के हिसाब से जो कानूनी वारिस है वो है। फॉर
1: जी
0: एग्जाम्पल, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि किसी ने मदर को नॉमिनेट किया, और उधर उसके बाद फिर उनकी वाइफ क्लेम करने आ गई, तो यहाँ पे विरोधाभास आ जाता है, डिस्प्यूट आ जाता है।
1: सर, एक सवाल और मेरे मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है और क्लेम अटक जाता है, उस केस में परिवार वाले क्या करें?
0: देखिए, अगर क्लेम अटक जाता है तो पहले, जैसे मैंने आपको कहा था, अपने इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस सेल में पहले अप्रोच किया कि हमारा क्लेम अटका क्यों है। अटका से मतलब आपका मतलब कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया है,
1: जी जी जी
0: ठीक है? तो उसमें कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट का इशू हो, ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है,
1: जी
0: तो आप उनको अप्रोच कीजिए, हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट्स सब जो रह रहे हों उसका सबमिट करके आपका रिजोल्यूशन निकल जाए।
1: जी
0: अदरवाइज फिर अगर वो ये कहते हैं कि आपका क्लेम हो ही नहीं सकता, देन उसके बाद आपको उनको क्लियर कहना है कि आप हमारे को राइटिंग में दीजिए।
1: ओके
0: उसके बाद जब वो आपके पास राइटिंग में आ जाता है, आपकी तसल्ली नहीं है, तो जैसे कि मैंने आपका पूरा मैकेनिज्म बताया, आप पहले IRDA, उसके बाद इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट्स आप जा सकते हैं।
1: सर, एक टर्म हम आजकल सुन रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस, उसमें और जो नॉर्मल पॉलिसी होती है उन दोनों में क्या फर्क है?
0: देखिए, टर्म इंश्योरेंस जो एक ऐसी चीज़ है जो जिसके अंदर हमारा लाइफ का कवरेज होता है। जनरली एक्चुअली डिफरेंट टाइप की टर्म इंश्योरेंस आजकल आ गई हैं। टर्म इंश्योरेंस का मतलब यह है कि अगर एक इंसान ने मान लीजिए पॉलिसी कराई 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी कराई, टर्न

0: इंश्योरेंस जनरली कम प्रीमियम पे हो जाती है
1: okay.
0: और बीच का मेन पर्पज होता है प्रोटेक्शन
1: जी.
0: एक पर्सन जो 25 साल के हैं वो अगर 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस लेते हैं उनका हार्डली साल का 10-12 हज़ार प्रीमियम जाएगा
1: okay.
0: ठीक है
1: mm-hmm.
0: और वो अगर नॉर्मल प्योर टर्म इंश्योरेंस होगी तो उनकी मान लीजिए 40 साल की उन्होंने पॉलिसी कराई उन 40 साल वो 12 हज़ार ईयरली देते रहेंगे
1: जी.
0: और उसके बाद इन 40 साल में अगर उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई कोई डेथ हो गई
1: mm-hmm.
0: तो वो 1 करोड़ रुपया उनकी नॉमिनी को मिल जाएगा
1: okay.
0: लेकिन अगर 40 साल के बाद कुछ नहीं हुआ तो वो जो पैसा गया है उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा
1: जी.
0: अब कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये तो बेकार है इसका क्या फायदा. मोटर इंश्योरेंस भी तो आप कराते हैं
1: जी, जी.
0: साल का 25-25 हज़ार प्रीमियम देते हैं वो भी कभी कभी कुछ नहीं होता तो अपनी लाइफ को क्यों इग्नोर करते हैं. टर्म इंश्योरेंस एक गुड प्रोडक्ट. ट्रेडिशनल नॉर्मल इंश्योरेंस जो होता है उसके अंदर आमतौर पे बोनसेस भी इंक्लूड होते हैं प्रोटेक्शन भी होता है लेकिन उसका कंपैरेटिवली प्रीमियम ज्यादा रहता है. ये आपको अपने नीड के हिसाब से अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का इंश्योरेंस करवाना
1: है. जी हमारे पास हमारे बहुत सारे लिसनर्स जुड़े हैं उन्हें एक प्रोग्राम भी पसंद आ रहा है. उनमें शरद है राजेंद्र चौहान है और सर एक सवाल और आया है ये पूछना चाहते हैं नो क्लेम बोनस क्या होता है यदि कोई किसी पॉलिसी हम क्लेम नहीं करते हैं तो उस केस में क्या बोनस
0: देखिए नो क्लेम बोनस एक बेसिकली जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज का टर्म है लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसीज में नहीं है जो था मेडिक्लेम पॉलिसी है. फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं उनका मान लीजिए 1 साल में कोई क्लेम नहीं आया
1: जी.
0: तो उसके अंदर नो क्लेम बोनस आमतौर पे आपका सम इंश्योर्ड इंक्रीज हो जाता है यानी कि आपने पूरे साल कोई क्लेम नहीं लिया वो आपके नो क्लेम ना लेने का एक रिवॉर्ड है
1: जी.
0: ऐसे ही किसी ने मोटर इंश्योरेंस कराया और उनका क्लेम नहीं हुआ पूरे साल तो अगले साल उनको प्रीमियम के अंदर कुछ सर्टेन डिस्काउंट मिल जाएगा
1: ओके
0: वो नो क्लेम बोनस. नो क्लेम बोनस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है
1: जी.
0: इट इज अ रिवॉर्ड
1: ओके okay, तो यदि आप भी रिवॉर्ड लेना चाहते हैं तो ना तो आप बीमार पड़िए और ना ही आपको जब आप घर से बाहर अपने किसी व्हीकल के द्वारा निकलते हैं कार बाइक स्कूटर या कैसे भी तो आपको बहुत ही सेफली ड्राइव करनी है और तभी आप अपना प्रीमियम बचा पाएंगे और नेक्स्ट पॉलिसी में आपको रिवॉर्ड मिल पाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट आज हमारा विषय रहा है. इंश्योरेंस लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ थे श्री संजय कुमार गिरोत्रा सर. चूँकि वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है और चलते चलते मैं ये चाहूँगी कि हमारे लिसनर्स को एक पूरे इस प्रोग्राम का आप एक वाइंड अप की मतलब क्या पॉलिसी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल रहे होंगे हमारे लिसनर्स के मन में भी हमारे मन में भी थे जो समय की कमी की वजह से हम नहीं ले पा रहे हैं तो लेकिन चलते चलते आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे कहना चाहेंगे.
0: एक तो मैं अच्छा कहना चाहूँगा कि आप ये जो इंटरेक्शन था बहुत अच्छा लगा बहुत लोगों ने बहुत अच्छे सवाल पूछे
1: जी.
0: देखिए इंश्योरेंस जैसे कि मैंने आपको पहले कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए. मैं तो ये मानता हूँ कि हमारा अगर खाना खाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस
1: जी.
0: स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस और हमारा लाइफ इंश्योरेंस
1: जी.
0: ठीक है और ये इंटेंजिबल असेट है जिसको कभी भी किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए. ठीक है तो इंश्योरेंस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया इंश्योरेंस कराते समय अपने सभी टर्म्स एंड कंडीशंस का अच्छे से पढ़िए ध्यान रखिए कि आप क्या करवा रहे हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग से अपनी अपने जैसे कि आपने बताया कि नीड के अकॉर्डिंगली और इसके अलावा जो आप चाहते हैं कि जिस तरह की पॉलिसी के अंदर हो वो आप टर्म्स एंड कंडीशन जिस तरह चाहते हैं जो डिजीजेज इंक्लूड हो या डिस्क्लोज हो वो उनको डिस्क्लोजर बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आप उन चीज को
1: बेसिकली अपने एजेंट को सारी बातें आप क्लियरली बताइए बीमारियों के बारे में भी बताइए और जो जो आपकी जरूरत है जिन पॉइंट्स को आप अपनी पॉलिसी में चाहते हैं वो उन्हें आप खुलकर बताएं.
0: और इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से इंश्योरेंस करें. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अफोर्डेबिलिटी से बहुत ऊपर जाकर इंश्योरेंस करा सकते हैं करा लेते हैं जो बाद में कंटिन्यू नहीं हो पाता और उसका नुकसान फैमिली को भुगतना पड़ता
1: है.
0: सो इसके अलावा इसका मैं थोड़ा सा एक कहूँगा मैं एज एन एडवोकेट इंश्योरेंस लॉ एक्सपर्ट हूँ जिसमें मैंने एक किताब भी लिखी है इंश्योरेंस इसी में इंश्योरेंस लॉ के ऊपर. तो इस किताब में इसी बारे में बहुत सारी यूजफुल बातें दी गई हैं
1: जी. तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कोई और भी क्वेरी है तो आप आगे भी हमारे प्रोग्राम्स में जुड़ सकते हैं और इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर बुक्स में बहुत सी जानकारियां होती हैं वो भी ले सकते हैं और सबसे ज़रूरी है कि आप अपने एजेंट से मिलें और यदि कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप उनसे खुलकर बात करें. सर आज इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े आपने इतनी इंपॉर्टेंट बातें हमारे लिसनर्स को बताई आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू वेरी मच. मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा ये रहा और ये अपॉर्चुनिटी और लिसनर से लाइव मैं इंटरेक्ट कर पाया. थैंक यू वेरी मच।

थैंक यू सो मच. और हमारे सभी लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े इस समय हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आप आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहिए और अपने फीडबैक हमारे बिंदास बोल के लिए देते रहिए. ओके जी, नमस्कार.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है आपके फेवरेट प्रोग्राम आशियाना की, और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी शालिनी। तो दोस्तों, आशियाना में आज हम बात करने वाले हैं परिवार की उस आदत की, कह सकते हैं कि जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास ही नहीं होता, लेकिन हाँ, हर मॉल, हर ऑनलाइन ऐप और हर फ्लैट 70% ऑफ वाले पोस्टर के पास ज़रूर होता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं शॉपिंग मेनिया की। घर में मम्मी का अलग कार्ट, पापा का अलग बजट, बच्चों की अलग अलग डिमांड और दादी की वो लाइन कि हमारे ज़माने में तो दो जोड़ी कपड़ों में पूरा साल निकल जाता था। आई एम श्योर आपके घर में भी कुछ ऐसे ही नज़ारे, कुछ ऐसी ही बातें होती होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं शॉपिंग और फैमिली ड्रामे का ये मज़ेदार सफ़र इस शानदार गाने के साथ।

दोस्तों पता है क्या होता है कि घर में कई बार किसी एक चीज को लेकर बहुत डिस्कशन होता है, बहुत सारी बातें होती हैं और उसको खरीदना है या नहीं खरीदना है इसको लेकर एक लंबी चर्चा चल जाती है। और पता है, और इसमें सबसे जो अच्छी बात ये होती है कि जिसको स्मार्ट शॉपिंग की समझ होती है उसी की दाल गलती है और उसी का जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। और अगर बात करें स्मार्ट शॉपर की, तो आपके घर में कौन करता है स्मार्ट शॉपिंग? आपकी मम्मी या फिर आपकी बहन? क्योंकि उन्हें ना पता होता है कि कौन सी सेल असली है और कौन सी सिर्फ दिल बहलाने वाली है। किचन के डब्बों से लेकर नए पर्दों तक, और ये कुशन कवर बहुत ज़रूरी थे। ऐसा लॉजिक भी ना उनका तैयार रहता है। लेकिन पता है, सच कहूँ ना, घर को खूबसूरत बनाने में सबसे बड़ा योगदान भी इन्हीं का होता है। तो आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, और आशियाना में हम बात कर रहे हैं घर की शॉपिंग मेनिया की।

फिल्म हाय पापा से सुन रहे थे आप ये गाना। और दोस्तों, अगर बात करें घर में पापा के रोल की, तो पापा जब मॉल में घुसते हैं ना, तो पहले ही कह देते हैं कि भाई कुछ ख़रीदना नहीं है। उनका ये इंस्ट्रक्शन पहले ही आ जाता है। लेकिन होता क्या है ना, 2 घंटे बाद जब वो नज़र आते हैं एक महंगी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पसंद होती हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और फिर शुरू हो जाता है उनका फेवरेट डायलॉग कि भाई ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। और पता है, पापा की शॉपिंग कम, रिसर्च ज़्यादा होती है। रिसर्च क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले वो उसका ऑनलाइन प्राइस चेक करते हैं, अलग अलग पोर्टल पर भी उसका प्राइस चेक किया जाता है, और पता है वो फीचर्स का कंपैरिजन भी करते हैं। और ये सब काम ना पापा से आपको भी सीखना चाहिए, क्योंकि इसे ही कहते हैं स्मार्ट शॉपिंग।

बिल्कुल दोस्तों, कुछ घरों में ऐसे लोग भी होते हैं जो शॉपिंग को जितना हो सके अवॉइड करते हैं, आधे पौने में काम चलाते हैं, कभी रफू करवाते हैं, कभी रिपेयर करवाते हैं और पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े, जिससे उनके घर का जो बजट है वो बना रहे। तो फिलहाल आकाशवाणी रेनबो पर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल गाना।

0: AIR @90।
1: बिल्कुल दोस्तों, आकाशवाणी के जो 90 साल हैं वो बेमिसाल हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारा रिश्ता है वो इतना मजबूत है कि आप हमसे और हम आपसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और कहीं ना कहीं बहुत सारे गाने ऐसे चुन चुन के आपके लिए लाते हैं जिससे आपका हो भरपूर एंटरटेनमेंट। कुछ ऐसा ही एक गाना लेकर आई हूँ

बिल्कुल दोस्तों, माँ के साथ जो हमारा रिश्ता होता है वो बहुत ख़ास होता है। कई बार हमारी सारी फरमाइशें माँ सुनती हैं और कहीं ना कहीं मना करने के बाद भी वो कोशिश करती हैं कि वो हमारी सारी फरमाइशों को पूरा करें। तो फिलहाल प्रोग्राम आशियाना में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद ढेर सारी बातें जारी रहेंगी फैमिली के शॉपिंग मेनिया के बारे में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुरों की शाम होगी यादगार, आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम आराधना।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदगल।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी। और आज प्रोग्राम आशियाना में हम बात कर रहे हैं परिवार के शॉपिंग मेनिया की। और अगर बात करें हम बच्चों की, तो उनकी शॉपिंग का ना कोई मौसम नहीं होता। आज खिलौना चाहिए, कल नया गेम, परसों सुपर हीरो वाला बैग, और पता है उनका सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? मॉल के बीचों बीच मासूम सा चेहरा बनाकर कहना, सबके पास है, मेरे पास ही नहीं है। फिर बेचारे पेरेंट्स का बजट बस भावनाओं में बह जाता है। आपके घर में भी छोटे नटखट बच्चे होंगे ना, और कुछ ऐसा ही अंदाज आप भी अपने घर में ज़रूर देखते होंगे। तो बच्चों के लिए ये प्यारा सा गाना।
1: देखो देखो क्या वो पेड़ है

वैसे दोस्तों, शॉपिंग ना कुछ लोगों के लिए मस्ती भी है, क्योंकि कुछ दो सहेलियां एक साथ मिल जाएं और जाएं शॉपिंग पर, तो ये उनके लिए फ़न का एक नया ही अंदाज़ है। और अगर आज के दौर में बात करें तो ऑनलाइन सेल, ब्रांडेड चीज़ें, बच्चों के गैजेट, मम्मी की होम डेकोर लिस्ट और पापा के बस देखने आए हैं वाले शॉपिंग ट्रिप हर घर की ना कहानी बन चुके हैं। परिवार में शॉपिंग अब सिर्फ ज़रूरत नहीं है बल्कि एक इमोशन है, और कभी कभी ये कंपटीशन की तरह भी नज़र आता है। कैसे ये कंपटीशन बन गया है, इसके बारे में करेंगे बात। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
1: आज की रात मजा,
0: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

और कमाल की बात पता क्या है, और भी लोग खड़े थे वहां पे, पर उसने मुझसे आके पूछा, एक्सक्यूज मी, इज इट 12/25 मॉडल टाउन इन अ मार्केट? सबकी शक्ल देखने वाली थी, जल ककड़ू कहीं के।

बिल्कुल दोस्तों, फर्स्ट साइट वाला लव हो जाता है किसी भी चीज़ से जब मार्केट में उसे देखते हैं और लगता है कि ये चीज़ बहुत नायाब है, हाथों की एक ख़ास कलाकारी नज़र आती है, तो मन करता है कि इसको तुरंत ही अपने पास ले लिया जाए, ख़रीद लिया जाए। ऐसा ही कुछ होता है जब पहले लोग बाज़ार घूमने जाते थे, अभी भी जाते हैं, हालांकि संख्या कम नज़र आती है क्योंकि आजकल घूमता है अंगूठा और शॉपिंग बस यूं ही हो जाती है। रात के 2 बजे भी अगर कोई जाग रहा है तो इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो उसे नींद नहीं आ रही या फिर कोई बड़ी सेल चल रही है। ऑनलाइन शॉपिंग ने बस एक नई आदत दे दी है। ऐसे में कई लोगों को ना ऐड टू कार्ट करके ही सुकून मिलता है। और पता है, हर दिन उनके घर में कोई ना कोई पार्सल आ रहा होता है। क्या आपके आसपास भी ऐसे ही लोग हैं जिनको आप ऐसा देखते हैं और मेरी बात सुन के आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ भाई, ऐसे लोग तो हमारे आसपास भी हैं। तो आपके लिए बढ़िया सा गाना आपके अपने प्रोग्राम आशियाना में।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना और हम बात कर रहे हैं शॉपिंग मेनिया की। दोस्तों बात करें बुज़ुर्गों की, तो घर में ना जब बुज़ुर्ग देखते हैं कि हर दिन कोई ना कोई नया पार्सल आ रहा है, वो बच्चों की शॉपिंग को देखते हैं तो बस मुस्कुरा देते हैं। कहते हैं कि हमारे ज़माने में चीज़ें कम थी लेकिन खुशी ज़्यादा थी, और उनकी बातें याद दिलाती हैं कि ज़रूरत और चाहत में थोड़ा सा फ़र्क होता है। पता है दोस्तों, पहले तो खास मौक़ों पर ही शॉपिंग होती थी, लेकिन आजकल सोशल मीडिया की दौड़ में हर दिन कुछ नया चाहिए। आउटफिट रिपीट नहीं करना है तो नया तो लेना पड़ेगा, लेकिन इसके चक्कर में कभी कभी मनी मैनेजमेंट भी गड़बड़ा सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। तो आप सोचिए अपने घर के बजट के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में। मैं आती हूँ थोड़ी देर के बाद आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बिल्कुल दोस्तों, आपका हम और हमारा जो रिश्ता है ना, वो इतना ख़ास है कि हम बात कर रहे हैं परिवार की बॉन्ड की, वो बॉन्ड जो कभी कभी छोटी मोटी तकरार के साथ भी बना रहता है। बात करें घर में भाई बहन की, तो शॉपिंग की जब बात आती है ना, तो उन दोनों के बीच में झगड़ा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके लिए ले लिया, मेरे लिए क्यों नहीं लिया, ये लाइन ना हर घर में सुनने को मिल जाती है। लेकिन पता है मज़ेदार बात क्या है? उनका बॉन्ड इतना ख़ास होता है कि वो दोनों ही एक दूसरे की चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं, और उनका जो प्यार है वो बरकरार रहता है, तकरार में भी प्यार।

खाना। और वैसे दोस्तों, शॉपिंग में ना सीमा तय करनी ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो घर का बजट बना रहेगा। बात करें अगर शॉपिंग की, तो शॉपिंग बढ़िया है, खुशियां देती है, रिश्तों में रंग भरती है, लेकिन सबसे ज़रूरी है बैलेंस, क्योंकि घर सिर्फ सामान से नहीं बल्कि साथ से खूबसूरत बनता है। और जब पूरा परिवार साथ हो तो विंडो शॉपिंग भी ना किसी 5-स्टार खुशी से कम नहीं लगती। इसी के साथ मैं आपकी दोस्त आरजे शालिनी आपको कहूंगी बाय बाय, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ। आगे आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। फिलहाल आपके लिए ये खूबसूरत गीत।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं अनुराधा। श्रोताओं आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है इमरजेंसी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट, यानी वो चिकित्सा सेवा जो अचानक हुई दुर्घटनाओं, गंभीर चोटों, फ्रैक्चर आदि के समय दी जाती है। इस विषय से जुड़ा आपका भी है कोई सवाल तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 0112342108 और 0112342108। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। आपके सवालों के समाधान के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आज दो विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन UCMS एंड GTB हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। साथ ही डॉक्टर तेज प्रकाश सिन्हा जी, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार
1: सर। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि मेडिकल इमरजेंसीज क्या हैं?
2: देखिए, किसी भी स्थिति कोई इंसान अगर सोचता है कि अगर मेडिकल सुविधा ना ली जाए
1: जी,
2: तो उसके या तो जान को खतरा हो या उसके लिम या किसी अंग का खतरा हो या किसी ऑर्गन का खतरा हो, और अमूमन ये स्थितियाँ ऐसी होती है कि अगर टाइमली मेडिकल केयर ना मिले तो उसको बहुत परेशानी हो सकती है। जैसे आप समझ लीजिए हार्ट अटैक की बीमारी हो गई, कोई छत से गिर गया, या एक्सीडेंट चोट वाली बीमारी या चोट हो गया, किसी को किसी ने सांप ने काट लिया, किसी को सांस की बीमारी हो गई
1: जी,
2: किसी को लकवा मार गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपात स्थिति है और इसमें जल्द से जल्द मेडिकल सुविधा लेना अत्यंत आवश्यक है
1: जी। सुविधाएं लेना आवश्यक है ये आपसे ज़रूर जानेंगे, और बहुत सारी चर्चा अभी तो शुरुआत है और हमारे श्रोता उत्सुक होंगे जानने के लिए कि आज क्या क्या हमारे लिए बहुत कुछ आप दोनों विशेषज्ञों से जानने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।
4: ए भाई दर्द।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का तार है।

0: श्रोताओं, आज रेडियो डॉक्टर में हम चर्चा कर रहे हैं इमरजेंसी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट पर। यदि आपका भी कोई सवाल है तो हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080 और 01123421082। हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: मैम नमस्कार जी।
0: नमस्कार सर, अपना नाम बताएं
1: जी। एक्सपर्ट को भी दोनों को जी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: जी,
1: मैं यामिन भाई रेडियो वाला तिरोड़ी लोनी किला
0: जी। सर,
1: पर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, लोग तड़पते रहते हैं, पड़े रहते हैं, और लोग सहायता करने में थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं कि जिससे कि कानूनी कार्रवाई होती है, तो डरते हैं कि उनका नाम लिखा जाएगा, उनको कार्रवाई में साथ रखा जाएगा। ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक है, मेरा थोड़ा समझाएं।
0: प्राथमिक चिकित्सा आप जानना चाह रहे हैं कि प्राथमिक चिकित्सा क्या दी जाए, और कोई डर की बात तो नहीं है जो लोग ले जाते हैं हॉस्पिटल, ये जानना चाहते हैं आप ना। जी
2: जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि लोग क्यों असमर्थ अपने आप को फील करते हैं और क्यों डरते हैं कि लीगल कार्रवाई या कुछ पुलिस केस या कुछ इससे घबराते हैं। तो अगर मैं जानकारी आपको दूं कि सरकार ने इस पे बहुत सारे कदम उठाए हैं और एक इस तरीके का एक नियम, लॉ या कहें कि एक गाइडलाइंस सब तरफ से आई है, जिसको हम लोग कहते हैं गुड समेरिटन लॉ। इसमें ये इंश्योर किया गया है कि जो मददगार हो सड़क दुर्घटनाओं में, स्पेशली जो मदद करे, उस पर किसी तरीके का कोई भी कानूनी कार्रवाई या उसको तकलीफ ना दिया जाए। और इसमें सरकार ने इनाम का भी एक सिस्टम रखा हुआ है, और इसको हर अस्पताल अब अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसे लोगों को ना उनसे हम नाम पूछते हैं, ना उनका हम डिटेल लेते हैं। तो ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कदम है ताकि जो चोटग्रस्त मरीज हैं, ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं, उनको मदद समय से मिल पाए। तो ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
0: तो इनको आपने जानकारी दे दी, आगे बढ़ते हैं। और अभी हम चर्चा कर रहे थे कि मेडिकल इमरजेंसीज क्या हैं, तो डॉक्टर अरुण सर आपके पास आना चाहेंगे कि सिर्फ इलाज मेडिसिन के तौर पर ही हो सकता है या कैसे इसकी रोकथाम की जाए, बचाव कैसे किया जाए।
3: जी, मेडिकल इमरजेंसी के दो पहलू हैं। हम एक वाक्य बहुत समय से सुनते आए हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी किसी भी चीज़ से बचाव अगर हम करते हैं तो उससे होने वाली सारी तकलीफों से बचा जा सकता है। अभी जो मेडिकल इमरजेंसी की बात हो रही है उसमें जैसे मान लीजिए अभी दुर्घटना की, अभी हमारे कॉलर भाई साहब ने पूछा कि दुर्घटना में हम क्या करेंगे। तो दुर्घटना में सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि दुर्घटना से हम बचें कैसे। अगर हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, सड़क के किनारे होने वाली दुर्घटना की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सावधानी कम होने से दुर्घटना घटती है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई मोटरसाइकिल चालक और हेलमेट नहीं लगा के चल रहे हैं, या कोई रेड लाइट के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, या एक पेडेस्ट्रियन जो पैदल यात्री हैं वो अपना फुटपाथ छोड़ के

0: पे आ जाते हैं, तो ये सारी परिस्थितियां होती हैं जो दुर्घटना की संभावना को बढ़ाती हैं। तो पहले ये जागरूकता हो और हम इन नियमों का पालन करें कि हम दोपहिया वाहन पे हेलमेट चला के ही बैठेंगे, हम गाड़ी चलाएंगे तो हम सीट बेल्ट बांध के रखेंगे, और अगर हम सवारी यात्री भी हैं तो भी हम सीट बेल्ट लगाएंगे, और अगर हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो हम सिग्नल का, उस पर रेड लाइट और ग्रीन लाइट के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। ये एक उदाहरण हुआ। दूसरी तरफ एक दुर्भाग्य की बात होती है कि लोग अल्कोहल पीकर फिर गाड़ी चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो दुर्घटना का आमंत्रण है। तो कहने का मतलब कि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सकता है, पूरी सावधानियां अगर हम बरतें तो दुर्घटना होने से रोक सकते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा मेडिकल इमरजेंसी की बीमारियों में। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया, दिल का दौरा पड़ गया, या किसी व्यक्ति को अचानक स्ट्रोक हो गया और उसकी बॉडी पैरालिसिस हो गई, ये सारी परिस्थितियाँ होती हैं पहले से उपस्थित किसी बीमारी की वजह से। यानी किसी को उच्च रक्तचाप की अगर बीमारी है तो उसको स्ट्रोक हो सकता है, किसी को अगर हार्ट की बीमारी पहले से है तो हार्ट अटैक हो सकते हैं। ऐसे में उस मरीज के साथ साथ उनकी देखभाल करने वालों का ये दायित्व बनता है कि वो ऐसी स्थिति में ना आए, इसके लिए डॉक्टर ने जो सलाह दी है उनकी दवाई को लेके कि आप निश्चित समय पे नियम से जो दवाइयाँ बताई गई है वो खाएं, जो आपकी जीवन शैली में परिवर्तन कहा गया आपके खान पान के बारे में, आपके रहन सहन के बारे में, उनका अगर आप नियम से पालन करेंगे तो आप उस दुर्घटना से होने से बहुत हद तक बच सकते हैं। तो मेरा तो सभी श्रोताओं से कहना ये रहेगा कि आप दुर्घटना होने मत दीजिए, दुर्घटना से बचिए। जहाँ भी कोई दुर्घटना की संभावना दिखती है, दुर्घटना होने की जो संभावित कारण है उनको दूर कीजिए।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने। चाहे हमारी शारीरिक स्थिति हो या फिर हम कहीं दुर्घटना बाहर शिकार होते हैं, दोनों ही डिपेंड करता है कि हम कितने सतर्क हैं। डॉक्टर साहब ने ये आपको आगाह कर दिया है, फिर भी कोई भी स्थिति आपके साथ आती है तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगी कि ट्रॉमा की चर्चा क्यों ज्यादा होती है इतनी?
2: देखिए, ट्रॉमा भी एक इमरजेंसी है। हम अमूमन कहते हैं कि किसी चीज से चोट लगी, कोई गिर गया, रोड ट्रैफिक इंजरी हो गई, आपस में झगड़ा हो गया, ये सारे कारण हैं ट्रॉमा के। चूंकि ये रोड ट्रैफिक इंजरी सबसे कॉमन है ट्रॉमा के कारकों में, और ये 18 से 45 साल का एज ग्रुप जो है उसको ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, और लगभग हर साल हम करीब 1,70,000 से ऊपर लोगों को खोते हैं जो यंग हैं, जो हमारे उनके घर के और साथ में देश के कहिए कि ब्रेड अर्नर हैं, कंट्री के लिए काम करने वाले लोग हैं। इसीलिए इसकी चर्चा ज़्यादा है क्योंकि ये हमारी यंग पॉपुलेशन को इन्वॉल्व कर रहा है, और ट्रॉमा एक ऐसी स्थिति है जो सर ने भी बड़ा अच्छा बताया, इसको हम रोक सकते हैं। ये पहले से कोई बीमारी नहीं है, हम इसको बचाव कर सकते हैं। इसलिए हम ये टोटल जो डेथ है 2.25 लाख के आसपास, इसको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं अगर बचाव पे जाए तो।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और हमारे पास जिज्ञासाएं भी बहुत सारी आ रही हैं आज के

0: स्थिति या चोट वाली स्थिति हो तो करना क्या चाहिए। तो जैसे अगर मैं एक रोड ट्रैफिक इंजरी की एग्जांपल को लूँ, तो सबसे पहले देखना है जो बचाव करने जा रहा हो वो देखे कि क्या मैं सेफ हूँ इस जगह पहुँचने के लिए
1: जी।
0: तो अपनी सेफ्टी पहले देखे, ऐसा ना हो कि एक की जगह दो हो जाए। दूसरा कि अब वो जो घायल व्यक्ति है उसको एक सेफ जगह पर ले जाएँ। सेफ जगह पे ले जाने के बाद अब दो काम करनी है हमें, एक तो एम्बुलेंस या मदद के लिए कॉल, और दूसरा कि किसी को फ्रैक्चर हो गया है या ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग से बहुत ज़्यादा मौतें होती है, तो ब्लीडिंग हो रही है तो क्या वो दबाव दाग दे के हम रोकें उसको
1: जी।
0: और कोई फ्रैक्चर है तो क्या हम थोड़ा स्प्लिंट कर सकते हैं। जैसे ही मदद आए तो बाकी एम्बुलेंस और बाकी लोग जब आ जाएंगे तो उसकी मदद होगी। तो ये थोड़ा देखना चाहिए। रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर और बहुत सारे रिसोर्सेज अभी अवेलेबल हैं, जिसको आप देख के कॉमन पब्लिक एक ट्रॉमा में क्या कर सकती है, इसके लिए सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन में अवेलेबल हैं, आप जरूर उसका उसको उपयोग करें।
1: जी डॉक्टर साहब, कैसे जाना चाहे कि इमरजेंसी की स्थिति है, क्योंकि वो नाजुक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि घर में ही क्योरेबल हो, कैसे जाना चाहे कि इमरजेंसी वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है।
0: सो एक तो ये है कि कोई व्यक्ति जो पहले से ठीक था, अपना काम सारा कर रहा था या बातचीत कर रहा था, उसमें कोई उसको तकलीफ नहीं थी, अब वो कह रहा है कि मुझे तकलीफ हो रही है और ये तकलीफ प्रोलॉन्ग हो रही, लंबी चल रही है। लंबी कहने का मतलब कि आपको लग रहा है कि 10 मिनट 15 मिनट उससे भी ऊपर जा रहा हो, या लगे कि जैसे बेहोश हो गया कोई, या अचानक से धड़कन बहुत तेज हो गई, या और कोई स्थिति है जैसे किसी को चाकू से कट गया या कुछ हो गया, तो ये सारे आपात स्थितियां हैं। बर्न हो गया, स्नेक बाइट हो गई, किसी ने पॉइजन खा लिया, ये सारे आपात स्थितियां हैं जिसमें हमें हेल्थ की सुविधा या मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
1: जी तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसा नंबर हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे जो कि जिस पर तुरंत हेल्प मिल सके हमारे श्रोताओं को?
0: अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एक आपात स्थिति के लिए नंबर दी गई है 112, सो 112 पे आप कॉल करके मेडिकल हेल्प या किसी भी तरीके की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत होगी तो उसी से एम्बुलेंस को कॉल कर दिया जाएगा। अगर आपको लगता है और आपको जानकारी है कि आपके यहाँ ये एम्बुलेंस का नंबर है, जैसे दिल्ली में 102, बाकी जगहों पे 108, ये कॉमन नंबर्स हैं जिस पे लोग फोन करके एम्बुलेंस सुविधाएं लेते हैं, तो उससे आप मदद ले सकते हैं।
1: जी, तो उम्मीद है श्रोताओं कि आपने ये नंबर्स नोट डाउन जरूर कर लिए होंगे, क्योंकि आज जो विषय है हमारा बहुत ही हटके है और हम लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि ताकि आपको अगर कोई भी जो है इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न होती है तो आप कैसे उससे बचाव कर सकते हैं और किस तरह से आपकी जो दिक्कतें हैं वो आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। यदि आपका भी है कोई सवाल तो तुरंत हमें कॉल करें। स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080 और 01123421082। अब वापस आना चाहेंगे आपके पास डॉक्टर साहब के, जो ये सारी स्थितियां हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बचाव की स्थिति तक पहुंचने के लिए अगर हमें जो पहला ट्रीटमेंट देना होता है घर पे, वो किस तरह से शुरुआत की जाए?
2: जिसे हम फर्स्ट एड कहते हैं या प्राथमिक चिकित्सा है, ये निर्भर करती है कि दुर्घटना क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप घर की बात करें कि घर में कोई बुजुर्ग इंसान अगर बाथरूम में गिर गए
1: जी,
2: तो सबसे ज़्यादा रिस्क इस बात की होती कि कहीं उनकी कूल्हे की हड्डी ना टूट गई हो। ऐसे में वहाँ से सबसे पहले उनको निकाल के सुरक्षित स्थान पे लाके और एक फ्लैट सरफेस पे, यानी एक नरम गद्दे की जगह एक हार्ड सरफेस पे उनको लिटाया जाए
1: जी।
2: और फिर ये समझा जाए कि उनको कहाँ दर्द हो रहा है। फिर दूसरी चीज़ हमें ये देखनी होती कि क्या वहाँ से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, किसी पार्ट से चोट लग के वहाँ से कोई खून तो नहीं निकल रहा। अगर वो बेहोश हो गए तो वो बता नहीं पाएंगे, तो वो हमें देखना ज़रूरी है। और जैसा कि डॉक्टर तेज प्रकाश ने अभी बताया कि हमें एम्बुलेंस के लिए या मेडिकल सुविधा उपलब्ध करने के लिए सबसे पहले कॉल कर देना चाहिए कि जब तक एम्बुलेंस आएगी या जब तक मेडिकल सर्विसेज आएंगी तब तक हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें वाइटल देखना चाहिए कि उनकी नब्ज चल रही है कि नहीं, उनकी सांस आ रही है कि नहीं, और वो होश में है कि नहीं। अगर ये तीनों सुरक्षित हैं, यानी उनकी नब्ज भी मिल रही है, उनको सांस भी आ रही है और वो शायद बेहोश नहीं है, तो हम ज़्यादा सुरक्षित स्थिति में हैं। अगर मान लीजिए वो बेहोश हो चुके हैं तो सबसे पहले ध्यान रखने की चीज़ है कि उनको कुछ खिलाने या पिलाने का प्रयास हम ना करें
1: जी।
2: और उनकी सांस हम देख सकते हैं कि उनकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है, नाक के पास उंगली ले जाके हम पता कर सकते हैं कि हवा आ रही है नहीं आ रही है। अगर उनकी गर्दन टेढ़ी है तो हम उसको ज़रा सीधी करने का प्रयास करें ताकि सांस की नली खुले और उनको सांस आती
1: जी।
2: और ये हुआ एक एग्जांपल। दूसरा मान लीजिए कि कोई दुर्घटना हो गई जिसमें बर्न हो गया, बर्न हो गया, बच्चा है वो खेल रहा था किचन में पहुंच गया उसकी हाथ

0: हाथ में आग लग गई। अब
1: जी
0: वो आग लगने से वो झुलस सा गया है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला कदम ये होता है कि हम उसको नॉर्मल वाटर, जो टैप में पानी आता है, जो नल में पानी आता है, उसके नीचे हाथ रख दें, लेकिन रगड़े ना। क्यों ना रगड़ें? क्योंकि रगड़ने से उसकी जो जली हुई स्किन है वो उतर जाएगी, वो बहुत हानिकारक होगा। सिर्फ ठंडे पानी में, नॉर्मल ठंडे पानी में, बर्फ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको साफ़ कर दें और उसके बाद हाथ को खुला रखें। अब उसमें स्थिति है कि अगर हमारे पास घर में कोई ऐसी क्रीम है, जैसे कॉमनली हम कहते हैं कि फर्स्ट एड किट में किट के अंदर सिल्वर सल्फा डाइजिन ऑइंटमेंट होती है, सिल्वर एक्स के नाम से भी आती है, लोग आमतौर पर जानते हैं, वो लगा दिया जाए। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो उसको उस हालत में ही रख के और हमें डॉक्टर के पास तुरंत ले जाना है, मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत ले जाना है। इसी तरह से एक और दुर्घटना होती है घरों के अंदर कि करंट लग गया, कोई लाइव वायर था जिसकी वजह से करंट लग गया। करंट लगने की स्थिति में जो सबसे पहला काम है, जो सबसे एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है कि हम जल्दी से उस इंसान को पकड़ के अलग करना चाहते हैं, ये हम ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी करंट से चिपका हुआ है। हम अगर उसको छूने जाएंगे तो वो करंट हमारे अंदर भी आ जाएगा। तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि जिस वायर से और वो करंट आ रहा है, किसी लकड़ी के टुकड़े से या जो ऐसी कोई भी चीज़ प्लास्टिक हो जिसमें से करंट पास नहीं करता, उसकी मदद से पहले हम उस सोर्स को हटाएं जो जो उसको इलेक्ट्रिक्यूशन कर रहा है। अगर वो हम हटाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, अब हम मरीज के पास जाके देख सकते हैं कि उसकी हृदय की गति तो नहीं रुक गई है या उसको वो बेहोश तो नहीं हो गए हैं, बाकी का इलाज उसके बाद शुरू होगा। ठीक है, तो इस तरह की कौन सी इमरजेंसी है इस पे निर्भर करेगा कि पहला एक्शन क्या लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बात सभी श्रोताओं से कहना चाहूँगा, कोई भी दुर्घटना आपके सामने घटती है, घबराइए मत, संयम से काम दीजिए और ध्यान रखिए कि मरीज की हम सबसे अच्छी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उसको सुरक्षित स्थान पर ले आएँ, उसके आसपास भीड़ ना इकट्ठी होने दें और फिर उसको जो जिस प्रकार की दुर्घटना हुई है उसमें जो फर्स्ट एड दी जाती है, प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, वो हम शुरू करें और एम्बुलेंस बुलाने की व्यवस्था तुरंत करें।
1: जी डॉक्टर अरुण सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बिल्कुल जो है विस्तार से आपने बता दिया। अब जो है समर स्ट्रोक भी आजकल बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या इसमें भी यही प्राथमिक उपचार होगा या कुछ डिफरेंट होगा?
0: नहीं, मैं इसमें दो बातें बोलना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि समर स्ट्रोक यानी हीट वेव से जो स्ट्रोक होता है उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। जैसे सरकार की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए जाते हैं कि देखिए अभी गर्मी की लहर हो रही है, अभी हीट वेव है, अभी लू का प्रकोप चल रहा है, ऐसी स्थिति में हम पहले सावधानी कहते हैं कि अगर ज़रूरी नहीं है तो आप बाहर ना जाएँ, गर्मी से अपने आप को बचाएँ। दूसरी चीज़ है कि अपनी बॉडी में पानी की मात्रा को निश्चित रखें, आप डिहाइड्रेट ना हो, बॉडी से पानी कम ना होने दें। इसलिए आपको अगर बाहर जाना भी है तो आप फ्रीक्वेंटली समय समय पर थोड़े थोड़े मात्रा में पानी पीते रहें। ठीक है, और तीसरी चीज है कि अगर मान लीजिए इन सब के बावजूद भी हीट स्ट्रोक होता है तो उसके लक्षण को पहचानिए। लक्षण है कि आपके जिसको हीट स्ट्रोक होगा उसके शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 104 डिग्री फारेनहाइट तक टेम्परेचर हो सकता है और उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। तो सबसे पहले उस इंसान को उस गर्मी की स्थिति से लाके एक छांव वाली जगह में, एक ठंडी जगह पे लिटाएं। अगर वो होश में है तो उनको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाइए, अगर वो होश में नहीं है तो सबसे पहले उनको पानी मत पिलाइए, क्योंकि जो बेहोश है उसको पानी पिलाने का अगर हम प्रयास करेंगे या कुछ खिलाने का प्रयास करेंगे तो सांस की नली में जा सकता है। इसलिए बेहोश इंसान को हम ये ना करें, लेकिन उसके आसपास हवा हो, ठंडक हो, छांव हो, ये व्यवस्था हम जरूर करें और उसके बाद एम्बुलेंस आते ही उनको हॉस्पिटल ले जाएं। ये समर स्ट्रोक में बहुत जरूरी। लेकिन फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा मेरे श्रोताओं के लिए कि आप ये दुर्घटना ना होने दें, ये जागरूकता रखें, उनको पानी पिलाएं, उनको और खास करके दो उम्र के वर्ग में बच्चों को और बुजुर्गों को ऑलवेज इस बात के लिए मना करें कि वो गर्मी की स्थिति में और लू की स्थिति में बाहर जाने से बचें जितना प्रैक्टिकली संभव हो।
1: बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया भी कि पानी पिलाना चाहिए नहीं। अभी हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है, सुधीर सिंह कुतुबगढ़ से लिख रहे हैं, नमस्कार सर, जो रोड के किनारे एक्सीडेंट हो जाते हैं इन लोगों को पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? जैसे कोई गिर गया है तो बेहोश हो जाता है, उसे पानी पिलाना चाहिए कि नहीं, जानना चाहते हैं ये।
2: तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो ये है कि पानी पिलाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई उससे बेनिफिट नहीं हो।

0: लेकिन उससे क्या हार्म हो सकता है, ये जानना
1: जी
0: बहुत
1: बहुत
0: ज़रूरी है।
1: महत्वपूर्ण है जी।
0: अगर वो व्यक्ति बेहोशी के हालत में है, इवन आधे बेहोश हम कहते हैं कि थोड़ा सा उसका जो होश है उतना नहीं है, कम है, तो वैसी स्थिति में अगर देंगे और वो पानी जो है वो सांस की नली में चली गई, तो ये एक बहुत बड़ा उसके
1: लेना का
0: लिए
1: देना पड़
0: लेनी की
1: जाएगा।
0: देनी
1: हाँ
0: हो
1: हाँ
0: जाएगी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऐसे मरीज, ऐसे लोग जिनके जिनको दुर्घटना हुआ हो, उसको ना कुछ पिलाएं ना कुछ खिलाएं,
1: जी
0: और बेहतर हो कि उसको बिठा के ना रखें, लिटा के रखें। सो बहुत बार हमने देखा है कि कोई गिर गया हो प्रार्थना में, जैसे बच्चे गिर जाते हैं और उसको फिर हम बिठाते हैं ऑफिस में, कभी कोई गिर गया उसको बिठाते, बिठाना नहीं चाहिए, हमें उसको लिटा के रखना चाहिए। तो सेफ प्लेस पे, जहाँ पे आपको लगता है कि ये प्लेस अच्छा है, वहाँ पे लिटा के उसको रखिए और मदद के लिए आगे कॉल करिए नेक्स्ट स्टेप में।
1: तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, आगे भी ये सवाल जवाब जारी रहेंगे और समाधान भी जारी रहेंगे। फिलहाल यहाँ लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ अनुराधा और आज हम चर्चा कर रहे हैं इमरजेंसी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट पर और हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आज के विषय में विस्तार से आप हैं डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन UCMS एंड GTB हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और हमारे दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर तेज प्रकाश सिन्हा जी, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली। तो आपसे बहुत कुछ आगे जानेंगे लेकिन फिलहाल एक सूचना आपको दे दें। श्रोताओं, आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य कार्यक्रमों और आकाशवाणी के बारे में अपने विचार आप हमसे साझा कर सकते हैं। लगभग 2 मिनट के ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में अपने विचार भेजिए हमारे मेल ID healthairdelhi@gmail.com पर। तो इस सूचना के बाद अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सवाल जवाब जारी रहेंगे। आपको बता दें कि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। तो डॉक्टर साहब, हम वापस आते हैं अपने विषय पर और जानते हैं आपसे बहुत सारी बातें अभी जानने को है। तो सबसे पहले मेरा अब सवाल है ब्रेक से वापस आने के बाद कि गोल्डन आर क्या होता है और गंभीर चिकित्सा में क्या है अलग अलग केसेस में। ये
2: ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि समय, इमरजेंसी में समय का सारा खेल है। अगर गोल्डन आवर की बात करूं तो ये चोटग्रस्त मरीजों में पहली बार इसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट ढंग से बताया गया कि अगर चोट लगने से 1 घंटे के अंदर अगर उसकी डेफिनेटिव केयर या मैं कहते हैं कि मेन केयर, उसकी मेडिकल केयर स्टार्ट हो जाए तो बचने की या आउटकम्स के अच्छे होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये सिर्फ चोट तक या ट्रॉमा तक लिमिटेड नहीं है। अगर हार्ट अटैक के मरीजों को हम देखें तो हम लोग कहते हैं कि 30 मिनट के अंदर में, या एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी अगर 120 मिनट या 2 घंटे के अंदर में हो जाए किसी की तो ये पहले जैसा ही काम करेगा, उसका शरीर, इनका स्वास्थ्य पहले जैसा वापस आ सकता है। सिमिलरली स्ट्रोक में जो लकवा मारना जिसको कहते हैं उसमें भी समय बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दमे के मरीज में किसी को दमा की इमरजेंसी आ गई, सांस उखड़ रहा है, उसमें भी है। किसी का हार्ट चलना बंद हो जाए उसमें तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि हर मिनट अगर छाती का दबाव या हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट चलने बंद होने में अगर हम उसको मदद ना पहुंचाएं तो हर मिनट बचने की संभावना 10% लगभग घट जाती है, यानी कि 10-12 मिनट होते होते उसका गेम खत्म हो जाएगा। सो इसलिए समय बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इन सब इमरजेंसियों को हम लोग कहते हैं टाइम सेंसिटिव इमरजेंसी, कि समय से इलाज बहुत ज़रूरी है इसमें।
1: तो बहुत बड़ी बात है कि अगर आप समय से सतर्क हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं और बचा लेते हैं किसी एक की भी जान तो बहुत बड़ी बात होती है। डॉक्टर साहब, अगर बात होती है तो हमारे पास देखिए एक सवाल भी आ चुका है SMS हमारे पास KD त्रिपाठी जी का रांची से आया हुआ है। लिख रहे हैं कि मैं 79 ईयर ओल्ड हूँ और एम्बुलेंस नंबर क्या 108 है, ये जानना चाहते हैं। हालांकि आपने अभी बताया है झारखंड रांची से ये सवाल आया है और मेरा भी एक सवाल है कि जब जैसे टीम वगैरह क्या भेजी जाती है आपकी ओर से, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर्स लोग जैसे कि अभी इनका सवाल है कंफ्यूज ये हो रहे हैं, पहले इनका जवाब दे दें फिर हम अपना सवाल करेंगे।
2: जरूर जरूर, देखिए एम्बुलेंस सर्विसेज सरकार की तरफ से और प्राइवेट लोगों की तरफ से भी उपलब्ध है और पिछले दशकों में हमने देखा और सरकार ने भी यह पाया कि अलग अलग एम्बुलेंस के नंबर के होने की वजह से लोग याद नहीं रख पाते हैं, तो सुविधा होते हुए भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस कारण से ही केंद्रीय सरकार ने एक नंबर 112 नंबर जारी किया है और लगभग अब धीरे धीरे करके सारे स्टेट अब इस नंबर को एडॉप्ट कर रहे हैं। तो इस नंबर पर अगर आप कॉल करते हैं तो ये एम्बुलेंस की ज़रूरत हो तो उस पर कनेक्ट कर देंगे या कोई और आवश्यकता हो तो उस पर कनेक्ट कर देंगे। दूसरा एक और है कि कोई आपात स्थिति हो तो कहीं किसी किसी राज्यों में लोग 108 जो एम्बुलेंस सर्विस है उस पर कॉल करते हैं। तो थोड़ी मैं कहूँगा दोनों बात कि 112 उपलब्ध है, ज़रूर सुविधा उठाएं। अगर ना उपलब्ध हो आज ही जानकारी लें कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस का नंबर कौन सा है।
1: जी, बहुत अच्छी बात है। और अब हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमसे, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। आपका बहुत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, नाम बताएं अपना।
3: हेलो
1: जी, अपना नाम बताएं सर।
3: नमस्ते मैडम जी, मैं मुजफ्फर मलेरकोटला पंजाब से बोल रहा हूँ।
1: जी स्वागत है, नाम बता दिया आपने, अब बताएं कि सवाल क्या है, दोनों विशेषज्ञ सुन रहे हैं आपको।
3: मैडम जी मेरा सवाल ये है कि मैंने एक बार रास्ता चल रहा था अपने गाड़ी पे
1: जी,
3: तो कुछ मतलब एक बंदा ना एक्सीडेंट होकर के रोड पे गिरा हुआ था, ठीक है
1: जी।
3: तो वहाँ पे ना कोई उसको उठाने वाला नहीं था, ठीक है। तो मैंने देखा तो मैं सोचा नहीं इसका मदद मुझे करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने उसको ना उठा करके अपने गाड़ी में, एक बंदे को मैंने बोला भाई ऐसा करो इसको ना मेरे गाड़ी में बैठाओ और मेरे साथ चलो
1: जी।
3: इसको हॉस्पिटल तक लेके जाना है, जबकि उस टाइम एम्बुलेंस को फोन लगाया, एम्बुलेंस का फोन नहीं लग रहा था, ठीक है। तो मैं उसको हॉस्पिटल की कदर तो मैंने लेके गया, ठीक है, उस बेचारे को,
1: ठीक है।
3: और वहाँ जाने के बाद जो है ना हॉस्पिटल वाला बोलता है जो भाई इसका ना पुलिस केस बनेगा, ठीक है, जब तक पुलिस नहीं आएगा मैं इसको एडमिट नहीं करूंगा अपने हॉस्पिटल में,
1: ठीक है।
3: तो मेरा कहने का मतलब जैसे पुलिस आया तो मेरे से ना पूछताछ बहुत कुछ किया, ठीक है, और मेरे से जो है ना बहुत आना जाना कराया जो कैसे हुआ, तुम कहाँ थे कैसे, तो यार मैं उसका मदद किया तो मैं उसको ये थ्रू दिखा रहा जो मुझे
1: जी। देखिए सर ने, डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले इस विषय की चर्चा की थी, मुझे लगता है कि आप उस समय कार्यक्रम सुन रहे थे कि नहीं। सर एक बात इनको शॉर्ट में बता दीजिए,
2: जरूर,
1: क्या
2: जरूर।
1: रूल क्या नियम अब बन चुके हैं,
2: नियम जिसको हम लोग गुड सैमरिटन लॉ कहते हैं। एक तो बड़ा अच्छा सवाल है और ये झिझक आज भी लोगों के बीच में, तो आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने इस सवाल को दोबारा उठाया है। सो गुड समरिटन लॉ ये कहता है कि जो भी इस तरीके के दुर्घटना में शिकार व्यक्ति की मदद करता है उसे अस्पताल ना नाम पूछेगा, ना मरीज़ के इलाज के लिए कोई फीस या किसी और भी चीज़ की डिमांड कर सकता है। दूसरा, ये अस्पताल की जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पुलिस को बुलाना है तो बुलाए, मेडिको लीगल कार्यक्रम जो भी उसके लिए करना है वो करे, और किसी भी तरीके से जो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने मदद, जैसे आपने बड़ा अच्छा मदद किया है, तो कोई हरासमेंट ना करे, सरकार की नियम यही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुंच सके
1: जी। डॉक्टर साहब अब बात कर लेते हैं कि ट्रॉमा केवल शारीरिक ही माना जाता है, ऐसा है क्या, मानसिक स्थिति में भी ट्रॉमा हो सकता है?
2: देखिए ट्रॉमा तो दोनों तरीके से डिफाइन करते हैं, एक फिजिकल ट्रॉमा जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि शरीर में चोट किसी तरीके की लगी और कोई डैमेज हुआ उससे
1: जी।
2: लेकिन चोट लगने के बाद भी बहुत तरीके की मानसिक परेशानियां होती हैं, एक तो जिसको कि हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है समझना कि वो जो स्थिति थी ट्रॉमा की जिसमें एक्सीडेंट या कुछ हुआ था उसकी यादें आती रहती है और साइकोलॉजिकल बड़ा स्ट्रेस रहता है। तो इस पे भी बहुत गंभीरता से चर्चाएं चल रही हैं और बहुत सारे पहलू हैं जिस पे लोग ध्यान दे रहे हैं कि जब ये लोग आते हैं चोटग्रस्त तो उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए आने वाले समय में। इसमें साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या अदर डॉक्टर्स भी हैं और मैं चाहूँगा कि सर भी इस पे थोड़ा और प्रकाश डालें।
1: जी बिल्कुल
4: जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया। उसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि मानसिक आपातकालीन स्थिति भी होती हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत तनावग्रस्त है या डिप्रेशन में है और उसको सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, यानी आत्महत्या की स्थिति पैदा हो रही है, वो करना चाह रहे हैं, ये अपने आप में एक इमरजेंसी है। अगर कोई भी ऐसे इंसान के कॉन्टैक्ट में आता है और रिकॉग्नाइज करता है कि ये व्यक्ति अभी ऐसा कोई अनचाहा कदम ले सकता है तो उसको रोकने के लिए प्रयास करना भी एक इमरजेंसी है, एक इंसान को जिंदगी में वापस लाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये तो मानसिक रूप से, दूसरा आपने भी देखा होगा और कई बार अखबार में भी हम पढ़ते हैं कि कोई पुल के ऊपर गया और पुल पर चढ़ के खड़ा हो गया कि अब वो आत्महत्या करने के लिए कूदने के लिए तैयार है, ऐसे में राहगीर जो है जो उसको देखते हैं वो उसको बचाने का प्रयास करते हैं। तो ये मानसिक इमरजेंसी भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि मान लीजिए आज रिजल्ट निकला है और किसी बच्चे का रिजल्ट बहुत खराब आया, तो हमें ये एक एंटिसिपेशन है कि जिस बच्चे का रिजल्ट खराब आया कहीं वो मानसिक रूप से तनावग्रस्त तो नहीं हो गया, उस चीज़ को रोकना, उसके लिए तैयार करना। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से परीक्षा से पहले बच्चों से कहते हैं, वही चीज़ हर आदमी को करनी चाहिए कि कोई भी ऐसी तनाव की स्थिति है, किसी के घर में कोई दुर्घटना घट गई, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति

0: मौत हो गई अचानक, आकस्मिक मौत हो गई, उसका जो मानसिक प्रभाव घर के बाकी लोगों पे पड़ेगा उसको समझना और उन लोगों को उस मानसिक तनाव की स्थिति से निकालना आगे की दुर्घटनाओं से बचा सकता है। इसलिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है
1: जी।
2: मैं एक जोड़ना चाहूँगा इसमें, जो बड़ा अच्छा सर ने बताया कि प्रधानमंत्री जी हमेशा बच्चों के साथ बातें करते हैं एग्ज़ाम के पहले, तो मेरा आपके माध्यम से सारे स्कूल और पंचायत से रिक्वेस्ट होगा कि क्यों ना हम अपने पंचायत के लेवल पे या स्कूल के लेवल पे परीक्षा के उपरांत एक ऐसे स्टूडेंट से मिले और उनको बताएं और इन स्थितियों को कैसे टालें, इस पर भी मुझे लगता है कि हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए दोनों लेवल पे, पंचायत और शिक्षकों के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे। तो ये मेरा एक सबमिशन है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है आप लोगों का। और ये बात यहाँ पर देखने को आती है कि अगर बच्चा बचपन से ही स्ट्रांग होगा, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छा जीवन उसको मिलेगा। और उसके लिए जो आपने बताया है कि चर्चा होनी ही चाहिए और उस पर थोड़ा सा गंभीरता से लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत लाइटली लिया जाता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके साथ कैसा भी अगर बिहेव किया जाता है तो थोड़ा लाइटली लोग लेते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं आहत होता है। इसलिए उसको संभाल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा कहा जाता है कि एक कच्चा घड़ा होता है, उसको जैसा ढालेंगे वैसा वो बनेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मैसेज आ चुका है रमेश कुमार सिंह जी का, न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि जब हम एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो फिर उन्होंने इसी समस्या का जिक्र किया है जिसका अभी हम जवाब दे चुके हैं। तो रमेश जी, उम्मीद है कि आपने सुन लिया होगा और आगे हम बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल अभी हमारे पास बाकी हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और भी है कि ट्रॉमा सेंटर क्या है, ये सामान्य अस्पताल से क्या कुछ अलग होता है, किस तरह की सुविधाएँ होती हैं इसमें?
2: चूँकि आपने अभी बात करी कि गोल्डन आवर की बात है, तो सारी चीज़ समय से व्यवस्थित तौर पे होनी चाहिए एक मरीज़ के इलाज के लिए। तो जैसे हार्ट के सेंटर्स बनने शुरू हुए, तो इस आपात स्थिति में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत पड़ती है हर जान को बचाने के लिए। तो शुरुआती जो सेवाएँ होती है उसको हम लोग कहते हैं इमरजेंसी सेवा। उसके बाद जो किसी एक स्पेसिफिक तरीके की इंजुरी है, जैसे सर का चोट है, तो आपको फिर हेड इंजरी को मैनेज करने के लिए आगे की व्यवस्थाएं भी चाहिए। किसी को फ्रैक्चर है, स्पाइन की इंजरी है, तो उसको आगे की व्यवस्थाएं चाहिए। किसी को आईसीयू की ज़रूरत है, तो इमरजेंसी में इलाज होने के बाद आईसीयू में उसको केयर चाहिए। तो ये पूरी व्यवस्थाओं को एक जगह व्यवस्थित करने का जो काम किया गया है, इस तरीके के यूनिट्स या सेंटर्स बना के किया गया है। अभी हाल में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट भी पास किया है इसके लिए कि जो सेकेंडरी लेवल के हमारे जिला अस्पताल हैं उसमें इमरजेंसी और ट्रॉमा की सुविधाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो मेडिकल कॉलेज के लेवल पे, टर्शियरी लेवल पे तो ये चल रही थी, लेकिन अब इसको डिस्ट्रिक्ट जिला अस्पताल पे भी कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए भी बड़ी सारी योजनाएं और कार्यबद्ध तरीके से कैसे इसको आगे ले जाए। तो ये एक तरीके से व्यवस्थित पूरा सेटअप है जिसमें कि कोई भी ट्रॉमा का मरीज आए, किसी भी तरीके के चोट का, उसका समुचित एंड समग्र इलाज हो पाए।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं सर।
3: मतलब मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी बताएं सर, क्या सवाल है आपका?
3: मेरा पूछना है कि जब,
1: हेलो, मुझे लगता है कि इनसे संपर्क टूट गया है और सवाल ये करने जा रहे थे, तभी मुझे लगता है कि नेटवर्क एरिया से ये बाहर चले गए क्योंकि आवाज़ आ रही थी पीछे सड़क की। डॉक्टर साहब, बात हम कर रहे थे कि किस तरीके की हमारे पास सुविधाएं होती हैं ट्रॉमा सेंटर में।
2: सो जैसा मैंने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में एक, जैसे ही आप कोई मरीज आता है तो एक तो रिसेप्शन पे जो भी अराइवल एरिया या गेट के पास जो लोग हों खड़े, उनको इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि इस मरीज को जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से एम्बुलेंस से उतार के अंदर लेके जाएं।
1: जी।
2: जब अंदर जैसे ही जाते हैं तो हमारी नर्सेस एक आइडेंटिफाई करने का तरीका, जिसको हम कहते हैं कि सीरियस कौन है और कौन कम सीरियस है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में ट्रायाज कहते हैं, कैटेगरी में बांटना, ताकि जो सीरियस है उसको जल्दी इलाज मिले और जो थोड़ा इंतजार कर सकता है वो प्रायोरिटाइज कर ले हम। तो ट्रायजिंग हो गई, ट्रायज होने के बाद जान या लिम्ब, या मतलब हम कहते हैं कि हाथ पैर में अगर कोई ऐसा हो, तो इसको बचाने के लिए जो चाहिए उसको सबसे जल्दी आपको देखना पड़ेगा। इसी को जो व्यवस्थित तौर पे हम कहते हैं ABCD वे में, एक डॉक्टर की भाषा में हम कहे तो करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिससिटेशन।

0: है ना करना, या जान बचाने की जो सारी प्रक्रियाएं होती है उसको करना। इसको करने के बाद हम जान पे खतरा तो टाल दिया हमने, अब हमें देखना है कि चोटग्रस्त कौन कौन सा भाग है, कौन सा अंग है, उसके लिए हम बेस्ट क्या कर सकते हैं।
1: जी
0: तो अब यहाँ पे जांचों का समय आता है, थोड़ी जांचें हम करते हैं, फिर अन्य विभाग के जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम बुलाते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करते हैं साथ में कि इसका फ्रैक्चर है, तो हमने इमरजेंसी में केयर, ब्लीडिंग हो रही थी, खून बह रहा था, वो हमने रोक दिया है, फ्रैक्चर का एक्सरे हो गया है, फ्रैक्चर का मूवमेंट हमने रोक दिया है, ये सारे चीज़ हमने देख लिए, अब आप इसको आगे का इलाज करिए। तो कहेंगे ठीक है, इसको हम भर्ती करके ऑपरेशन करेंगे, या
1: जी
0: हो सकता है कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम देखभाल करके छुट्टी करेंगे। तो इस तरीके से पूरा व्यवस्थित तौर पे सारे सीक्वेंस में इसका इलाज चलता है ट्रॉमा
1: जी
0: सेंटर में।
1: आगे भी आपसे अभी जानेंगे कि टेस्ट किस तरह के होते हैं और क्या-क्या जरूरी होते हैं, करा ही लेने चाहिए, इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइन पर। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार मैडम,
1: नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना।
2: और दोनों डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। रघुवीर सिंह
0: नमस्कार,
2: ठाकुर उत्तराखंड
0: नमस्कार।
2: से।
1: जी जी सर,
2: मेरे को ये पूछना था कि जैसे नॉर्मल चक्कर आ जाते हैं कमजोरी से या किसी कारण से, बच्चों को या किसी को भी घर में, तो उसमें जैसा सर ने बोला कि उसमें क्या उनको पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए?
1: क्या कहेंगे सर, बताएं। अरुण सर,
3: जी,
1: क्या कहना चाहेंगे?
3: इस प्रश्न को पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आम समस्या होती है, किसी भी इंसान को अगर चक्कर आ गए और वो बेहोश होने लगे तो उसे सबसे पहले लिटा दीजिए, एक साफ़ सुथरी जगह पे, खुली जगह पे, घर में, घर के अंदर भी लिटा दीजिए। और आम तौर पे ये चक्कर आना होता है तो हम लिटाने के बाद कहते हैं कि उनके पैर आप थोड़े से पकड़ के दोनों पैर ऊपर कर दीजिए। आमतौर पे क्या होता है कि लंबे समय तक खड़े रहने से या कमजोरी की वजह से और रक्त का जो प्रवाह है वो प्रवाह पैरों की तरफ हो जाता है, इससे मस्तिष्क में रक्त नहीं पहुंच पाता, इसलिए चक्कर खा के कोई गिर जाता है। तो सबसे पहला काम यही करें कि उसको लिटा दें, ये देखें कि उसकी सांस ठीक हो रही है, यानी उसकी गर्दन मुड़ी हुई नहीं है, गर्दन सीधी होनी चाहिए, और दोनों पैरों को हम थोड़ा सा धीरे से ऊपर उठा दें तो रक्त का प्रवाह अब जब फिर से हृदय और ब्रेन की तरफ होने लगेगा तो उनको होश आ जाएगा। अगर इसके बाद भी उस इंसान को होश नहीं आता है तब हमें ये सोचना चाहिए कि ये समस्या किसी और पीछे की किसी बीमारी की वजह से हुई है, तो उसमें ये आपातकालीन स्थिति बन सकती है। और अगर हम देखें कि उसकी सांस आ जा रही है, उसकी नब्ज चल रही है, तो अब सबसे पहले उसे हम निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाने की व्यवस्था करें। और अगर वो बेहोश हैं, उनको होश नहीं है, तो उनको पानी पिलाने का या कुछ भी खिलाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। अगर वो होश में है, बात कर सकते हैं, तो बैठा के आप उनको पानी पिला सकते हैं, लेकिन पहले ये देखिए कि वो इस स्थिति में है या नहीं है, और तुरंत मेडिकल सुविधा लेने के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर या निकटतम डॉक्टर के पास जरूर ले जाएं, ये जरूरी होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: जी नमस्कार,
1: नमस्कार सर।
4: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी अभी
4: मेरा
1: आपका,
4: पूछना है।
1: हाँ जी बताएं।
4: जी मेरा पूछना है कि जब किसी इंसान पर एसिड अटैक हो तो हम लोगों को क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, कृपया विस्तार से बताएं।
0: ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है गौतम जी, कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर एसिड अटैक हो तो क्या करना चाहिए। तो एक तो ये है कि किसी भी तरीके का, जैसे एक लिक्विड हो गया या किसी भी तरीके का ऐसा हो, तो पहले तो उसका एक्सपोज़र को या उसके असर को कैसे कम कर सकें, तो हम लोग कहते हैं कि और एसिड उस पर ना गिरे, पहले तो हम ये देखें कि एसिड कैसे कम हो सकता है। दूसरा बात है कि आप उसको जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प के लिए लेके जाना पड़ेगा। इस बीच में आप इतना कर सकते हैं कि उसको, जैसे सर ने पहले बर्न के केसेस में जैसे जो प्रिकॉशन हम जले हुए मरीज के लिए लेते हैं, उस तरीके की प्रिकॉशन इसमें भी लेनी पड़ेगी आपको। और आप अननेसेसरी उसको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्द से जल्द मेडिकल सुविधाओं को अवेल करें। और इसको आप वेट नहीं कर सकते, अक्सर देखा गया है कि चेहरे पर एसिड अटैक कॉमन होते हैं, जिसमें फिर सांस की नली में भी वो एसिड जाने की समस्या, सांस लेने की समस्या, ये सारी समस्याएं बहुत तेज़ी से अग्रसर होती है। तो इसको मेडिकल हेल्प जितनी जल्दी हो सके उस पर हम लेके जाएं।
1: जी, तो यहाँ पर आपने इनका मार्गदर्शन कर दिया। आगे बढ़ते हैं और फिलहाल यहाँ ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और हम चर्चा कर रहे हैं आज किस तरह की इमरजेंसीज होती हैं और किस तरह से आपको सतर्कता बरतनी है। लगातार इस विषय पर हमारे दो विशेषज्ञ आपको सलाह दे रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। हम मैसेज यहाँ पर देखना चाहेंगे। हमारे पास ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता जी, बबीता रानी गुप्ता जी का मैसेज आया हुआ है। लिख रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, विषय भी बहुत अच्छा है। आज आपातकालीन पर बहुत जानकारी प्राप्त हुई है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जानकारी मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर गुप्ता जी और बबीता जी। अगर आप कोई सवाल लिखते तो और भी अच्छा लगता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है और बारी बारी से मैं जानना चाहूँगी कि आप उपचार बताएं। और हीट प्रॉब्लम, हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये देखा जाता है कि लोग आमतौर पर मान लेते हैं कि ये गैस की समस्या है, लेकिन कैसे जाना जाए कि ये हार्ट की ही प्रॉब्लम है?
1: तो देखिए, अक्सर ये देखा जा रहा है कि 35 साल या उससे ऊपर, पहले तो और ज़्यादा इस उम्र में होता था, लेकिन आजकल थोड़े यंग एज में भी देखे जा रहे हैं कि सीने में बाईं तरफ दर्द, या कहें कि सेंट्रल चेस्ट में बीच में भी दर्द
0: जी।
1: और अक्सर ये बीच का दर्द होता है, यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कराता है हमें कि ये गैस है
0: जी।
1: तो पहले तो कोई भी ऐसा दर्द जो सीने में महसूस हो रहा हो, भारीपन लग रहा हो, घबराहट महसूस हो रही,

0: हो, जबड़े की तरफ जा रहा हो या बाईं हाथ की तरफ जा रहा हो, पसीने आ रहे हो और ये दर्द आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है और ये 20 मिनट से ऊपर खिंचता चला जा रहा है, तो ये लक्षण है, आप मान के चले कि ये कुछ भी हो सकता है। तो घबराने के बजाय इसके बारे में सोचे कि इस पे आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं और इसको गैस समझ के इग्नोर ना करें
1: ना करें
0: पहली
1: तो
0: बार।
1: बिल्कुल
0: तो अब आपको आगे जो भी पास में ऐसी सुविधा है जहाँ पे ईसीजी हो सकता है और डॉक्टर की सुविधा मिल सकती है, वहाँ के लिए आपको आगे जाना
1: जी।
0: चाहिए।
1: अरुण सर से मैं भी जानना चाहूंगी कि बचाव किस तरह से हो सकता है इस स्थिति में।
2: जी, डॉक्टर तेज प्रकाश ने बहुत अच्छी बात बताई कि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि गैस है या हार्ट अटैक है, और ये हमें समझना होगा कि इसका पूर्वानुमान होना चाहिए। पूर्वानुमान कैसे होता है? अगर घर में एक हाइपरटेंशन के मरीज हैं या उनके उनकी पूरी जांच हो चुकी है और पता है कि इनका जो हार्ट है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इनके हार्ट अटैक होने की संभावना है, ऐसे इंसान में अगर इस तरह के लक्षण आते हैं जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि सीने में सेंट्रल पार्ट में दर्द होता है या बाईं तरफ दर्द होता है, तो शुरू में हमें लगता है कि अच्छा हो सकता है कि हमें घबराहट हो रही है, पे कुछ ज़्यादा खा लिया होगा या कुछ गलत खा लिया होगा इसलिए होगा। इससे हम बचें, और ऐसे लोगों में खास करके जिनको पहले से इस तरह की हार्ट की बीमारियां मौजूद हैं उसमें हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। तो ये पूर्वानुमान रखना बहुत ज़रूरी है कि खास करके बुज़ुर्गों को, हाइपरटेंशन के मरीजों को और जिनको कार्डियक बीमारी पहले से है उसमें अगर ये लक्षण आते हैं तो हम ये इग्नोर ना करें कि ये गैस की हो सकती है, तुरंत उसके लिए डॉक्टर से संपर्क करें या उनको हॉस्पिटल ले जाएं। बहुत अच्छी बात होगी कि हॉस्पिटल जाने के बाद पता लगे कि वो कुछ नहीं था, गैस थी,
1: जी
2: लेकिन वो जो रिस्क थी कि अगर हार्ट अटैक होता तो हमने काश कोई सही फैसला ले दिया होता, हम उस गिल्ट से बच पाएंगे।
1: सकते
2: मैं
1: हैं
2: इसमें अनुराधा जी जोड़ना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो इमरजेंसी बनते हैं, वो हमें अगर पहले से पता है। अगर हमारे घर में कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है तो डायबिटीज़ के मरीज़ में देखिए दो चीज़ें होती हैं, अधिक शुगर होने की वजह से एक मेडिकल टर्म होता है कीटो एसिडोसिस, जिसमें भी इंसान बेहोश हो जाता है, या डायबिटीज़ के मरीज़ ने अपनी डायबिटीज़ की शुगर कम करने की दवाई खा ली लेकिन उसके बाद खाना नहीं खाया तो वो हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति होती। इन दोनों स्थिति में मरीज़ जो है धीरे धीरे बेहोशी की तरफ बढ़ता है और बेहोश हो जाता है। तो जब घर में एक डायबिटीज का मरीज है तो इस बात की सावधानी अगर हम रखें कि भाई वो ज़्यादा देर तक भूखा ना रहे और वो कभी गलती से भी बहुत ज़्यादा शुगर या शुगर वाली चीज़ें ना खा ले, दोनों ही स्थिति आपातकालीन स्थिति की तरफ ले जाएंगी। इसी तरह से एक बीमारी होती है जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, जिसे हम गाँव में देहात में अभी भी मिर्गी के दौरे के नाम से जानते हैं, उसमें भी ये स्थिति होती कि जिन लोगों को एपिलेप्सी की बीमारी है उनसे कहा जाता है कि आप लगातार अपनी दवाइयाँ खाएंगे, कोई भी दवाई मिस नहीं करेंगे। अगर किसी वजह से दवाई मिस हो गई तो ये रिस्क रहती है कि उनको मिर्गी का दौरा हो सकता है, उनको एपिलेप्सी का अटैक हो सकता है। तो ये सावधानी रखना कि दवाई समय पर दी जा रही है, उचित मात्रा में दी जा रही है, दवाई कभी मिस नहीं हो रही है। और ऐसे व्यक्ति में अगर पहले के लक्षण आते हैं कि ऐसा क्या होता है कि एक जी घबराने लगता है, उनको चक्कर से आते हैं, उसके बाद वो पूरा एपिलेप्सी का एक अटैक होता है, तो वो तुरंत समझते ही उनको लिटा देना, उनकी गर्दन सीधी करना और ये ध्यान रखना कि कहीं जो जीभ है वो उलट ना जाए, जो टांग है वो पीछे की तरफ ना चली जाए। तो उसमें आमतौर पे हम कहते हैं कि देखिए अगर वो बेहोश होने लगा है, उसको कन्वल्सन्स हो रहे हैं, तो किसी तरह से उसके जबड़े को खोल के उसके अंदर एक प्लास्टिक की चम्मच या कोई भी ऐसी चीज़ डाल दें कि उनकी जीभ उलट ना जाए, ताकि उनको फर्दर किसी डैमेज से या दुर्घटना से बचाया जा सके। तो जिन घरों में ऐसे बीमार होते हैं वो डॉक्टर से ज़रूर ये सलाह लें कि डॉक्टर साहब इस बीमारी में कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, कौन सी आपातकालीन स्थिति घर में हो सकती है और उसमें हमें क्या करना चाहिए। ये मेरे ख्याल से मरीज के परिवारजनों को अपनी तरफ से और ये प्रश्न ज़रूर पूछना चाहिए ताकि वो उस चीज़ के लिए तैयार रह पाएँ। जो जो ऐसी बीमारियाँ होती हैं उनमें ये जो सावधानी है बहुत काम आएगी किसी दुर्घटना से बचने के, या उस मरीज के साथ कोई भी मतलब अनएक्सपेक्टेड घटना ना घट जाए, उसमें ये बहुत योगदान रहेगा।
1: जी, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे?
0: एक जस्ट मैं ऐड करना चाह रहा था, जो मिर्गी के दौरों के बारे में बताए, भी बड़े होते हैं लोगों के बीच में होते हैं और अक्सर देखा गया है कि ये मिर्गी के दौरे के दौरान इनको गिरने से, या जैसे बिस्तर पे मिर्गी का दौरा पड़ा या बैठे बैठे पड़ा, तो ये गिरने के बाद जो चोट की स्थिति होती है वो अवॉइड कर सकते हैं। तो मिर्गी के दौरे वाले में ये जरूर ख्याल रखें कि अगर ऐसी ऊंची जगह पे कहीं है वो और दौरा

0: हो रहा है, तो अब गिरने से चोट न लग जाए तो वो अच्छा है कि फ्लैट सरफेस पे हो रहे हैं। दूसरा कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है किसी काम को करने के लिए तो उसको अवॉइड करिए आप। जैसे बहुत बार लोग टंग को बाइट होने से बचाने के लिए स्टील के चम्मच या किसी चीज़ से करना चाहते हैं, तो आप इसमें ना पड़े, मैं तो यही सलाह दूंगा, इसमें ना पड़े आप। ऐसा ना हो कि आप बचाव करने जा रहे हैं या कुछ हेल्प करने जा रहे हैं और ज़्यादा उसकी चोटग्रस्त होने की संभावना है। तो ये दो बातें मैं ऐड
1: जी,
0: करना चाहूँगा।
1: बहुत ही यहाँ पर उत्तम चर्चा रही, और मुझे लगता है कि समय का तो पता नहीं चला, बहुत सारे सवाल अभी मन में थे और हमें लगता है कि हमारे श्रोता भी जानना चाह रहे होंगे और बहुत सारी बातें, लेकिन समय अब अनुमति नहीं दे रहा है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि श्रोताओं, उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको आज का रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम, और आप हमें बताते रहिए, और हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज हमने चर्चा की है, आगे भी कार्यक्रम में लगातार चर्चा बनी रहेगी। आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद थे वो थे डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन UCMS एंड GTB हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और डॉक्टर तेज प्रकाश सिन्हा, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनुराधा को
2: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
3: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये दुख की बात है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में भविष्य की परीक्षाओं की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनाने की भी मांग की गई है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट UG पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिक विषय की लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के हिरासत में भेज दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमरीका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन संरक्षण की अपील राष्ट्रहित में है। हरियाणा के जिंद जिले में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा

उन्होंने ईंधन बचाने के लिए अपने आधिकारिक काफिले में वाहनों की संख्या भी कम कर दी है। बढ़ती बिजली की मांग पर श्री मनोहर लाल ने कहा कि 21 मई को देश में बिजली की अधिकतम मांग 271 गीगावाट दर्ज की गई, जिसकी आपूर्ति लगभग पूरी की गई। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य करना है। विधेयक असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्रारंभिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में श्री सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, तेलंगाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बने रहने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, जी हाँ, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम अल्फा जैन। और खास सोमवार के दिन हम लेकर आते हैं प्रोग्राम में यूथ स्पीक्स, यानी कि आप युवाओं के बीच से ही किसी खास को मिलता है मौका हमारे स्टूडियो में आने का और प्रोग्राम को प्रेजेंट करने का। जी हाँ, और आज ये खास मौका मिला है अदिति देशवाल को, जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं और फिलहाल यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तो अदिति, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, और कैसा महसूस कर रही हैं आपको मौका मिला है यहाँ पे आने का और हमारे लिसनर्स से बात करने का?
2: मैं नर्वस और बहुत एक्साइटेड हूँ।
1: ओके अदिति, तो आप किस जनरेशन से आती हैं?
2: आई एम फ्रॉम जेन जी।
1: ओके अदिति, तो आप आज किस टॉपिक पर बात करने वाली हैं जो अल्फा जेन से जुड़ा हुआ है?
2: आज का हमारा थीम होगा एवरी जनरेशन हैज समथिंग इम्पॉर्टेंट टू से, दैट इज अल्फा जेन।
1: ओके, तो यानी अल्फा जेन की जो भी खास बातें हैं उस पर अदिति करेंगी बात। और क्या कुछ है अल्फा जेन में खास, ये जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए।

Hello everyone, you are turned into most energetic show of the afternoon. मैं हूँ आज की स्पेशल वनडे होस्ट अदिति देशवाल और आज हम बात करने वाले हैं जेन अल्फा की, द जनरेशन बोर्न आफ्टर 2010। ये वो जनरेशन है जो स्मार्टफोन्स, एआई और सोशल मीडिया के साथ ग्रो हुई है। हम टीवी रिमोट ढूंढते थे, ये वॉइस कमांड यूज़ करते हैं। हम इंटरनेट सीखते थे, इन्होंने इंटरनेट के साथ ही ग्रो करना स्टार्ट किया। और कॉन्फिडेंस इतना कि कैमरा ऑन होते ही कंटेंट क्रिएटर मोड एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन ऑनेस्टली, जेन अल्फा सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, ट्रेंड्स क्रिएट भी करते हैं। तो इसी शो की अमेजिंग बिगनिंग करते हैं एक प्योर एनर्जी और पावरफुल ट्रैक के साथ।

0: close to me? Or is it all destiny? Destiny, don't lie to me.
1: तो दोस्तों, हमारा मन तो अटका है आपके पास, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ बहुत सारे एंटरटेनिंग सॉन्ग्स भी। तो आज प्रोग्राम अल्फा जेन में हम बात कर रहे हैं इस खास जनरेशन की, और हमारे साथ जेन जी से हैं अदिति। अदिति, तो अब आप किसके बारे में बताने वाली हो?
2: अब हम बात करने वाले हैं जेन अल्फा बॉयज की।
1: ओके, तो क्या खास होता है अल्फा बॉयज में?
2: इनका कॉन्फिडेंस और गेमिंग स्किल्स अलग ही लेवल पे होता है। हर दूसरे सेंटेंस में ब्रो कंपल्सरी है। ब्रो ट्रस्ट मी तो इनका यूनिवर्सल सॉल्यूशन है। और गेमिंग में तो टीम वर्क भी नेक्स्ट लेवल का होता है। फोन बैटरी 5% हो जाए तो इनकी सोल बॉडी से निकल जाती है। लेकिन स्मार्टनेस और क्रिएटिविटी दोनों फुल पावर में होती है।
1: बिल्कुल, ये जनरेशन पावरफुल तो बहुत है, और तभी तो आजकल बहुत सारी ब्रांड्स, बहुत सारी चीज़ें इस नई जनरेशन को ध्यान में रख कर ही काम कर रहे हैं।

0: एक और कदम बढ़ाएं।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: तो पार्टी शुरू हो रही है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर

वी आर बैक फ्रेंड्स। अब बात करते हैं जेन अल्फा गर्ल्स की। इनका फैशन सेंस और कॉन्फिडेंस ऑनेस्टली अनमैच्ड है, और फोटोज के मामले में एंगल परफेक्ट, लाइटनिंग परफेक्ट और कैप्शन एक्स्ट्रा डीप। हम डायरी लिखते थे, ये ऑनलाइन नोट्स अपलोड करती हैं। एक रील अपलोड करने में जितनी मेहनत होती है, उतनी तो हम असाइनमेंट्स में भी नहीं किया करते थे। आउटपुट प्लानिंग भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी होती है। लेकिन एक चीज़ तो इंस्पायरिंग है, ये अपनी इंडिविजुअलिटी प्राउडली शो करती हैं, और शायद इसी कॉन्फिडेंस की वजह से ये जनरेशन इतनी फियरलेस लगती है।

0: ये जो अल्फा जनरेशन है ना, ये सबका दिल जीतने के साथ साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उसे फतेह करने के लिए आगे बढ़ती चली जा रही है। हम बात कर रहे हैं अल्फा जन प्रोग्राम में अल्फा जन की खासियत की, और अदिति ने अभी बताया जैसे कि अल्फा जनरेशन गर्ल्स कैसी होती हैं, अल्फा जनरेशन बॉयज़ कैसे होते हैं। तो अदिति, आपने इन दोनों की बात तो की, लेकिन इनका जो बॉन्ड है वो पेरेंट्स के साथ कैसा होता है?
1: ये सबसे लीजेंडरी टॉपिक है। पेरेंट्स बोलते हैं हमारे ज़माने में हम मिट्टी में खेलते थे, जेन अल्फा रिप्लाइज हम माइनक्राफ्ट में सिटीज़ बिल्ड करते हैं, पेरेंट्स बुक प्रेफर करते थे और जेन अल्फा पीडीएफ्स डाउनलोड करते हैं। दोनों जनरेशन का लाइफस्टाइल अलग है बट इमोशन और इंटेंशन सेम है। एक जनरेशन एक्सपीरियंस लेके आई और दूसरे जनरेशन न्यू आइडियाज, और देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जहाँ पुरानी बातें, परंपराएं और अनुभव हमारे पेरेंट्स के पास है, वहीं जो अल्फा जनरेशन है ना, उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता हैं टेक्नोलॉजी वाइज जो हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है।
1: yes.
0: बहुत कुछ। और इसी के साथ ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम करने वाले हैं अल्फा जनरेशन के बारे में, आपके अपने शो अल्फा जेन में।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम अल्फा जैन। और आज अल्फा जैन में बात हो रही है इस खास जनरेशन की, और हमारे साथ हैं अदिति देशवाल। तो अदिति, आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो अल्फा जैन है ना, ये फ़ोन ज़्यादा चलाती है। व्हाट यू थिंक?
1: आजकल सब बोलते हैं ये जनरेशन बस फ़ोन चलाती रहती है, बट ऑनेस्टली वही फ़ोन किसी का टैलेंट भी बना देता है। कोई एडिटिंग सीख रहा है, कोई म्यूजिक बना रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्शन भी बन सकती है और अपॉर्चुनिटी भी। डिफरेंस बस यूज़ करने के तरीके में होता है। जैन अल्फा फास्ट लर्नर्स है और एक्सप्लोर करने से डरते नहीं हैं।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो अदिति, ये तो मुझे लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग बहुत प्लानिंग के साथ चलते हैं और अचानक से किसी परिस्थिति के लिए तैयार कभी कभी नहीं भी होते हैं। ख़ासतौर से जब बात करें आउटडोर ट्रिप की, तो अचानक से बैग उठाया और चल दिए, इतना हम नहीं कर सकते। लेकिन जो अल्फा जैन है वो इसके लिए बिल्कुल रेडी रहती है, और ये उनके लिए एक नया एडवेंचर है। तो फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारी ये बातें जारी रहेंगी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। चलो अब बात करते हैं जेन अल्फा के कुछ अल्ट्रा रिलेटेबल और फनी हैबिट्स की। पासवर्ड याद रखना इनके लिए अननेसेसरी स्ट्रगल है, और फेस आईडी ऑलरेडी इनका बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। फोन स्टोरेज फुल वार्निंग रोज आती है, बट मीम्स और स्क्रीनशॉट कभी डिलीट नहीं होते। एलेक्सा और वॉइस असिस्टेंट को ये लोग घर के मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड में चीज़ें ऐसे ऐड करते हैं जैसे ये इनकी फेवरेट हॉबी हो। टेक्नोलॉजी इनके लिए मैजिक नहीं, नॉर्मल लाइफ बन चुका है, और वही चीज़ इनको यूनिक और एंटरटेनिंग बनाती है।

0: दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी रेनबो पर। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप अल्फा जैन और हम बात कर रहे हैं अल्फा जनरेशन की खासियत की। तो अदिति, हमने इतनी सारी बातें की लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों से यही निकल के आया कि जो अल्फा जनरेशन है ना, उसका जो बॉन्ड है सोशल मीडिया के साथ बहुत स्ट्रांग है।
1: स्ट्रांग तो है लेकिन सोशल मीडिया प्रेशर भी क्रिएट करता है। कंपैरिजन और वैलिडेशन का स्ट्रेस कभी कभी बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए ऑनलाइन लाइफ के साथ साथ ऑफलाइन पीस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है।
0: बिल्कुल अदिति, आपकी इस बात को तो मानना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन लाइफ जितनी मैनेज कर लेते हैं ये अल्फा जनरेशन, लेकिन ऑफलाइन को भी मैनेज करने में ये बखूबी स्मार्ट होते हैं, क्योंकि जब इनको लगता है कि स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो रहा है, ये उठाते हैं अपना बैग और बगैर किसी की परवाह किए निकल पड़ते हैं एक ब्रेक लेने के लिए। और फिलहाल मुझे लगता है हमें भी एक छोटा सा ब्रेक ले ही लेना चाहिए, जिससे कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो उसके बाद ब्रेक के बाद सुने बढ़िया सा गाना और हम लेकर आए हैं उसके बाद ढेर सारी बातें।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर
1: और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: मिल गया है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अल्फा जनरेशन की, और अदिति आपने अल्फा जनरेशन के बारे में इतनी सारी चीजें बताई, तो ऐसी क्या चीज है जो इस जनरेशन को सबसे अलग बनाती है?
1: वो है कॉन्फिडेंस। टीचर पूछे हु नोज द आंसर, हम जेंसी आंखें नीचे कर लेते थे, लेकिन अल्फा जेन बोलते हैं मैम आई विल ट्राई, एंड दैट कॉन्फिडेंस टू बी ऑनेस्ट इज इंस्पायरिंग। ये लोग फेलियर से इतना नहीं डरते, एक्सप्लोर करते हैं, लर्न करते हैं और फिर इम्प्रूव भी करते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हो अदिति, क्योंकि कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी का जो कॉम्बिनेशन है ना, मुझे लगता है वही इस अल्फा जनरेशन की रियल स्ट्रेंथ है। और फिलहाल जो हमारी स्टूडियो की घड़ी है वो दिखा रही है कि 4:55 हो चुके हैं, तो अदिति हमें कहना होगा टाटा बाय, लेकिन जाने से पहले आप क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो हमारे लिसनर्स को?
1: हर जनरेशन डिफरेंट होती है और वही उसकी ब्यूटी है। जज करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे समझना। एवरी यंग वॉइस डिजर्व टू बी हर्ड।
0: बिल्कुल सही कह रही बात थी, और मुझे भी लगता है कि जज करने से ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें समझना, और उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी बातों को समझना, उनसे कुछ सीखना, क्योंकि हर जनरेशन कुछ ना कुछ सिखाती ज़रूर है। तो फिलहाल अल्फा जेन में हम दोनों यानी कि अदिति और मैं शालिनी आपको कहेंगे बाय बाय, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ, क्योंकि आगे आप सुनेंगे प्रोग्राम सिटी लाइट्स, आपके अपने स्टेशन ऑफ द नेशन आकाशवाणी रेनबो पार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में अब से कुछ देर में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित हैं। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: सरकार देश में पेट्रोल उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
2: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदाय को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह की अध्यक्ष डॉक्टर शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये दुख की बात है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश PS नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमरीका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री S जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये वृद्धि हुई है। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, यह है आपकी वाणी आकाशवाणी। और अब आकाशवाणी पर आपकी वाणी के साथ अपनी वाणी मिलाने आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। और अब प्रोग्राम शुरू होगा जिसका नाम है सिटी लाइट्स, यानी एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आप तक पहुंचाते हैं वो जानकारियां जो आपके शहर से संबंधित होती हैं। और अब हम क्योंकि हैं दिल्ली के स्टूडियो में, तो स्वाभाविक है कि हम आपको वो जानकारियां देंगे जो दिल्ली शहर से रखती हैं वास्ता, ठीक वैसे ही जैसे हमारा और आपका जुड़ा हुआ है एक दूसरे से राब्ता। तो आप बने रहिएगा और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो विथ एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव।

जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी गर्लफ्रेंड इस भयंकर गर्मी में आपके साथ डेटिंग पर जाने के लिए मना कर रही है या फिर फिल्म देखने किसी सिनेमा हॉल जाने को मना कर रही है, तो आप टेंशन ना लें। जी हाँ, बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि मैं आपको अभी एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जैसे सुनकर आपके दिल को ठंडक ठीक वैसे ही पहुंचेगी जैसे आजकल इस गर्मी में ठंडा ठंडा नींबू पानी पी कर मिलता है ना। और यकीन मानिए, जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये जानकारी साझा करेंगे तो वो भी पहले जैसे इस गीत में नेहा कक्कड़ ना ना कह रही थी, लेकिन बाद में फिर हाँ हाँ कहने लगी। नेहा कक्कड़ की तरह ना ना नहीं कहेगी आपकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल। जानकारी यह है कि दिल्ली टूरिज्म विभाग ने डबल डेकर एसी बस, जी हाँ, इसकी शुरुआत उन्होंने 5 मार्च को की थी और उसका किराया भी रखा हुआ था दिल्ली दर्शन के लिए, जो पहले चार्जेस था ना, अब उनको घटा दिया है। अब मात्र 300 रुपये में बड़े और 200 रुपये में बच्चे आनंद ले सकते हैं पूरे दिल्ली दर्शन का। मतलब घूमने के साथ साथ खरीदारी भी आप कर सकते हैं और स्वाद लेने का मौका भी आपको मिल सकता है पूरे हफ्ते। जी हाँ, क्योंकि जो रूट है वो सब है, राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है, कुतुब मीनार है और शॉपिंग सेंटर भी है। बहुत जगह पर आपको ये गाड़ी डबल डेकर बस ले जा सकती है। तो जाइए, बनाइए प्लान अपनों के संग और छुट्टियों का लीजिए आनंद। फिलहाल आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और जो गीत मैं प्ले करने जा रहा हूं वो आपकी दिल्ली, अपनी दिल्ली शहर में ही फिल्माया गया है। कौन सा गीत है, गौर से सुनिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: नमस्कार श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। तो श्रोताओ, आज बात होगी कार्यक्रम जय माला के बारे में। 1962 के भारत चीन युद्ध के चुनौतीपूर्ण समय में सीमा पर तैनात सैनिकों के हौसला अफजाई के लिए जयमाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस गौरवशाली सफर की पहली प्रस्तोता महान अभिनेत्री नरगिस थीं। उनके बाद लता मंगेशकर, आशा भोसले और मुकेश जैसे दिग्गजों ने भी अपनी आवाज से इस मंच को सजाया। ये रेडियो जगत का एक प्रभावशाली प्रयोग था, जहाँ पहली बार फिल्मी हस्तियों ने सीधे तौर पर कार्यक्रम का संचालन किया। इस कार्यक्रम में सैनिकों की फरमाइश पर गीत बजाए जाते थे और कलाकार अपने अनुभव व संदेश साझा करते थे। आज भी ये कार्यक्रम अपनी पहचान, लोकप्रियता और हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम दौर की याद को संजोए हुए है। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा के बारे में और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी H90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो विद एसआर। एसआर बोले तो संतोष राव। प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स।
0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: जी हाँ दोस्तों, आज आकाशवाणी के रंग भवन में 90 वर्षों की भक्ति और सुरमई साधना का उत्सव आराधना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विदुषी शुभा मुद्गल जी लाइव परफॉर्मेंस दे रही हैं, जिनका तबले पर साथ दे रहे हैं डॉक्टर अनीश वसंत प्रधान, सारंगी पर हैं उस्ताद मुराद अली और हारमोनियम पर सुर छेड़ रहे हैं विनय कुमार मिश्रा। दोस्तों ये कार्यक्रम शाम 4 बजे से चल रहा है आकाशवाणी भवन के रंगभार ऑडिटोरियम में, जहां शुभा मुद्गल जी, जो भारत की एक बेहद लोकप्रिय और दिग्गज हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका और संगीतकार हैं, अपना परफॉर्मेंस दे रही हैं और अपने परफॉर्मेंस के द्वारा आकाशवाणी के इस 90 वर्षों के सफर को और यादगार बना रही हैं। दोस्तों शुभा मुद्गल जी के बारे में क्या कहा जाए, उन्हें मुख्य रूप से ख्याल, ढुमरी और भारतीय पॉप संगीत में महारत हासिल है। भारतीय संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2000 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर उन्हीं का गाया हुआ एक प्यारा सा गीत आपको सुनाने जा रहा हूं, आपके बरस, जो कि बहुत बहुत बहुत ही सुपर डुपर हिट गीत है शुभा मुद्गल जी का।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो विद एसआर। एसआर बोले तो संतोष राव। प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। शाम के बज रहे हैं 5:35 है। दोस्तों अक्सर ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा थकाने वाला अगर कोई दिन होता है ना, तो वो होता है मंडे का, क्योंकि शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद वर्कलोड पड़ता है संडे को, मतलब मंडे को। लेकिन ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, है ना। अब ऑफिस आप हंसते हुए जाएं या फिर बेमन से जाएं, खैर ऑफिस की बोरिंग जज्बातों को छोड़कर, है ना, आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी जानी मानी अभिनेत्री से जिन्होंने कई टीवी सीरियल जैसे गठबंधन, नमक इश्क का के जरिए लोगों को अपने अभिनय का मुरीद बनाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बेहतरीन एक्ट्रेस श्रुति शर्मा, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो
2: हेलो
1: श्रुति जी, नमस्कार।
2: जी नमस्कार, नमस्कार।
1: अच्छा सबसे पहले तो ये बताइए कहाँ पर हैं आप? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, कहाँ पर हैं?
2: जी मैं मुंबई में हूँ।
1: अच्छा मुंबई में रहने की, कहाँ की रहने वाली हैं आप?
2: जी मैं रहने वाली लखनऊ, उत्तर प्रदेश की हूँ।
1: अच्छा ओके, लखनऊ की, यूपी वाली हैं आप?
2: हाँ जी यूपी वाले हम।
1: अच्छा तो लखनऊ से मुंबई का सफर कैसे शुरू हुआ था आपका?
2: जी बस आई थिंक एक्टर बनने का कीड़ा जागा था कि एक्टर बनना है। बचपन से ही बहुत शौक था फिल्मों का, देखने का, गानों का, और तो आई थिंक वहीं से वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और फिर पैसे जमा किए, टीचर लाइक स्कूल में पढ़ाया, ट्यूशन करे, डांस क्लासेस ली।
1: अच्छा।
2: उसके बाद पैसे जमा किए और फिर आ गए मुंबई अपने सपनों का पिटारा लेके।
1: अच्छा घर वालों का सपोर्ट मिल गया था बहुत जल्दी से?
2: जी पिताजी को कन्विंस करना पड़ा था थोड़ा, पर उन्हें कन्विंस करने के लिए मुझे लखनऊ में एक नाटक करना पड़ा था, लाइक प्ले लिखना पड़ा था, डायरेक्ट करना पड़ा था। अच्छा। पूरी कास्टिंग करनी पड़ी थी। जब उन्होंने वो प्ले देख लिया हमें परफॉर्म करते हुए, तब उन्हें लगा कि अच्छा ठीक है मैं कुछ कर सकती हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे आने दिया बम्बई।
1: ओके अच्छा, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत गर्मी है अभी, दिल्ली में इतनी गर्मी है कि पूछिए मत, लेकिन मुंबई तो थोड़ा बेहतर होगा अभी मौसम वाइज।
2: हाँ आज बहुत बेहतर है क्योंकि आज काले बादल आसमान में हमें दिखाई दे रहे हैं, हवा थोड़ी सी नम हो गई है, तो आज थोड़ा बेहतर है, नहीं तो बॉम्बे की भी हालत कुछ ऐसी ही थी एकदम तवे जैसा तप रहा था।
1: बिल्कुल, लेकिन कहते हैं ना ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, है ना।
2: जी जी बिल्कुल।
1: और लेकिन कहते हैं ना कि ये भी तो होता है ना कि ऑफिस में एसी चलता रहता है तो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, लेकिन कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं जहां जाकर लोगों का मनोरंजन हो जाता है।
2: हाँ जी
1: इशारा आप समझ गई होंगी
2: जी।
1: थोड़ा सा बता दीजिए ऑफिस के बारे में फिर।
2: जी अब जस्ट इमेजिन करिए कि आप ऑफिस जा रहे हैं और आपको ऑफिस जाते वक्त ठहाकों के साथ आपका दिन शुरू हो तो कितना मजा आए।
1: जी
2: मैं रोजमर्रा के ऑफिस की नहीं बात कर रही हूँ, पर मैं चाहूंगी कि आज रात से जब भी अगले दिन से आप ऑफिस जाएं तो हमारे ऑफिस को अपने फोन पर वेव्स ओटीटी पर साथ लेकर जाएं, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑफिस चली मुसद्दी की बेटी, जहां पर हम आपको हंसाएंगे भी और जानकारियां भी देंगे।
1: जी अच्छा एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब इस सीरियल की पेशकश आप तक की गई तो पहला रिएक्शन क्या था?
2: जी मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि 25 साल बाद जिस शो को मैं देखकर बड़ी हुई हूँ, यू नो स्कूल से आकर आप लंच करते वक्त शो देख रहे हैं, 25 साल बाद आपके सामने प्रस्ताव रखा जाए कि हम ये शो लेकर आ रहे हैं, तो क्या आप उसकी यू नो लीड के लिए आप मिलना चाहेंगे हमसे? तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे जेन्युइनली लगा कि ये कुछ ऐसे ऐसे ही आया है।
1: कैलेंडर देखा होगा, 1 अप्रैल तो नहीं है ना?
2: जी हाँ बिल्कुल। फिर मैं अपने भाई को अपने साथ लेकर गई, मैंने कहा एक बार चलो देख लेते हैं क्या पता कुछ सच में हो। फिर जब मैं गई वहां, मैं उमेश सर से मिली, अमन सर से मिली, तो मुझे लगा कि ये सीरियस है, ये चैलेंज ले रहे हैं कि इतने हिट शो को वो वापस लेकर आएंगे, ऐसे शो को जिसकी कास्ट आज भी आपके जहन में ताजा है। तो मैं काफी घबराई हुई थी, बट होता है ना जब आप परिवार के साथ बैठते हैं डिस्कस करते हैं तो आपको काफी अच्छी अच्छी एडवाइसेस मिलती हैं। तो फिर उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया कि नहीं तुम एक नए रंग के साथ इस शो का हिस्सा बन सकती हो। भले ही पंकज सर की बेटी का किरदार है और लोग कंपेयर कर सकते हैं, बट पिता और पुत्री अलग भी हो सकते हैं, उनकी अलग पर्सनालिटीज होती हैं। तो तुम अपना रंग लेकर आ सकती हो, वो लिबर्टी होगी तुम्हारे पास।
1: बिल्कुल। अच्छा श्रुति, आपने बताया कि बचपन से आपने ऑफिस वो पहला सीजन देखा हुआ था और उसी को देखकर आप बड़ी हुई हैं, तो जब दूसरा सीजन आपके नाम आया तो आपने स्क्रिप्ट भी पढ़ी होगी, उनके कंटेंट भी देखे होंगे।
2: जी,
1: तो उसके बारे में कुछ बताएंगे।
2: मुझे याद है जब हम पहली बार रीडिंग करने बैठे थे, तो क्योंकि मेरा जो किरदार है, जो मुसद्दी लाल जी का किरदार था,

0: शुरुआत तो वैसे ही होती है कि हम हैरान परेशान जा रहे हैं, पर जब हम रीडिंग में बैठे तो मैं हंस हंस के लोटपोट हो गई थी। तो उमेश सर मुझसे जेन्युइनली मेरे मुझसे उनका सवाल था कि भाई तुम सीरियसली कर लोगी ना क्योंकि तो मैंने कहा, मैंने उनसे बोला सर मुझे रीडिंग में हंस लेने दीजिए क्योंकि मैं एक्शन पे हंसना नहीं चाहूंगी
1: अच्छा
0: उससे पहले ही मैं जितनी बार जितनी दफे हम स्क्रिप्ट रीड करते थे मैं खूब जी भर के हंस लेती थी। और मेरे डायरेक्टर और सभी लोग ये बात से वाकिफ थे कि अच्छा चलो इसे हंस लेने दो, ये एक्शन पे ढंग का काम करेगी क्योंकि बहुत ही रोचक तरीके से लिखा गया है और आज के जमाने की सिचुएशंस को भी मैं इस चीज के लिए ले काफी सरप्राइज थी कि आज की इतनी टिपिकल सिचुएशंस को भी इन्होंने इतने इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा है कि आपको हंसी आ ही जाएगी
1: जी, क्योंकि इसके जो राइटर हैं वो मेरे बहुत खास दोस्तों में से हैं, हीरेंद्र झा
0: जी जी बहुत
1: जी
0: बहुत अच्छा लिखा उन्होंने।
1: जी और निमिषा
0: और
1: ने
0: जी हाँ, निमिषा जी ने, अदम्य ने, तीनों ने मिलकर ये शो लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है।
1: मतलब बहुत मजा आने वाला है। जो ऑफिस में जो थकान हो जाती है, अगर घर जाकर ये सीरियल देखेंगे तो बड़े खुशी खुशी खुशी से उनकी रात गुजर जाएगी।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, कोशिश हमारी यही है। क्योंकि कहते हैं कि किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो ये मुश्किल जिम्मा हमने ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश की है कि अगर हम किसी के चेहरे पे मुस्कान ला पाए तो हमारे लिए एज एन एक्टर और एज अ टीम बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो
1: अच्छा, कोई डायलॉग याद है आपको इसी सीरियल का?
0: तो जनरली जब भी अनोखी जाती है ना तो अक्सर एपिसोड में उसकी मुलाकात जो होती है वो पांडे जी से होती है जिसका किरदार कृष्णा सर कर रहे हैं, कृष्णा भट्ट। तो सभी को पता है पांडे जी को आप जी के बिना उनसे बात ही नहीं कर सकते, और शुरुआत ही वो पांडे के साथ ही होती है। तो वो उसमें एक डायलॉग है जिसमें वो मुझे सीन में इतना कंफ्यूज कर देते हैं और वो खुद भी इतने कंफ्यूज होते हैं कि मैं उनसे कहती हूँ कि आप ना अपने नाम से ये पांडे जी आप ना अपना नाम बदल के पांडे जी से कंफ्यूज पांडे कर दीजिए। तो भी वो उसमें कहते हैं कि कंफ्यूज पांडे नहीं, अगर बोलना ही है तो पांडित जी बोलिए
1: क्या बात है, क्या, जैसे मैं अक्सर अपने श्रोताओं से कहता हूँ, संतोष राव मत बोलिए, एसआर बोलिए, जिसमें बहुत प्यार झलकता है ना तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए श्रुति, कि ये सीरियल भी बहुत फेमस हो, वैसे ही नमक इश्क का जैसे हुआ था, और भी जो सीरियल आपके रहें, आप यूं ही कामयाबी की डगर पर आगे बढ़ते रहें और बहुत बहुत लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए आकाशवाणी FM रेनबो पर।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इसका हिस्सा बनाने के लिए, आप सबका साथ रहा तो हम और बहुत बार बात करेंगे
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार करेंगे, और जब दिल्ली आए तो जरूर मुलाकात करिएगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
5: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

जी हाँ दोस्तों, बिंदास होना गलत नहीं है, लेकिन हाँ बिंदास होकर रॉन्ग साइड में अगर आपने गाड़ी चलाई दिल्ली शहर में, तो याद रखिए ना सिर्फ चालान कटेगा बल्कि आपके अगेंस्ट पुलिस वाले जो हैं वो FIR भी कर देंगे, मतलब FIR दर्ज हो जाएगी आपके नाम और हो सकता है कि आपकी गाड़ी भी जब्त कर ली जाए। FIR होने की है ना 1170 लोगों का भी दो दिन पुलिस अभियान चलाया गया था 22 मई और 23 मई को दिल्ली में, और आज रिपोर्ट आई है कि इन दो दिन में रॉन्ग साइड चलाने वालों की, गाड़ी चलाने वालों पर FIR दर्ज हुई है वो है 1170, मतलब 1170 लोगों के साथ FIR दर्ज की गई है, और ये पुलिस ने BNS की धारा 281 के तहत बाकायदा FIR दर्ज की है। तो अब आप समझ लीजिए BNS में जल्दी जमानत हो

जाती है, लेकिन हाँ याद रखिए, अगर आप रॉन्ग साइड चले हैं ना तो आप पहुंच जाएंगे तिहाड़ जेल की चार दीवारी में चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। आप कितने दिन तक रहते हैं ये तो ईश्वर जानता है और कानून जानता है, लेकिन हाँ अगर रॉन्ग साइड आप चला कर गए तो आप फंस सकते हैं। इसलिए याद रखिए, अब आप रॉन्ग साइड मत जाइए, मिलना है तो आप वहीं से आवाज लगाइए जिससे मिलाना, जैसे कि अभी ये किशोर कुमार लगा रहे हैं ये। अब मीना हो, टीना हो या शीना हो, आप आवाज लगाइए, लेकिन रॉन्ग साइड में जल्दी से उन तक पहुंचने की कोशिश मत करिएगा वरना आप फंस सकते हैं। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा, क्योंकि 6:05 में आपके साथ जुड़ जाएंगे प्रवीण शर्मा, और आप भी अपने दिल की बात गीतों के माध्यम से आप उनको बता सकते हैं, और मैसेज में वो क्या पूछते हैं उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह की अध्यक्ष डॉ. शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा की पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, हेलो आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आप सुन रहे हैं म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं। और अब वक्त हो गया आपके अपने मन पसंद प्रोग्राम का, जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। और आज ट्रिपल एम यानी कि मैसेज मसाला मिक्स के साथ स्टूडियो में मौजूद है आपका दोस्त रोज प्रवीण शर्मा। दोस्तों आज का जो सवाल है वो ये है दोस्तों कि आज आपको हमें ये बताना है कि आप अपना आदर्श किसे मानते हैं, यानी आपका आइडियल कौन है और क्या वजह है, क्या कारण है कि आप उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। बस इतनी सी बात है। इसका उत्तर आप हमें व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं। हमारा नंबर है, नोट करें, 9868107070। जी हाँ, 9868107070। और सुनते रहिए मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम मैसी मसाला में आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और दोस्तों, आज हमारा जो सवाल है वो आपसे ये है कि आपका आदर्श, आपका आइडियल कौन है और आप उसे अपना आदर्श क्यों मानते हैं। आप अपने जवाब में व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 9868107070। जी हाँ, 9868107070। तो देखते हैं कि कौन कौन से श्रोता हमसे जुड़ गए हैं।

कुछ पंक्तियां लिखकर भेजी हैं प्रेमचंद प्रेमी जी ने जयत्रा धामपुर बिजनौर से। प्रेमचंद प्रेमी कहते हैं, ख्वाबों ख्यालों के पैकर संवार लो, अक्स मोहब्बतों के दिल में उतार लो, इससे पहले कि गम आंखों को रुला दे, जिंदगी को दोस्तों हंस के गुजार लो। वाह बहुत खूब।

इसके अलावा हमारे एक अन्य साथी जुड़ गए हैं, ये हैं सोनी देवीगढ़ पटियाला से, नरेंद्र सोनी हैं ये। नरेंद्र सोनी जी कह रहे हैं कि शुभ संध्या प्रवीण शर्मा जी, आपको भी शुभ संध्या। ये कह रहे हैं कि हमारे आदर्श तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं और उनका आदर्श हमारे लिए, हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदेश भेजने के लिए और इतने खूबसूरत विचार हमसे साझा करने के लिए। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से जुड़ गए हैं। राजेश जी कह रहे हैं कि शुभ संध्या प्रवीण जी, आपको शुभ संध्या। गर्मी में कैसे हैं जी? भाई हम तो गर्मी में वैसे ही हैं जैसे थे, लेकिन आप अपने सबका भी ज़रूर ख्याल रखिएगा क्योंकि गर्मी जो है कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि बारिश की बूंदें भी राहत लेकर ज़रूर आएंगी। ये कहते हैं कि इनके ये अपने पिताजी को अपना आदर्श, इनको बाबूजी कहते थे और उन्हें ही अपना आदर्श मानते हैं वो। वो कहते थे कि हिम्मत ही नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए और अपना रोज़गार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई भी काम दोस्तों छोटा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, कोई भी काम हो वो अगर हम शिद्दत से करेंगे, उसे पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे तो हमें उसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, क्यों ना हो जाए एक प्यारा सा गीत, उसके बाद लेंगे आपके संदेश।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। अगला संदेश में मिला है हीरामणि वर्मा का, दतरेंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से। स्वागत है आपका हीरामणि जी। कह रहे हैं कि हमारे आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद जी, मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ। उनका जीवन मुझे जीने की प्रेरणा देता है। उनका जीवन जीने की कला, समाज सेवा, मानव के लिए प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल सही कहा आपने, स्वामी विवेकानंद जी हर एक के लिए आदर्श हैं, इसमें कोई शक और शुभा नहीं। बहुत धन्यवाद आपका।

पंकज अमरावती महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग प्रवीण जी, आपको भी गुड इवनिंग, कह रहे हैं कि मैसे मसाला मिक्स उनको अच्छा लग रहा है, और ये कह रहे हैं मेरे आदर्श हैं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि भारत देश के एक सफल राष्ट्रपति के साथ साथ वो एक भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी थे। बिल्कुल सही, उनकी खोज देश के बहुत काम आई है, उन्होंने भारत देश की के लिए मिसाल कायम की, और उन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हम सब के लिए आदर्श का आदर्श है, प्रेरणा स्रोत हैं, इसमें कोई शक नहीं। सच में देखा जाए दोस्तों, अगर कोई भी इंसान जब महान बनता है तो अपने प्रयासों से बनता है, अपनी मेहनत से बनता है, कड़ी कड़ी मेहनत से बनता है। जब तक हम पूरे शिद्दत के साथ, पूरे मेहनत के साथ अपने अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हासिल कर सकते, कामयाब नहीं हो सकते।

और ये अगला संदेश हमें मिला है, ये हैं मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हर दशना बाजार अरे बिहार से। ये कह रहे कि मैं अपना अपने मित्र को जिनका नाम प्रेमचंद प्रेमी है, मैं उन्हें अपना आइडल मानता हूँ क्योंकि मैं उनसे ही उनके अनुभव, उनकी सलाह, उनके गुरु मंत्र से मैं मार्गदर्शन लेने की प्रेरणा लेता हूँ, प्रयास करता हूँ। वो मेरे लिए एक मार्गदर्शी नहीं है बल्कि मेरे लिए एक साहित्य गुरु भी हैं। उनके स्नेह, प्रेरणा और सीख ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने का हौसला दिया है। मैं उनका हृदय से सम्मान और आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल सही सरफराज जी, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं कि आप किसे भी, किसी को भी अपना आदर्श मान सकते हैं, भलाई वो छोटा हो, आपसे कोई बड़ा हो। कोई भी आपको किसी से कोई सीखने को मिलता है तो उन्हें हम अपना गुरु भी मान लेते हैं कभी कभी, और यकीन मानिए हम उनके आदर्शों पर जरूर चलते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेरणा लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का सदा प्रयास करते हैं।

अंगद यादव आजमगढ़ से जुड़ गए हैं, शिवरामपुर यूपी से। ये कह रहे हैं कि मैं अपने स्वर्गीय पिताजी को अपना आदर्श मानता हूं, क्योंकि उनके संघर्षपूर्ण जीवन को मैंने देखा है और उनसे मुझे बहुत ही अमूल्य शिक्षा मिली है। बिल्कुल सही अंगद जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। हमारे माता पिता कहते हैं हमारे प्रथम गुरु होते हैं, माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है, और घर से बच्चा संस्कार सीखता है, प्रेम सीखता है, परोपकार की भावना, दया की भावना, सभी अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। और यकीनन आपके पिताजी ने आपको वो सब दिया जिस पर चलकर आप आगे अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे, ऐसे हमें उम्मीद है। दोस्तों कहीं जाइए, क्योंकि हमारे एक छोटे से गीत के बाद फिर हाजिर होते हैं, उसके बाद लेंगे आपके संदेश।

दोस्तों आपको मेरे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, आप अपने सुझाव शिकायत हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों हमारी ईमेल आईडी नोट करें, हमारा ईमेल आईडी है feedbackfmrainbow@gmail.com। जी हाँ, feedbackfmrainbow@gmail.com। और सुनना ना भूलें हर महीने के तीसरे शुक्रवार को दोपहर 1 बजे प्रोग्राम बिंदास बोल। फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, कहीं जाइए क्योंकि हम हाजिर हो रहे हैं छोटे से अंतराल के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद आपका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप हैं इस वक्त मैसेज मसाला मिक्स के खूबसूरत महफिल में अपने दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। और आज हमने आपसे पूछा कि आपका आदर्श, आपका आइडियल कौन है और आप उन्हें अपना आदर्श क्यों मानते हैं। चलिए अगला संदेश लेते हैं। ये कह रहे हैं, हेलो टीम रेनबो, आसान जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है, ये चीज़ मैंने अपने पिताजी से सीखी। दुखों को कैसे फेस करना है ये मैंने उनसे सीखा। मेरे आइडियल मेरे पिताजी हैं, उन्होंने हमें ये सिखाया है कि भगवान से अगर मांगना है तो ऐसे मांगो, भगवान हमें दुख दे पर दुख सहने की शक्ति भी दे। वाह क्या बात है, बहुत खूब। वैसे कहते हैं इंसान कि हमें दुखों से कभी घबराना नहीं चाहिए, दुख तो आते जाते रहते हैं लेकिन सुख हमेशा उसे ही मिलता है जो दुख के सागर को पार कर लेता है।

किशन वजनानी, नीलम स्वाति और किशोर रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से जुड़ गए हैं हमारे साथ। कहते हैं गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो मैस मसाला मिक्स। ये कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है इनको, और ये कह रहे हैं कि आज के टॉपिक में ये कहना चाहते हैं कि इंसान के सबसे बड़े गुरु उनके माता पिता ही होते हैं, क्योंकि वो पहले ऐसे होते हैं शख्स जो हमें चलना सिखाते हैं, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं। उसके बाद जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे शिक्षक ही हमारे गुरु बनते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो हमें कह रहे हैं, जो हमारे जो गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और सही दिशा भी दिखाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। किशन जी, नीलम जी, स्वाति और किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। रवि जोशी जुड़ गए हैं मेरठ से हमारे साथ। कह रहे हैं कि प्रवीण जी नमस्ते, आपको भी नमस्कार। ये कह रहे हैं मेरे आदर्श पुरुष मेरे

राजी थे और ईमानदारी विनम्रता जिनकी पहचान थी। अपने व्यापार में उन्होंने बड़े ईमानदारी के साथ अपना व्यापार किया और सामाजिक व्यवहार में वो सबके चेहरे बन गए। और ये कह रहे हैं कि रवि जी कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि यही संस्कार हमें अपने पिताजी से मिले हैं और जिसके कारण हम आगे बढ़ पाए हैं। क्या बात है, बहुत खूब रवि जी। इसी तरह से आप सफलता की ऊंचाई छूते चले जाएं, हमें ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो अपने माता पिता की कदर नहीं करता, किस्मत भी ईश्वर उनकी कदर नहीं करते, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे एक कुछ पंक्तियां याद आती हैं कभी कभी, जब इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपने माता पिता के आगे हमेशा वो छोटा ही होता है। किसने क्या खूब कहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिंदगी में जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान एक वक्त पर बुजुर्ग बनता है, बुजुर्ग होता है, तो कभी कभी जब जवाब देता है अपने बड़ों को, तो जब बड़े बुजुर्गों को यानी माता पिता को कितना दुख होता होगा, शायद यही सोचकर कुछ पंक्तियां किसी ने लिखी है। क्या खूब कहा है कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना लिए। दोस्तों से पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना हो जाए एक प्यारा सा गीत, उसके बाद लेंगे आपके संदेश।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

दोस्तों ब्रेक के बाद आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। अगला संदेश लेते हैं। ये अगला संदेश हमें मिला है संदीप कश्यप का, पालम नई दिल्ली से। संदीप कश्यप कह रहे हैं कि मेरे आदर्श, मेरे मेंटोर विशाल कौशिक जी हैं, जिनसे मैंने ईमानदारी सीखी है। क्या बात है, बहुत खूब। और ये कह रहे हैं कि मेरे साथ मेरे दो छोटे बच्चे वाची और न्यक्ष भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। क्या बात है भाई, वाची और न्यक्ष, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम मैसी मसाला मिक्स। राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से कह रहे हैं, गुड इवनिंग जी, आपको भी शुभ संध्या। प्रवीण चौहान जुड़ गए हैं खरगोन मध्य प्रदेश से। प्रवीण चौहान कह रहे हैं कि मेरे आदर्श मेरे पापा हैं, मैंने उनसे अपने कर्म के प्रति ईमानदार होना सीखा है। सफलता शॉर्टकट से नहीं बल्कि मेहनत से मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने प्रवीण जी, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ईमानदारी से मेहनत की जाए तो सफलता हमारे कदम जरूर चूमती है। रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से जुड़ गए हैं। रंजीत जी कह रहे हैं कि मैं अपना आदर्श स्वामी विवेकानंद जी को मानता हूं, उनकी किताबों को मैंने पढ़ा है। उनकी किताबों को पढ़ने से मेरे जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। उनकी रचनाओं में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का बेहतर ढंग से विश्लेषण किया गया है। क्या बात है रंजीत जी, यकीन मानिए जब आप अच्छे अच्छे व्यक्ति को पढ़ते हैं, महापुरुषों को पढ़ते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं और उनके संस्मरण पढ़ते हैं तो अपने जीवन में हम जरूर परिवर्तन लेकर आते हैं और उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं जिन पर वो बढ़े थे और अपने जीवन में कामयाब हुए थे। यकीन मानिए बड़ा अच्छा लगा आपका संदेश पढ़कर। रंजीत जी धन्यवाद, सुनते रहिए मैसेज मसाला मिक्स। शुभ संध्या जी, आपको भी शुभ संध्या। कहते हैं कि मैं उसे अपना आदर्श बनाता हूं जिसका काम व चरित्र अच्छा होता है, मैं उसी से प्रभावित होता हूं, वही मेरा आदर्श होता है। ये कह रहे हैं शिवशंकर शर्मा, कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट नई दिल्ली से। शिवशंकर जी बिल्कुल सही कहा आपने, तो इसका मतलब ये हुआ कि

आपका आप यानी हर एक से प्रभावित होते हैं, हर अच्छे इंसान से आप मुतासिर होते हैं, यानी आप उनके उनके चरित्र से प्रभावित होते हैं और उनकी उसी दिशा में यानी उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही शिव जी, शिव शंकर जी, आपका संदेश अच्छा लगा, आपने अपने दिल की बात शेयर की। और अगला संदेश कौन किसने भेजा है देखते हैं। जोगिंदर सिंह जम्मू कश्मीर से कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, धन्यवाद आपका। मोहम्मद शाहिद सूरत गुजरात से जुड़ गए हैं, मोहम्मद शाहिद सूरत से कह रहे हैं, गुजरात से जुड़ गए हैं हमारे साथ, कह रहे हैं कि मेरी आइडियल मेरी माँ है जो हर वक्त मेरा साथ देती हैं। क्या बात है, वैसे माँ से बढ़कर कोई आदर्श हो ही नहीं सकता इस संसार में।

गुड इवनिंग प्रवीण जी, मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्तिनगर नई दिल्ली से जुड़ गए हैं। मोहम्मद इम्तियाज कह रहे हैं कि मैं अपना आदर्श अपने पिताजी को मानता हूं, और जब से वैसे कह रहे हैं जब अब वो इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने जिस तरह से हमने हमारे पूरे परिवार को पाला पोसा, हमें इसका गर्व होता है। उन्होंने कभी भी क्या कहते हैं कोई भी गलत कार्य नहीं, कोई काम नहीं किया, और हमेशा पैसे की अहमियत को समझा और रिश्तों को समझा, और आज हम सब उनके आदर्शों पर चल रहे हैं और उन्हें हमेशा याद करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, हम अपने माता पिता को, अपने बड़े बुजुर्गों को कभी नहीं भूल सकते, उनके आदर्शों पर हमेशा चलते रहें, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद आपका संदेश भेजने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्यों ना हो जाए एक प्यारा सा गीत, उसके बाद लेंगे आपके संदेश।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

दोस्तों, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी एफएम नीरो पर। अगला संदेश हमें मिला है, ये हैं ये कहने कि हमें हमारे आदर्श, हमारे अच्छे विचार हैं जो हमें अपने माता पिता से मिले हैं। शिक्षा तो कोई कहीं से भी ले सकता है, पर संस्कार घर से मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये भेजने वाले हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। आपका धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।

मैं नवलू वरक मलपण गोवा से ये संदेश भेज रहा हूँ, ये कहने के मैं रेनबो का नियमित श्रोता हूँ, आपका स्वागत है। ये कह रहे हैं कि आज के टॉपिक में कहना चाहता हूँ कि हमारे माता पिता जो है वो हमारे सच्चे आदर्श होते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये कह रहे हैं कि गाने अच्छे लग रहे हैं, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, धन्यवाद आपका संदेश भेजने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। देहरादून से आलोक पवार और मिन्नी हमारे जुड़ गई हैं, तो आलोक जी और मिन्नी जी आपका स्वागत है। ये कह रहे हैं कि प्रवीण शर्मा जी आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, मेरे आदर्श मेरे पिताजी हैं और मेरे गुरु हैं जिनसे धैर्य और सहनशीलता सीखने को मिली है। क्या बात है, बहुत खूब। कुछ कविता की पंक्तियां लिखकर भेजी हैं हमारे एक श्रोता ने, कह रहे हैं कि माँ ममता की छांव है, पिता हौसलों की ढाल है, इनके दम से रोशन है जीवन का हर साल, खुद भूखे रह लेते हैं, हमको रोटी देते हैं, गम छुपा छुपा कर खुशियों के दीप जलाते हैं। क्या बात है, जो माँ बाप का सम्मान करे उसका ऊंचा नाम, जिसने उनका दिल दुखाया फीका उसका धाम, माँ जन्नत का रूप है, पिता खुदा का नूर, इनके चरणों में बसा खुशियों का भरपूर, जीते जी सम्मान करो रखना इनका ध्यान, माँ बाप से बढ़कर नहीं जग में कोई मान। क्या बात है, ये इनकी खुद की कविता है, मोहम्मद सरफराज आलम जोकिहार दशना बाजार अरेरे बिहार से। सरफराज जी आपने बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मिस्टर मिसेस माही हैं और ये कह रहे हैं कि इन्हें गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, धन्यवाद संदेश भेजने के लिए आपका। और लेकिन अब फिलहाल दोस्तों आपसे और बातें करने का वक्त नहीं रह गया है, तो फिलहाल प्रवीण शर्मा आपसे लेता है इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात म्यूजिक मस्ती में रात 8 बजे, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त और सुनते रहिए मैसेज मसाला मिक्स और इसके बाद एक शो, तब तक के लिए नमस्कार, जल्द मिलेंगे। हाय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए

0: 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, शतावधानी डॉक्टर आर गणेश, उदय सुरेश कुमार और डॉक्टर कलीपट्टी रामास्वामी पाईस्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में और तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
1: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में हैं।
2: Several key agreements were signed.
3: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
2: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम पर और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इनमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: You're tuned into Akashvani FM Rainbow 102.6 MHz. But it's time to rewind a little. Let's take you back to an era when melodies ruled hearts and lyrics told stories. Here's a classic that still sounds just as fresh as today. And also, there's a message from Michael. And he's saying, FM Rainbow, Delhi. Hi, good evening. This is Michael Fernandez.

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल सुन रहे हैं FM Rainbow 102.6 दिल से दिल तक
1: There's 8,000 reasons that I'm real excited about the opportunity of doing this show. One of them is this song that this has a chance of being heard a little bit. And perhaps igniting something in people's hearts.

0: वेलकम माय फ्रेंड्स, पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं म्यूजिक लीडर्स आकाशवाणी एफएम रेडियो, दिल से दिल तक। दोस्तों, आप हमें अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर मुख्तलिफ जगहों पर सुन पा रहे हैं और अब वक्त हो गया आपके अपने मस्त मस्त प्रोग्राम का। जी हाँ दोस्तों, हो गया है वक्त आपके गाने का, यानी मस्ती का, धूम मचाने का और हमारे साथ इस डांसिंग फ्लोर पर नाचने का। यानी आ गया आपका वही मस्त मस्त प्रोग्राम जिसका नाम है म्यूजिक मस्ती। तो रहिएगा हमारे साथ इस खूबसूरत से प्रोग्राम में और करते रहिएगा डांस हमारे साथ।
1: गोकुल की राधा चली ओ चली ओ चली, गोकुल की राधा चली ओ चली चली चली, गोकुल की

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। जी हाँ, हम हाजिर हो रहे छोटे से अंतराल के बाद। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद

0: है रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: वेलकम है फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप इस वक्त म्यूजिक मस्ती के हसीन और खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और कर रहे हैं हमारे साथ डांस, तो एक बार फिर हो जाइए, मिलकर करते हैं डांस इस डांसिंग फ्लोर पर।

और दोस्तों फिलहाल इसी के साथ म्यूजिक मिस्टर से प्रवीण शर्मा से लेता है इजाजत, लेकिन आप कहीं में जाइए क्योंकि अगले प्रोग्राम यानी आपकी याद आती रही साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रियंका त्रिपाठी। तो आपके जिनको स्वागत है, फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए शुभरात्रि, नमस्कार, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।

प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर। कुछ यादें बारिश की बूंदों की जैसी होती हैं, छू जाएं तो दिल भीग सजाता है। ना चाह कर भी लौट आते हैं वो पल जब कोई अपना बहुत याद आता है। हाँ, थोड़ी सी सैडनेस थी बट मैंने इसको हैप्पी मोड में बोल दिया। ठीक ठीक क्या ना मैंने। वैसे एक बात कहें, कोई भी अगर ऐसी बात हो जो आपको लगता है कि किसी के वो थोड़ी सी छुप सकती है, किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन वो कहनी ज़रूरी है, आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर ये बात हम नहीं कहेंगे ना तो सामने वाले का हो सकता है नुकसान हो जाए या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो इमोशनली हर्ट हो जाए, तो बेटर इज कि उसको बहुत ही लाइट वे में उसको कह दिया जाए। समझदार होगा तो समझ जाएंगे, है ना। और नहीं होंगे तो खैर आपने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। करेक्ट। खैर बात तो यादों की चल रही थी, और यादों की जब बातें चलती है ना तो फिर गाने 90s के भी चलते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। और 90s के गानों की तो कोई तोड़ नहीं है, दे आर सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। तो उन्हीं में से छान कर मैं एक और सॉन्ग लाए हैं आपके लिए फ्रॉम द मूवी संघर्ष, ब्रिटिश इंटा अक्षय कुमार, यस। और ये सॉन्ग ना सोनू निगम की आवाज़ में, जिस इज सो ब्यूटीफुल। एंजॉय दिस वन आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ, प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना, जिसका नाम है आपकी याद आती रही। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और इस प्रोग्राम में 90s के गानों के साथ हम रूबरू हो रहे हैं कुछ खूबसूरत यादों से, दिलचस्प बातों से, दिलकश मुलाकातों से। लेकिन फिलहाल पेश है आपके लिए ये खूबसूरत सॉन्ग, जो कि मूवी जो थी बड़ी खूबसूरत सी थी, आयशा जुल का क्लासिक फेस नो राउशेज, और उसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म में थे। फिल्म की स्टोरी भी डिफरेंट थी, बहुत अलग टाइप की स्टोरी लिखी गई थी, बट यस फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई है। और इस फिल्म का वैसे तो जो सुपर डुपर हिट सॉन्ग रहा वो रहा गुटर गुटर वो कबूतर वाला, याद होगा आपको। लेकिन जो बहुत ही प्यारा और बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है ना, दिस इज समवन, दिस इज सो गुड, मतलब कुमार शानू की आवाज़ है इसमें, लवली सॉन्ग। एंजॉय दिस वन, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

आपके इस हंसते हुए चेहरे का नूर तो देखिए, आपके इस हंसते हुए चेहरे का नूर तो देखिए कि फलक पर चमकता हुआ आफताब भी शर्मा जाए। आपके इस हंसते हुए चेहरे का नूर तो देखिए कि फलक पर चमकता हुआ आफताब भी शर्मा जाए। दिलों को सुकून मिल जाए आपकी सिर्फ एक मुस्कुराहट से। दिलों को सुकून मिल जाए आपकी सिर्फ एक मुस्कुराहट से। मौसम भी खुशगवार हो जाए। प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना, जिसका नाम है जानते हैं आप, आपकी याद आती रही, और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है आप सभी लोगों के लिए। थोड़ा सा ब्रेक लिया है हमने 90s से, और यकीन मानिए इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, और जो जिस पर फिल्माया गया है, माय गॉड, शमी कपूर साहब। एंजॉय दिस वन, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर।

एंड देयर इज वन मोर सॉन्ग फ्रॉम द मूवीज 90s. यस, सो जो ब्रेक को जो खत्म हो गया, और ये जो सॉन्ग है ना 90s का, ये है ताल फिल्म से, अनुराधा जी की आवाज़, इसमें श्रीराम ही है, और ऑफकोर्स ये सुजाता. ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन, मतलब वॉइस, म्यूजिक, लिरिक्स, ऑल आर जस्ट फैबुलस. एंजॉय दिस वन.

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

चलिए ये सफ़र यहीं तक, और 11 बजे फिर से मिलेंगे आपसे, और उसके साथ साथ तिरंगे महफिल का प्रोग्राम होगा। और जिस तरीके से फ़िलहाल सिलसिला है ये आकाशवाणी पर सॉन्ग्स का, गीतों का, बातों का, वो इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद मुक्ता जी होंगे आपके साथ वेस्टर्न म्यूजिक ले धमाकेदार नंबर्स लेकर। फिलहाल मैं भी आपको छोड़े जा रही हूँ प्यारे से गीत के साथ। ख्याल रखिएगा अपना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई हैं।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: सरकार

0: देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोटेगी से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बूटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: Well, tonight is all about the legend and you're with me, Mukta Lal Chandani. Michael Jackson is the artist that we are showcasing on Rainbow Showcase.

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं, इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्याप

0: आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: फ्यूल फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
2: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

तुम हंसो तो दिन निकले, चुप रहो तो रातें हैं। तुम हंसो तो दिन निकले, चुप रहो तो रातें हैं। किसका गम कहाँ का गम, सब फिजूल बातें हैं। प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और इस वक्त इन लाइनों के साथ ही ये खूबसूरत गजल चिकचिक साहब की आवाज़ में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

लाखों उसने परवाज लाई है, लाखों उसने परवाज लाई है, लेकिन इस तबस्सुम का जवाब कहाँ। मुस्कुराहट के नूर से रोशन इस खूबसूरत चेहरे की मिसाल कहाँ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

चंद कलियां निषाद की चुनकर मुद्दतों महवयास रहता हूँ। चंद कलियां निषाद की चुनकर मुद्दतों महवयास रहता हूँ। तेरा मिलना खुशी की बात सही, लेकिन तुझसे मिलकर भी उदास रहता हूँ।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

प्रोग्राम चल रहे रंग की महफिल, मैं हूं आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और अब जो गजल है ये है तो फिल्म साजन से, बट इसको लिखा बड़ी शिद्दत से गया है और ऊपर से बाला सुब्रमण्यम साहब की आवाज़, जस्ट ऊपर से पंकज उदास भी है, बेस्ट कॉम्बिनेशन। इंजॉय दिस गजल।

0: चलिए आज का सफर बस यहीं तक और फिर मुलाकात होगी आपसे। ख्याल रखिएगा अपना।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों के अनुसार आज सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे वे, जहां सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 22 मई तक ग्रीष्मकालीन फसलों का बुआई क्षेत्र 86 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब 2.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज हुई है। धान की बुआई 31 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की खेती 27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हुई है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का आज नई दिल्ली में विमोचन किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान CSIR और राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान NIAS के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते का उद्देश्य विज्ञान संचार, जनभागीदारी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करना है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 12:05 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए जीरो आवर शो, जिसमें मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

0: अलका याग्निक जी की आवाज में कितनी बेचैन होके तुमसे मिली। 12:13 हो चुके हैं, सुनते रहिए जीरो आवर शो।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: श्रेया घोषाल जी की आवाज़ में अभी अभी आपने सुना एक बहुत ही प्यारा सा गीत, अगर तुम मिल जाओ। 12:19 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम जीरो आवर शो।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

12:58 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीरो आवर शो। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम सुबह 10:30 सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचू बॉर्डर चौकी पर होगी। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात BSF जवानों से बातचीत भी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 22 मई तक ग्रीष्मकालीन फसलों का बुआई क्षेत्र 86 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब 2.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज हुई है। धान की बुआई 31 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई, जबकि दलहन की खेती 27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान CSIR और राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान NIAS

के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते का उद्देश्य विज्ञान संचार, जनभागीदारी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करना है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। DGCA ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 1:05 हो चुके हैं और अब रोजाना की तरह समय है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है सुहानी रात, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जिसे गाया है अलका याग्निक जी और उदित नारायण जी ने।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: 1:25 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: AR रहमान जी की आवाज़ में रहना तू है जैसा तू। 1:45 हो चुके हैं, सुनते रहिए सुहानी रात।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम कल सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचू बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात BSF जवानों से बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन 3 महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। विज्ञान और केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्पेन के विज्ञान, नवाचार और विश्वविद्यालय मंत्रालय की महासचिव डॉ. ईवा ओर्तेगा पोइनो के नेतृत्व में वाले उच्चस्तरीय मंत्रिमंडल से मुलाकात करेंगे। बैठक में भारत और स्पेन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब

उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। वहीं खेलों में वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 2:05 हो चुके हैं और अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है भुलाए न बने। और इस प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगतोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगतोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचू बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात BSF जवानों से बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्पेन के विज्ञान, नवाचार और विश्वविद्यालय मंत्रालय की महासचिव डॉ. ईवा ओर्तेगा पाइनो के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में भारत और स्पेन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सर्कुलर इकोनॉमी, डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत सामग्री, डिजिटल हेल्थ और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री और नागा पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष नेफ्यू रियो ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के NPF में विलय को निर्वाचन आयोग से औपचारिक मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। कोहिमा में पार्टी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रियो ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि आयोग ने इस महीने की 4 तारीख को विलय को औपचारिक मंजूरी दी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। और खेलों में IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वहीं कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल से होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने

कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगतोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत भी करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगतोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचो बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात BSF जवानों से बातचीत भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधनों निर्देशों में RBI शहरी सहकारी बैंक साधन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। RBI ने कहा है कि यह कदम सहकारी बैंकों में बेहतर प्रशासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। DGCA ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो देश में सबसे अधिक तापमान में शामिल रहा। और खेलों में लक्ष्य सेन और PV सिंधु आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष सट्टी मुकाबला करेंगे। महिला सिंगल्स में PV सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रहा है बबल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

रहता इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

है उधर भी है, कहे कैसे यही मुश्किल।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वॉशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे।

राष्ट्रपति गंगटोक में आज शाम नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। राष्ट्रपति कल नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे आज राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं, जहां वे 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। आज सुबह वे BSF की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में वे बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधिकारी, BSF अधिकारी, साथ ही 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। रिजर्व बैंक RBI ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में RBI शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।